0: क्या नमस्ते सत श्री अकाल सलाम वालेकुम बुला आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। वेल यस, वीकेंड हो चुका है खत्म और लॉन्ग वीकेंड की तैयारी शुरू हो चुकी है, यानी कि इस हफ्ते हमें सिर्फ चार दिन ही काम पे आना है। मेजॉरिटी नॉट लाइक एवरीवन, आज से लेके थर्सडे तक काम करना है, एंड देन फ्राइडे सैटरडे संडे इज द हॉलीडे एंड द रीजन यू ऑल नो इट्स माता रानी की। जी हाँ, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या वजह है माता रानी की, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, बट बने रहिए। मेरा नाम केतन है, अभी से लेके तीन बजे तक मैं यहाँ पे हूँ, बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स भी लेके आया हूँ मैं आज के दिन, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक से बढ़कर एक गाने लेके आया हूँ मैं। सो यस, अगर आपको कोई फेवरेट गाना है तो डू मेक श्योर कि आप मुझे मैसेज भेज दिए 5599 पे गाने के नाम के साथ, और कुछ कॉम्पिटिशन्स भी हैं मेरे पास जहाँ पे आप हिस्सा लेके जीत सकते हैं ढेरों इनाम। अभी के लिए बने रहिए, शुरुआत करते हैं कक्कड़ से जो कि शाहिद माल्या की आवाज में।
1: बचाओ क्या

Well, just to remind you, आप मुझे जल्दी से homesick remedies के लिए कुछ messages भेज दीजिए and I'll try to read whatever message you send me जितना जल्दी हो सके. So yes, 5599 is the number जहाँ पे आप मुझे भेजेंगे. Anything you miss a lot, आप दूसरे शहर से हैं अगर तो मुझे बताइए. अगर खुद ऑकलैंड में भी रहते हैं तो ऑकलैंड के बारे में भी बता सकते हैं. यू मस्ट हैव रीलोकेटेड मेनी प्लेसेस, राइट. वैसे मैं एक बात बताता हूँ, आज है ना ऑकलैंड के बारे में बात करते हैं. आई नो दैट काफी लोग यहाँ से दूसरी कंट्री से आए हैं, दूसरी सिटी से आए हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट ऑकलैंड. जैसे कि मैं अगर अपनी बात बताऊँ, एक्चुअली अभी नहीं, आप बने रहिए. मैं थोड़ी देर बताऊंगा. ये एक गाना निकलने जो अनदेखी अनजानी सी उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में. सो बेसिकली अगर आप रीलोकेट भी हुए हो विद इन ऑकलैंड तो मुझे बताइए कि क्या ऐसी चीज है जो आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं, जो आपका लास्ट लोकेशन था.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है और अगर आपने अभी भी ज्वाइनिंग किया है तो थैंक यू सो मच। बने रहिए अंटिल थ्री। ये रहे कुछ मैसेजेस जो मुझे भेजे हैं। एंड पहला मैसेज भेजा है रवि भाई ने। वो कहते हैं आई मिस लिविंग इन सेंड्रिंगम। देयर वर सो मेनी इंडियन रेस्टोरेंट्स विद अ वॉकिंग डिस्टेंस। नाउ आई हैव टू ड्राइव। ओके। बट कहाँ रह रहे हैं आप रवि भाई? आप बताइएगा मुझे। आई नो इफ यू डोंट वांट मी टू डिस्क्लोज ओवर हियर, डोंट वरी, बट जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, माय सेटिस्फेक्शन। प्रिया कहती है आई मिस माय ओल्ड नेबर्स इन माउंट रॉस्कल। वी यूज्ड टू टॉक ऑल द टाइम। ये चीज बहुत सही है। देव भाई कहते हैं फ्लैट बुश से आई मिस हैंडरसन। द ट्रेन स्टेशन वॉज ओनली अ फ्यू मिनट्स अवे। राइट, मेक सेंस। अंजलि कहती हैं आई मिस पापा टोयटोय। सो मेनी फूड प्लेसेस नियर बाय। आई कैन रिलेट, क्योंकि ऑब्वियसली अब मैं आ चुका हूँ, पापा टोयटोय शिफ्ट हो चुका हूँ। जो कुछ चीज़ें मुझे माउंट रॉस्कल में रहता था तो पापा टोयटोय को मिस करता था, अब मैं जब पापा टोयटोय में हूँ तो कुछ चीज़ों को लेके आई मिस माउंट रॉस्कल। उसके बाद नेहा कहती है आखिरी मैसेज है आई मिस माई ओल्ड नेबर्स, दे फेल्ट लाइक फैमिली। Oh, that's so cute. But thank you so much for lovely messages. Aap office shoutouts ke liye bhi mujhe text bhejiye. Lunchbox with Ketan. Mujhe pasand hai ladka. 80s ke retro gaane.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: My pile of laundry's done in a flash at Liquid Laundromat.
5: Life's hard when you're feeling low energy and you've got piles of laundry to do. But don't worry, Liquid Laundromat's super fast washers and dryers are low energy too, using the lowest possible energy and water consumption. So you can save the planet, save time, and save money. And with 140 locations nationwide, there's probably one near you open convenient hours. So take a load off. Visit liquidlaundromats.com.
6: Oh, don't slip up on a banana skin. Throw it in your food scraps bin instead of the rubbish, because every scrap counts. Tāmaki Tūtaki, All Together Auckland.
7: MediaWorks complaints. How can I help?
8: I've got this ad going around and around and around in my brain, and it's all because of you guys.
7: Thank you.
8: It's all I can think about.
7: What does it sound like?
8: Yeah, I'd rather not.
7: Go on, why don't you have a crack?
8: Okay. Got a plumbing problem.
7: Oh, I need a bit more than that.
8: They've got your back.
7: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
8: Oh, okay.
9: There's no better plumber to give it a crack.
7: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
8: No, I want a plumber.
10: Advertise with MediaWorks.
11: New Zealand listens to us.
12: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Papa Toy Toy, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Hape Road! In just 29 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
13: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
14: Lunchbox with Ketan.
15: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
13: Hum. Office shout out.
16: Well, office shoutout के सेगमेंट में तो आपका स्वागत है, बट unfortunately आज किसी ने मैसेज नहीं भेजा है. मेरे को लग रहा है सभी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई लॉन्ग वीकेंड में क्या करना है while having lunch. Never mind. Once you decide, once you finalize कि कहाँ जाना है, क्या करना है, मुझे बताइए आप 5599 पे. बट एक न्यूज है, अभी काफी एक वेडिंग है जो काफी पॉपुलर हो रही है, यू नो, वर्ल्ड वाइड. टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्स की वेडिंग ने इंटरनेट पर इतना फुल बस क्रिएट कर दिया है कि अभी तक किसी ने टेलर की वेडिंग ड्रेस भी नहीं देखी है. उस वजह से एक्साइटमेंट इतना ज्यादा हो गया है, बट सोशल मीडिया पर लोग ऑलरेडी ओपिनियंस दे रहे हैं, ड्रेस कैसी होगी, गेस्ट लिस्ट कौन सी होगी और वेडिंग कितनी ग्रैंड हो सकती है. काफी लोगों ने तो AI से भी जनरेट किया है टेलर स्विफ्ट की ड्रेस को लेके, वेडिंग ड्रेस को लेके. ऑफ कोर्स यू नो काफी ड्रेसेस हैं जो काफी क्यूट भी लग रही है. फैंस बाहर यू नो एक्साइटेड होकर अपडेट का वेट कर रहे हैं, जबकि क्रिटिक्स भी अपने कमेंट्स देने से नहीं रुक रहे हैं. ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी वेडिंग नहीं बल्कि एक ग्लोबल पॉप कल्चर इवेंट बन चुका है और टेलर की पॉपुलैरिटी और उनकी लव स्टोरी की वजह से दुनिया भर के लोग इस शादी को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं. क्या बात है. बट यस, एक आपको बताता हूँ कि टेलर स्विफ्ट और मेरे पापा का काफी कनेक्शन है, यू नो, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, आप बस बने रहिए.
13: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

स्वागत करते हैं इस शो में आपका फिर से। आज वैसे हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। 6 जुलाई आज की तारीख 1923 को न्यूजीलैंड के ऑनगेरोए के पास ऑकलैंड वेलिंगटन एक्सप्रेस ट्रेन एक ह्यूज लैंडस्लाइड से टकरा गई थी। शार्प बेंड की वजह से ड्राइवर के पास ट्रेन रोकने का कोई चांस नहीं था। इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि इंजन और कई कोचेस ट्रैक से उतर गए और इस एक्सीडेंट में करीबन 17 लोगों की डेथ हुई थी और 28 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल था, लेकिन लोकल लोग और रेलवे स्टाफ ने मिलकर पैसेंजर्स की मदद की। ये उस वक्त न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा रेल एक्सीडेंट था और आज भी देश के सबसे डेडलीस्ट ट्रेन डिजास्टर्स में से एक माना जाता है।

0: नमस्कार नमस्ते वेलकम बैक यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए बात करेंगे और भी, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर आपको दे देता हूँ। रिमाइंडर बोले तो यस, आपने AI वाला जो हमारा पॉडकास्ट है वो ये देखा या नहीं देखा? मुझे पक्का यकीन है, पक्का वाला यकीन है दैट आपने डेफिनेटली देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अभी वैसे हाल फिलहाल मैं वीडियो पे काम कर रहा हूँ उसके पॉडकास्ट के, एंड ऑनेस्टली बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने शैंकी वाला वीडियो एडिट किया था, देख लीजिए आप मेरी प्रोफाइल में जाके, 3 मिलियन रील्स रीच हो चुकी है। वाओ, मिलियन के मेरे को जीरो भी नहीं पता अभी, मतलब गिनना पड़ेगा मेरे को। अच्छा कितने आते हैं, 9, 10, 8, 7, पता नहीं, ऐसे गिनना पड़ेगा। बट यार पॉडकास्ट आजकल एक्चुअली वेरी मच इनटू यू नो एजुकेशन। और ये जो मैं AI की बातें करता हूँ हमेशा आपसे कि यार आप बाकी सारी चीज़ें जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं, इट्स ओके, दैट्स फाइन, बट AI को अपने खाने की तरह, अपने हेल्दी खाने की तरह, अपने हेल्दी यू नो रूटीन के लिए जिस तरह से आप करते हैं सारी प्रायोरिटी, इसको भी डाल दीजिए। और ये पॉडकास्ट सच में मैं कह रहा हूँ आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेगा इन मैनी वे, लाइक आप लिटरली 24 में से एक घंटा या एक घंटा क्या आधा घंटा भी अगर निकाल लोगे ना इस चीज़ के लिए, ऑनेस्टली धीरे धीरे इतना इंप्रूवमेंट होगा आपका। और ऑनेस्टली इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, जस्ट सिटिंग एट होम अपने फ्री टाइम पे इंस्टाग्राम रील या फिर स्क्रॉल करने की बजाय आप ये चीज़ अगर देखेंगे ना, वुड बी वेरी वेरी गुड। तो एक बार आप पॉडकास्ट सुन लीजिए, मुझे ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए ताकि आपको फुल ऑडियो लिंक मिल जाएगी हाल फिलहाल तो। बट यस, हम जल्द ही इसका वीडियो लिंक भी डालने वाले हैं जो कि आप फिजिकली देख सकते हैं कि दर्शित पांड्या एंड रुजबे एंड सैंडी वर वेरी वेरी एक्साइटेड व्हाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। सो यस, AI स्पेशलिस्ट दर्शित पांडे आए थे यहाँ पे, सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर प्लेटफॉर्म एट सर्को एंड एन AWS कम्युनिटी बिल्डर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकडाउन किया उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को, कैसे काम करता है और कैसे आपको रोजमर्रा की जिंदगी में एक असिस्टेंट, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉस्ट, बट असिस्टेंट बन के आ सकता है AI। मतलब एक शॉर्ट एग्जाम्पल अगर दूं मैं आपको, तो बेसिकली ये मान लीजिए कि अगर आप ऐसे ऐसी चीजें जो बिल्स पे करना हो गया या फिर शॉपिंग हो गई, शॉपिंग लिस्ट रेडी करना, मान लो अगर आप चेकलिस्ट करते हैं कि या क्लिक टू कलेक्ट वाले चीज़ ऑर्डर करते हैं, बट आपको पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, तो आपने AI को प्रोवाइड कर देगी ये रही लिंक सारी लिस्ट की, मुझे जो जो चाहिए मेरी लिस्ट है मुझे पता करके दे दे कि कहाँ कहाँ मिलेगी। तो वो AI आपका असिस्टेंट जो बना हुआ है वो फाइंड आउट करेगा कहाँ है और आपके लिए इजी स्टार्ट ये बता देगा कि देखो ये यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है, पक्का प्रॉपर बता देगा कि आप इस जगह जाके ये चीज़ ले सकते हो और इस जगह जाके आप ये चीज़ लग रहे हो। लिटरली आपका कितना टाइम बच रहा है कि आपको ऑनलाइन जाके पता नहीं सर्च नहीं करना, वो आपका AI कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे टूल्स उन्होंने बताया है कैसे इसको यूज कर सकते हैं, बट अभी जल्दी से ड्राइव लिखिए और मुझे 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप तक लिंक पहुंच जाए और आप इसे सुनिए बिफोर वी वाइंड अप दिस लिंक। जी हाँ, वैसे बाकी के और भी पॉडकास्ट हमारे रो ऐप के जरिए आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए आज ही अपने फोन पे और वहां से भी काफी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं,
1: इसके पीछे
3: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
4: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना।
3: और गानों में जैसे

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind. Sif Rova par.
1: We pulled it off, Johnny. We're rich!
2: Oh, no. I've left my glasses in the vault.
1: What? You're kidding me. Oh, they'll be covered in your fingerprints.
2: Oh, Pete! I went to Specsavers and got a smudge-resistant coating. They're not going to find a single print.
3: Someone's been to the Specsavers winter sale. There's 50% off lens options, including light reactive, drivewear, and smudge resistant. With two pairs from $169 or above, limited time, condition supply.
2: I think I dropped my wallet too.
4: Lunchbox with Keithan.
5: Aisa bajaunga na ki tere kaanon mein roz meri aawaz goonjegi.
6: Chutney shots.
4: Dil se dil tak.
7: चटनी शॉट्स के सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे रिगार्डिंग कि कौन सी कोई नई खबर है जो आपको देनी चाहिए। बट एक बहुत ही यू नो बैक टू बैक न्यूज़ बताने से ज़्यादा बेटर मेरे लिए, मेरे को लगा ये शायद आपको मैं बता दूँ, क्योंकि काफ़ी सुनने को मिल रहा है डनेडिन और उस तरफ बारिश जो है बहुत ही ज़्यादा आ रही है, तो उसके बारे में आपको बताऊँगा। बट यस, कुछ मैसेजेस आए हैं, वो बोल रहे हैं कि लिंक शायद वर्क नहीं कर रही है। नहीं, एक बार आप फिर से ट्राई करिए, बिकॉज आई कैन सी दैट आपने शायद स्पेलिंग गलत लिखी है। तो आप ड्राइव लिखिए अपना नाम और ये सब कुछ नहीं, बिकॉज ये सारी ऑटोमेटेड चीज़ें हैं। तो आप ड्राइव लिख के मुझे भेजिए, उसके बाद ऑफ कोर्स ये जो लिंक है आप तक आपके फ़ोन पे पहुंच जाएगी। बट यस, ये रही न्यूज़। डनेडिन से अभी लाइव अपडेट आ रहा है, फीडबैक आ रहा है। वाइटाके डिस्ट्रिक्ट, एक्चुअली न्यूजीलैंड के वाइटाके डिस्ट्रिक्ट में भारी बारिश के बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुके हैं। उमारू एरिया में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, जहाँ कई घरों और बिजनेसेस में फ्लड का पानी घुस चुका है। इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर एक्टिवेट कर दिए गए हैं और रेस्क्यू टीम भी लगातार लोगों की मदद कर रही है। रात भर फायर और इमरजेंसी टीम्स को 65 से ज़्यादा कॉल आउट्स मिले, जबकि कई रोड्स फ्लड की वजह से बंद हो गई और कुछ लोगों को इवैक्यूएशन सेंटर्स में शिफ्ट किया गया है। अथॉरिटीज़ ने लोगों से अपील की है कि फ्लड प्रोन एरिया से दूर रहें और ऑफिशियल सेफ्टी एडवाइजरी फॉलो करें। यानी कि अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो जस्ट मेक श्योर दैट आप एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहें, डोंट एंड ऑलवेज कीप द फोन विथ यू जस्ट इन केस, और हो सके तो पावर बैंक भी साथ में रखें और अपना फ़ोन जो है 100% चार्ज पे ही रखें। यू नेवर नो कब आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए।
4: Bollywood.
8: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: वेल नई सुबह, ये गाना आपने मेरी आवाज में सुना है, केतन कुमावत। मैंने अपने यहाँ ऑकलैंड में जब कोविड आया था तब काफ़ी अच्छे दोस्त थे मेरे, उनके साथ मिलके ये हमने किया था गाना। उन्होंने शाश्वता इनका नाम है जिन्होंने लिखे हैं गाने, बहुत ही प्यारा है। ओरिजिनली ये बंगाली में था, बंगाली लैंग्वेज में, उसके बाद हमें इसमें कन्वर्ट किया था हिंदी में, कुछ कुछ शब्द हमने फिर से लिखे थे और उसके बाद मैंने इसे रिकॉर्ड दिया था। बट ये साहब मुझे बताइए कैसा लगा आपको गाना ये। 2021 में हमने प्रोड्यूस किया था, 2022 में ये रिलीज हुआ था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और मे बी द सेम टाइम 2021 में ही। सो ये साहब मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। एंड एट द सेम टाइम एक सवाल है मेरा यहाँ पे जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, बचपन में आप के लिए लकी चार्म आप किसे मानते थे, एज इन लाइक कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा मोमेंट जो आपको सच में लगता था कि यार ये अगर मेरे साथ हुआ या फिर ये मेरे साथ रहा, मेरे पास रहा, तो मेरा टाइम जो है बहुत ही बढ़िया जाएगा। मेरे को एक सीन याद है, मुझे राखी के टाइम, रक्षाबंधन के टाइम मेरी दीदी ने एक राखी बांधी थी जिसपे ओम लिखा हुआ था, सो वो मैंने पहनना शुरू किया और पता नहीं क्या, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं क्या हुआ था एग्जैक्टली, बट उसके बाद से यू नो आई हैव स्टार्टेड नोटिसिंग दैट थिंग्स आर गेटिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वांटेड, जो भी है जैसे खेल में हो गया, स्कोर्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गए। और किसी टाइम मैंने नहीं पहना तो मेरे फिर वो इट नेवर वेंट, एक होता ना बच्चों के उस टाइम पे कि यार मुझे लगता है यहीं से मुझे प्रॉपर वाइब्स मिल रही है सब है, तो आई स्टार्टेड बिलीविंग कि वो जो बैच है, वो जो राखी है, वो मेरे लिए लकी चार्म बन चुकी है और उसे मैं हमेशा पहनता रहा। बट ऑफकोर्स ऐसा वो सच नहीं था क्योंकि आगे जाके यू नो स्टार्टेड नॉट वर्किंग आउट, सो आई वाज लाइक उस टाइम तो ऑब्वियसली मैं छोटा था तो मुझे लगा कि शायद इसकी शक्तियाँ जो हैं ख़त्म हो गई, अब ये काम नहीं कर रहा तो मुझे फिर से कोई और चीज़ चाहिए कि जो शक्ति फिर से प्रदान कर सके। बट यस, ऐसी कोई चीज़ है आपके जहन में भी, आपकी यादों में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा, आप मुझे बता सकते हैं 5599 पे। वैसे हो सकता है कॉल भी करेंगे एक्चुअली, बट यस आप पहले मैसेजेस भेजिए 5599 पे और उसके बाद हम देखेंगे कौन सा बेस्ट मैसेज आया, उसको हम रीड आउट करेंगे यहाँ पे।
1: ड्राइविंग यू होम द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला,
3: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दूसरी बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप जी तो
3: आए आए बताओगे यार।
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Karanga Ahape station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Puhi Nui in just 32 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
6: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, you can help. When you buy a participating beauty product or make a donation in store, you're helping provide free, practical support for people affected by cancer. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, that support can make a real difference. Cancer Support New Zealand helps people manage the everyday effects of cancer through practical sessions, expert support, and trusted resources. Support Feel Better Month at Farmers.
1: TradeDepot.co.nz.
7: If you're serious about solar energy, switch on to Trade Depot. They stock the world's leading solar panels, inverters and batteries. Trade Depot specializes in powerful full house solar systems ranging from $10,000 to $20,000. Shop solar at Trade Depot for high quality solar systems with installation available nationwide.
8: TradeDepot.co.nz.
9: Shine
8: Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
0: टाइम हो चुका है दिन के ठीक एक।
9: हम न्यूज़ ब्रॉट टू यू बाय

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हालचाल, 15 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहा है और 9 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। आज वैसे बारिश के आसार है 20%, लेकिन सनसेट होगा 5:19 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे,
1: लंच के मंच यानी कि लंच बॉक्स में आपका स्वागत है। आज यस 1 बज चुके हैं और 1 बजे यानी कि काफ़ी ऐसे मौके दूंगा मैं इस आर में जहां पे आपको बताऊंगा कि भाई देश दुनिया में क्या चल रहा है और फिर साथ में कौन कौन से इवेंट्स में आप भाग ले सकते हैं ताकि आप जीत सकें एक अमेजिंग ऑफर्स यानी कि डबल पास किसी शोज के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल भी मैंने किया था कि कौन सा ऐसा आपका नॉस्टैल्जिक मेमोरी है जिसे आप समझते थे कि यार ये ऑब्जेक्ट जो है या फिर ये पर्सन है ये मेरे लिए बहुत लकी है। मुझे 5599 पे भेज दीजिए मैसेज। कुछ मैसेजेस मिले मुझे, उन्हें मैं रीड आउट करूंगा थोड़ी देर में। बट यस, एक सवाल भी मैंने थोड़ी देर पहले किया, सवाल नहीं एक्चुअली, जब मैं टेलर स्विफ्ट का जब पढ़ रहा था कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन माय डैड एंड टेलर स्विफ्ट, तो काफ़ी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था भाई क्या है, जोक्स थे। मुझे बस कुछ सुनाना मत क्योंकि जो रिलेशन है वो बेसिकली वैसा कुछ नहीं, बट यस टेलर स्विफ्ट का नाम टेलर है और मेरे पापा टेलर थे, रहित हुआ करते थे। आई नो बहुत ही बेकार वाला पुअर जोक था। बट यस आप मुझे बताइए कोई है यहाँ पे और भी जो जिसके पापा या जिसके कज़न या फिर जिसकी फैमिली में कोई टेलर है। मेरे डैड तो थे, अभी तो खैर रिटायर्ड हो चुके हैं, वो थे तो ऑब्वियसली मैं जब भी टेलर स्विफ्ट का आता था मैं हमेशा यही बोलता था कि यार देर इज अ कनेक्शन बिटवीन माय डैड एंड द टेलर स्विफ्ट। बढ़िया सा, आप भी मुझे बता सकते हैं। अभी के लिए बने रहिए, शुरुआत करते हैं इस गाने से जिसका ही बनाना अरिजीत सिंह की आवाज में, और उसके बाद हम और भी बातें करेंगे।
0: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वेल यस, आप जल्दी से फोन उठा लीजिए और मुझे मैसेज भेज दीजिए रिगार्डिंग लंच टाइम फ्रंट लाइन, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात होगी। कुछ मैसेजेस मिले हैं मुझे, उनके बारे में भी थोड़ी मैं पढ़ूंगा, बट अभी के लिए आप मुझे 5599 पे कुछ लंच टाइम रेंट लाइन के लिए मैसेजेस भेज दीजिए, यानी कि ओवर द वीकेंड। और अभी यू जस्ट लेट मी नो, कुछ ऐसा रेंट लाइन हुआ है आपके साथ, कुछ ऐसी अजीब सी घटना, नॉट वेरी वेरी सीरियस बट अजीब सी चीज जो सचमुच आप यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं। 5599 इज द नंबर, आप मुझे कॉल भी करेंगे थोड़ी देर में, मैं बताऊंगा कब। 0800-004-866 पे आप कॉल करेंगे, यानी कि तब तक आप सोच के रखिए कि क्या कुछ ऐसी चीज हुई जो सचमुच आपको इरिटेट किया हो किसी चीज ने, बट यू मे और मे नॉट हैव डन एनीथिंग इन रिटर्न। आप मुझे बता सकते हैं 5599 पे। जैसे आपका वीकेंड कैसा गया वो भी साथ के साथ मुझे बताइएगा, मैं थोड़ी देर में आपका वेट करूंगा टू कॉल मी बैक। बट अभी के लिए मुझे थोड़ा सा और मैसेज का वेट करने दीजिए, यानी कि मैं वेट करता हूँ पहले मैसेजेस का कि लगभग कितने मैसेजेस आते हैं। 2-3 तो मैसेज आ चुके हैं, थोड़ा और वेट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा कॉल मी एंड देन टेल मी व्हाट यू हैव समथिंग टू शेयर अबाउट द लंच टाइम रेंट लाइन।
1: लंच बॉक्स विद केतन। इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: HBO Max is the all-killer, no-filler.
2: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
1: Exactly.
2: Right, we'll see. What are they called?
1: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, one battle after another, and then there's Friends, The Big Bang Theory.
2: Whoa, okay, I get it. Fair call.
1: HBO Max, all-killer, no-filler. Stream now.
3: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
4: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
5: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Tūriki, all together Auckland.
6: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
7: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का, और वेसिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।

0: With Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. Lunch time. Rant line.
2: लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में आपका स्वागत करते हैं. आप सुन रहे हैं मुझे लंच बॉक्स शो में. वेल यस, फोन करी मुझे अब फोन उठाइए और फोन लगा दीजिए 0800-004-866 पे. बताइए मुझे कि आपका वीकेंड कैसा रहा और साथ में आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जिसकी वजह से यू मे फेल्ट अपसेट ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड ऑब्वियसली टाइम जाने के बाद तो मे बी नाउ यू मस्ट हैव मूव्ड ऑन. बट बताइए मेरे साथ तो कोई रिसेंटली ऐसी घटना घटी हो आपके साथ. नॉट मेरे साथ, मतलब शेयर करिए मेरे साथ, बट आपके साथ अगर ऐसी कुछ हुई हो तो बताइए मुझे. बट यस, कुछ मैसेजेस आए हैं मीन वाइल, जब तक मुझे कॉल नहीं आता. कॉल करिए 0800-004-866 पे और बताइए कुछ इंटरेस्टिंग बात. रवि भाई, ऑलवेज ऑन टॉप. Weekend was good, caught up with family and finally got some rest. Monday comes around way too quickly. ये मुझे भी फील हुआ, मतलब मेरा इस बार का वीकेंड तो ऐसा गया जैसे जस्ट नॉर्मल वीकडेज के हिसाब से. और वीकेंड पे कुछ ज़्यादा हमने फन नहीं किया, ना हम कहीं घूमने गए. इट वॉज जस्ट बिजी एंड कुछ शोज थे मेरे, तो वो मैंने शोज में यू नो गाने गाए हैं. उसके बाद एक वीकेंड पे शूट आया था, एक शो में गया था, थिएटर शो में. क्या शो था यार, ऑनेस्टली इतना मज़ेदार था, इतना मज़ेदार था. मैं फिल्म कर रहा था बट ओके, बिफोर आई प्रोसीड लेट मी जस्ट गिव अ बिट बी अबाउट इट. हो सकता है यहाँ पे लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई क्या है, कभी गाना गा रहा है, कभी रिकॉर्ड कर रहा है, फिल्म कर रहा है, क्या चल क्या रहा है. सो बेसिकली मेरा ब्रेड एंड बटर इज फिल्मिंग, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू फॉर फ्रॉम माई कंपनी इंस्पायर मीडिया वर्क्स. मोस्टली हम रियल स्टेट के वीडियो शूट्स करते हैं, बट यस समटाइम्स वी डू वेडिंग, समटाइम्स वी डू इवेंट, समटाइम्स वी फिल्म एज वेल. जैसे कि मैंने सैटरडे को किया था, एक थिएटर हुआ था, प्रॉपर थिएटर, उसको मैंने रिकॉर्ड किया था. तो उनको फिल्मिंग चाहिए थी तो आई रिकॉर्डेड. और ऑनेस्टली मैं बताऊं तो वो इतना अच्छा था दैट आई मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कैमरे के स्क्रीन में देखूं या फिर सामने शो देखूं. अगर कैमरे के स्क्रीन में देखा तो जो अमेजिंग शो हो रहा वो मैं मिस कर सकता हूं, और अगर सामने देखा तो अमेजिंग मतलब ये जो रिकॉर्ड हो रहा शायद वो मिस कर सकता हूं. तो उस बीच में क्या थोड़ा चलता रहा मेरा, बट देन आई रियलाइज कि मैं रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूं, तो घर जाके मैं फिर से देखूंगा. तो या वंस द एडिट इज रेडी देन आई एम गोना वॉच इट अगेन. बट यस, उसके अलावा हाँ बस यही था मेरा, और तो क्या है, बस शॉपिंग, ग्रॉसरी, बस इसी में टाइम चला गया. प्रिया कहती है, हैड अ क्वाइट वीकेंड एट होम. माय रेंट इज ऑकलैंड्स ट्रैफिक इज गेटिंग वर्स्ट एवरी डे एवरी वीक. दैट इज ट्रू बट यू मस्ट बी गोइंग इन द मॉर्निंग. क्योंकि अभी तो मेरा हो गया कि पहले तो मैं आराम से 11 बजे निकलता था, बट नाउ मेरी हैबिट बनानी पड़ रही है मुझे, बिकॉज फर्स्ट मैं 7-7:15 बजे खुशबू को ड्रॉप करता हूँ स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, उसी में 5-10 मिनट लग जाते हैं. फिर उसके बाद जो कि ज़्यादा दूर है नहीं एक्चुअली, बट स्टिल ट्रैफिक की वजह से मुझे टाइम लग जाता है. उसके बाद इहान को मैं किंडी छोड़ता हूँ, जो तो लकीली घर के बाहर ही है, नॉट वेरी फार, और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ. तो मोस्टली ये कहते हैं कि मैं इतना फेस नहीं करता हूँ, बट वाइल गोइंग बैक होम तब मुझे ज्यादा फेस करने को मिलता है ट्रैफिक. देव भाई कहते हैं, स्पेंड द वीकेंड डूइंग हाउस कोर्स, विश वीकेंड वर 3 days इंस्टेड ऑफ 2. कोई बात नहीं, ये आ रहा है ना, ये वीकेंड आ रहा है तो यू कैन एंजॉय द फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन की छुट्टियां हैं बैक टू बैक. तो डेफिनेटली मैं तो कहूँगा कि भाई सारे काम वाम छोड़ के अच्छे से एकदम लेजी होके या फिर कुछ प्रोडक्टिव होके, बट अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, नॉर्मल जो काम करते हैं उसको छोड़ के. अंजलि कहती हैं, वेंट आउट विद फ्रेंड्स फॉर डिनर, माय रेंट इज हाउ एक्सपेंसिव ईटिंग आउट हैज बिकम. दैट इज ट्रू बट कितना बड़ा है पता नहीं, क्योंकि हम यूजली ज़्यादा बाहर खाते नहीं हैं, और जो खाते हैं तो मतलब पापड़ वोटे में रहता हूँ, वहाँ पे काफ़ी अपने शॉप्स ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे काफ़ी सस्ता मिलता है, तो आई एम एक्चुअली लाइकिंग इट. नेहा कहती है, विजिटेड फैमिली ओवर द वीकेंड, माय रेंट इज देयर इज नेवर इनफ टाइम टू गेट एवरीथिंग डन. दैट इज सो ट्रू. वेल आज कॉल तो किसी का नहीं आया, बट मैसेजेस आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप बने रहिए, हम अपडेट देंगे थोड़ी देर में. फीफा का यानी कि मैक्सिको वर्सेज इंग्लैंड के बीच में मैच चल रहा है, उसके बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में, बने रहिए.
0: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
3: वेलकम बैक। चलिए फुटबॉल की बात कर लेते हैं। आज दो मैचेस हो रहे हैं जिसमें से एक एक्चुअली दो मैचेस की स्केड्यूल है। पहला हो चुका है ब्राजील वर्सेस नॉर्वे, जिसमें नॉर्वे ने बाजी मार ली है 2-1 से। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में हुआ था ये मैच। अभी हाल फिलहाल मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड के बीच मैच हो रहा है। आधा घंटा बीत चुका है, 33 मिनट्स हो चुके हैं मेक्सिको सिटी स्टेडियम में और स्कोर एक भी नहीं हुआ है। यानी कि अभी भी कोई अपडेट नहीं है कि भाई जीतेगा कौन, कुछ कह नहीं सकते। आपको क्या लगता है दोनों टीमों में से कौन जीतेगा? ये राउंड ऑफ 16 है, यानी कि सिर्फ 16 टीमें बची हुई है, उसके बाद 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। क्या लगता है इस बार का फीफा वर्ल्ड कप 2026 कौन जीतेगा? मुझे गैसेस भेज सकते हैं आप 5599 पे। बट यस, एक अपडेट आया है। नॉर्वे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में ब्राजील को 2-1 से हरा दिया था, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। गोलकीपर ऑर्सन नायलन और स्ट्राइकर एलिंग हालंड ने इस जीत को नॉर्वे फुटबॉल की सबसे बड़े लम्हों में से एक बताया है। हालंड ने मैच के दोनों गोल्स करके नॉर्वे को पहली बार फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया है। उन्होंने इस जीत को नॉर्वे के फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे स्पेशल दिनों में से एक बताया है। गोलकीपर नायलैंड ने भी टीम की यूनिटी और फाइटिंग स्पिरिट की तारीफ की है और ब्राजील के खिलाफ इस अपसेट के बाद नॉर्वे का कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी ऊपर उठ चुका है, यानी कि बढ़ चुका है, और अब टीम क्वार्टर फाइनल में अपनी फेरी टेल जर्नी जारी रखने की तैयारी कर रही है। एंड लेट्स सी कि कौन सी टीम आती है क्वार्टर फाइनल में। वाओ, मजा आ जाएगा यार। मतलब एक टीम तो चलो कंफर्म है, नॉर्वे तो पहुंच चुकी है। अभी मेक्सिको और इंग्लैंड के बीच पता पड़ जाएगा कि कौन है जो क्वार्टर फाइनल में जाएगी, उसके बाद सेमीफाइनल एंड देन फाइनल।

0: वेलकम बैक. वेल यस, जल्दी से आपको बता देता हूँ, द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान आ रहे हैं ऑकलैंड में. उनके टिकट्स अभी भी आपके पास टाइम है, ले लीजिए dryticket.com पर जाके. प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन एंड शहजादा प्रोडक्शन आप सभी के लिए लिखा है. द ट्रस्ट एरिना में ये होने वाला है 25th of July. वेल यस, मैजिक जो है उसे एक्सपीरियंस करिए. टाइमलेस हिट्स, सोल स्टिरिंग कवाली एंड बहुत ही बढ़िया एक से बढ़कर एक बॉलीवुड के गाने और जो भी आपके फेवरेट सॉन्ग है फ्रॉम राहत फतेह अली खान लाइब्रेरी से, तो वो वहां पे गाने वाले हैं. तो जल्दी से टिकट ले लीजिए dryticket.com पर जाकर और इस अमेजिंग नाइट का लुफ्त उठाइए. वो आ रहे हैं यहाँ पे अपने बेटे के साथ.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
3: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
5: क्या? कौन है?
6: Hunua और Waitakere.
5: अच्छा, Hunua west में.
6: किधर है Hunua?
3: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
3: Weekdays 6 to 10 a.m.
8: It's a client who tried DIY. It did not work. It's that 5-minute job still going 5 weeks later. It's a supplier. Everything is out of stock. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
9: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
10: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
3: Lunchbox with Ketan.
11: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं.
2: इसके पीछे?
3: लंच के मंच पे.
0: वेल ये रही बॉलीवुड की खबर. सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ दैट आमिर खान, आपने हमारा पोस्ट देख ही लिया होगा, नाउ ही इज मैरिड पर्सन अगेन. इसलिए बिकॉज तीसरी शादी हो रही है उनकी. सो यस, मैनी कंग्रेचुलेशन टू हिम. और काफ़ी मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के. वो बोल रहे हैं कि जस्ट वेट एंड वॉच, ही माइट डू अनदर वेडिंग इन फ्यू ईयर्स अगेन. यार लेकिन वो उसका पर्सनल लुक है यार, लाइक पर्सनल देख, उसकी पर्सनल लाइफ है यार. अभी वी शुडंट बी जजिंग बेस्ड ऑन वो कितनी शादी कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा है. इनफैक्ट द गुड थिंग इज उसका रिलेशन अभी भी उतना ही ज़्यादा अच्छा है विद द एक्स वाइफ्स. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक ही डजंट ब्रेक अप. सो इट शोज कि उन्होंने अगर तोड़ी भी है शादी तो इट हैज़ बीन अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल डिसीजन से ही हुआ है. सो या, गौरी स्प्रॉट और आमिर खान ने अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप को कन्वर्ट करते हुए फ्रेंडशिप को अब एक प्रॉपर और जेन्युइन रिलेशनशिप का नाम दे चुका है. एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली है. कपल की पहले वेडिंग ऑफिशियल वेडिंग फोटो सामने आई है जिसमें दोनों मैरिज रजिस्ट्री साइन करते नजर आ रहे हैं. शादी मुंबई के पाली हिल रेसिडेंस पर सिर्फ क्लोज फैमिली और दोस्तों की मौजूदगी में हुई है. फोटो में आमिर और गौरी के बच्चे भी उनके साथ दिख रहे हैं, जो इस इंटीमेट सेलिब्रेशन को और भी खास बनाती है. जैसे आमिर ने क्रीम कुर्ता पहना हुआ है उसमें, जबकि गौरी आइवरी आउटफिट में नजर आई हैं. और ये आमिर खान की तीसरी शादी है और कपल ने ग्रैंड सेलिब्रेशन के बजाय सिंपल रजिस्टर्ड मैरिज को चुना.
3: दिल से

0: वेलकम बैक। वेल, एक बहुत ही बढ़िया मौका लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जिसके लिए आपको अलर्ट रहना है और मैं थोड़ी देर में आपको मौका दूंगा जहां पे आपको मुझे कॉल करना है। वेल यस, जस्ट टू गिव यू हिंट, क्या एग्जैक्टली करना है, द ग्रेट कॉमेडी नाइट होने जा रही है बहुत ही जल्द 18 जुलाई को, और आपके पास बहुत ही कम टाइम है टू बुक द इवेंट, बुक द टिकट, बुक माई इवेंट .co.nz पे जाके आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे कॉम्पिटिशन हमारे लिए, आपके लिए ये है हमारी तरफ से द ग्रेट कॉमेडी नाइट, जहाँ पे कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर आ रहे हैं लाइव ऑन स्टेज। आपके लिए मौका ये है कि आपको मुझे कॉल करना है जब मैं आपको बोलूं, और कॉल करके आपको मुझे एक जोक सुनाना है। एंड अगर मैं हंसा तो यस, आपको यू नो डेफिनेटली डबल पास जीतने का मौका मिल जाएगा। सो यस, जल्दी से आप जोक जो है याद करके रखिए, और मैं आपको जैसे ही बोलूं आपको मुझे कॉल करना है 0800-004-866 पे, और मुझे जोक सुनाना है। इफ आई लाफ देन यस, आपको डबल पास जीतने का मौका मिल जाएगा। सो यस, आप बस सुनते रहिए, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए आपको लेटेस्ट खबर भी दे देता हूँ, दैट सेंट्रल ऑकलैंड के ईडन टेरेस में एक कार बिल्डिंग से टकरा चुकी है, जिससे बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। हादसा न्यू नॉर्थ रोड और माउंट ईडन रोड के कॉर्नर पर हुआ था, जहां इमरजेंसी सर्विस ने तुरंत पहुंचकर एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। पुलिस के मुताबिक क्रैश के बाद ड्राइवर को माइनर इंजरीज हुई, जबकि बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को सेफली बाहर निकाल लिया गया है। स्ट्रक्चरल डैमेज का असेसमेंट भी किया जा रहा है, और इंसिडेंट की जांच भी जारी है कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जैसे अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे।
1: लंच बॉक्स विद केतन। हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer. Shower dome.
2: हाय बॉयज, एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था। वो धोखे से राज करता था।
3: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
4: पर शुड वी कॉल हर सर?
5: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलाएंगे।
2: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई।
6: YRF Spy Universe presents
7: Alpha.
6: Now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
8: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
9: अपने सपनों की दुनिया बनाने, we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At AssureOne, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten. Because the right advisor knows the application process, the policy wording, and knows exactly what it takes for a claim to be successful. AssureOne, plan for tomorrow, today. Call 0800-77-HEERA. North Envale Advisory Limited, trading as AssureOne, is a licensed financial advisor.
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
11: हाँ। अच्छा
10: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
11: मिसेस सिंह,
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
13: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33

0: विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: स्किप या रीप्ले।
3: वेलकम बैक। एक बहुत ही क्यूट सा मैसेज आया है, क्यूट बच्चों के लिए या क्यूट किड्स लोगों के लिए। वेल, दिस स्पेशल अनाउंसमेंट इज फॉर स्पेशल पर्संस अमीरा एंड इमरान। आई नो इफ यू आर लिसनिंग टू मी, माय नेम इज केतन, जस्ट इन केस इफ यू डोंट नो, बट दिस मैसेज इज बाय योर मम्मा एंड मम्मा लव्स यू सो मच। You must be going somewhere right now to have maybe a good time, शायद shopping के लिए, या फिर school से just आप free हुए हो, या फिर हो सकता है you're going for something else. So yes, enjoy your day and spend some good quality time with your mama, because mama loves you a lot. So all wishes from us as well. हम की तरफ से भी आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बधाइयाँ। So you enjoy your day, rest of the day. एंड जो नेक्स्ट गाना है बंधु 2.0, जो कि कॉकटेल 2 का गाना है, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इसको रिक्रिएट किया है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फिल्म। तो यस, दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू यू अमीरा एंड इमान। एंजॉय दिस सॉन्ग।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: स्वागत करते हैं लंच बॉक्स में आपका। वेल मौका भी आ चुका है, यानी कि आपको मुझे कॉल करना है 0800-004-866 पे। एक जोक मारिए, अगर मैं हंस गया तो हाथों हाथ आपको डबल पास दे दूंगा। यहाँ पे प्लस पॉइंट पता है क्या है, फिजिकली कोई है नहीं अवेलेबल, तो कोई मेरे को गुदगुदे नहीं कर सकता, टिकल नहीं कर सकता, तो उस वजह से डेफिनेटली मैं तो नहीं हंसूंगा। बट यस, अगर आपने जोक मारा और मैं हंस गया, मैं लिटरली आपको हाथों हाथ विनर घोषित कर दूंगा कि आप बन चुके हैं विजेता फॉर द डबल पास, जो कि कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर आ रहे हैं यहाँ पे 18 जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर। और वीआईपी टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट पूरा ही शो सोल्ड आउट की कगार पे है। आप जल्दी से जाइए, टिकट खरीद सकते हैं bookmyevent.co.nz पे। देखिए कितना अच्छा मौका है यार, आप कॉल कर लो और जोक मारिए कोई भी, एंड लेट्स सी। ये देखो मैं हंस लेता हूँ, मैं है ना मैं इतना कठोर नहीं हूँ, कठोर दिल का नहीं हूँ। तो आप ट्राई करिए 0800-004-866 पे, जोक मारिए मुझे, मतलब मेरे पे, जो अगर मुझे भी रोस्ट करना है तो आई विल बी ओके। हंसना है बेसिकली। वैसे हमारे बीच में सैंडी भी हैं। हाय सैंडी।
1: हाय कीर्तन, कैसे हो तुम?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
1: बढ़िया यार, इंग्लैंड जीत रही है मेक्सिको से।
0: अच्छा?
1: हाँ, अभी मतलब 3-1 हो चुका है। मतलब मेरे को इंग्लैंड इतनी पसंद नहीं है मुझे वैसे, बट अभी देखो क्या होता है।
0: वैसे ये डेफिनेटली हम बात करेंगे फीफा की, अभी हाल फिलहाल हो रहा है कोई
1: सॉरी गेम पे ध्यान
0: था। अच्छा जोक था
1: ये जोक अच्छा था।
0: देखिए इसी तरीके से आपको जोक मारना है, कॉल करिए 0800-004-866 पे। और वैसे आपका कुछ कॉल आए, लाइक एनीवन ट्राइड?
1: मैंने आज माई टाइम किया ना, तो आज माई टाइम में तो मैंने कॉल्स ली नहीं थी उस समय पर।
0: ओके,
1: तो अभी ड्राइव शो में देखती हूँ।
0: मेरे को लग रहा है कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्या
1: जोक मारने के लिए।
0: हाँ, मतलब यार जोक मार लो, इतना
1: जिंदगी मजाक बनी बैठी है लोगों की, तो क्या ही जोक मारेंगे।
0: वही मजाक हमारे साथ करना है
1: वही।
0: और अगर आपने मजाक अच्छा किया तो आप जीत सकते हैं इनाम।
1: हाँ, और देख लो भाई कंपटीशन कितना सारा है, कॉल कीजिए 0800-004-866 हम पर तो आप ही जीत सकते हैं या भी डबल पास। तो बेसिकली क्या है कि ज्यादा अगर 2 या 3 कॉल्स आते हैं तो उसमें से एक विनर होगा केतन के शो में। अगर एक ही कॉल आती है जोक मारने के लिए तो रुजबे कह रही थी केतन, तो क्या होगा?
0: तो वो जीत सकता है,
1: तो वही विनर है।
0: मतलब ये है कि मुझे देना तो है
1: केतन को यहाँ पे, नहीं तो वो अपने पास रख लेगा। हाँ। तो आपके ऊपर है, आपको यार इतने सारे जोक्स आते हैं मेरे रील के ऊपर, वो चींटी हाथी वाला ही मार दो जोक।
0: सही में देखो
1: वही ना,
0: देना तो मुझे है, अगर किसी का कॉल नहीं आया तो मैं डेफिनेटली रख लूंगा, तो मेरे तो चांदी चांदी हो जाएगी। बट यहाँ पे आपके पास मौका है, चलो
1: मेरे
0: अभी
1: पास एक जोक है। हाँ, हाँ। मैं वो जोक बोलती हूँ जो मैंने रील पे बोला था जोक।
0: क्या?
1: एक हाथी का ब्रेकअप हो जाता है।
0: ओके।
1: ठीक है, उसके फ्रेंड्स उसको चेयर अप करने के लिए, उसका थोड़ा मूड ठीक करने के लिए उसको पार्क में लेके जाते हैं।
0: ओके।
1: ठीक है, वो पार्क में जाता है हाथी और सीसा पे बैठता है, सीसा वो जो वहां पे बैठता है वो, और वो टूट जाता है। क्यों?
0: मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले फोन पिक कर लेते हैं। हेलो हेलो,
1: मेक्सिको के दो।
2: गुड आफ्टरनून केतन भाई।
0: गुड आफ्टरनून, कहाँ से?
2: कैसे हैं आप?
0: मैं एकदम बढ़िया हूँ, ऑफिस से कॉल कर रहे हो आप?
2: ना, आई एम जस्ट ड्राइविंग होम राइट नाउ।
0: ऐसा लग रहा है किसी ने मतलब कनपट्टी पे बंदूक रख के आपको फोन करने को बोला है, इतना सीरियस?
2: नहीं यार, मैंने साइड में रख दिया है।
0: अरे क्या बात।
2: मैं इमिग्रेंट हूँ, माय नेम इज नैशक।
0: ओके,
1: तो बताइए एक जोक अभी आपको सुनाना है। वैसे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जोक लगे होंगे चीजों में।
0: हाँ सही में।
2: Well, I don't know is it a joke or no?
1: कोई बात नहीं,
2: बट बात में ऐसा हुआ था कि सब लोग इंडिया से जब न्यूजीलैंड आते हैं तब सब लोग बोलते हैं भाई न्यूजीलैंड तो हेवन जगह है, बहुत सही जगह है, वहां से वो लोग इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं। तो मैंने हंसते हंसते सबको बोल दिया कि हाँ भाई मैं स्वर्गस्थ ही हो गया हूँ अब तो। वैसे हम स्वर्गस्थ जो लगाते हैं वो मरने के बाद लगाते हैं, तो मैंने बोला हाँ भाई आप डाल ही दो। सो इट्स नॉट अ जोक, बट हंसते हंसते सब लोग को बोल दिया कि हाँ आप स्वर्गस्थ हम बन गए।
1: क्या बात है। तो वैसे ये तो चलो जोक था, ये बताइए कि आपको रियल में आके यहाँ पे कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जन्नत में आ गए, या फिर ऐसा लग रहा है कि यार इतना भी नहीं, रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन हो गया वो?
2: ना नेचर वाइज डेफिनेटली आंखों को जो दिखता है वो सही में
0: नहीं, आप ब्रूटल ऑनर्स हो सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप ब्रूटल ऑनर्स हो सकते हो,
1: आपका वीजा अफेक्ट नहीं होगा इससे,
0: हाँ डोंट वरी एक्सपेक्टेशन। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं तो आया था यहाँ पे, लैंड किया था मैंने पहली बार इनवकागिल में, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड द इनवकागिल और नॉट, काफी लोगों को पता नहीं इनवकागिल कहाँ पे, एकदम बॉटम साउथ में, न्यूजीलैंड के
2: बॉटम साउथ।
0: तो मेरे इमेजिन, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी भी इंटरनेशनल ट्रिप मारी नहीं थी, और मेरे जहन में ये था कि मैं जा रहा हूँ, और मैं जुलाई के मंथ में शॉर्ट्स में आया था,
1: ओह माय गॉड,
0: और मैं ये था कि लैंड करूंगा यहाँ पे मियामी जैसा बीच होगा, ये होगा वो होगा,
1: क्या बात कर रहे हो, कुछ रिसर्च नहीं किया तुमने,
0: बड़ी बड़ी बिल्डिंग कुछ नहीं किया मैं, अरे लिटरली दो दिन में, मतलब बहुत जल्दी आ गया था वीजा मेरा, तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो मैं आया लैंड किया और देखा तो भाई बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग छोड़ो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तो कहीं है ही नहीं वहाँ पे इनवकागिल में,
1: ओ वाओ,
0: और भाई ऐसी बैंड बजी मेरी बढ़िया, ये मेरी सच्चाई
1: थी। आप अकेले कॉलर है तो आपको मिलता है डबल पास,
0: कांग्रेचुलेशन,
2: ओ थैंक यू सो मच,
0: कोशिश बहुत अच्छी थी, हम ऑनेस्टली बताना तो हमें मतलब आवाज वाली हंसी नहीं आई, बट वी स्माइल्ड, हम वैसे स्माइल किया,
1: आपका सरकैज़म समझे हम,
0: हाँ, which was very good, so yes you are the winner, official winner of this competition, मेरे शो से, तो yes you have won the double pass, आप अपने प्रिय को या प्रिय को किसको भी लेके जाना चाहो तो जा सकते हैं, और enjoy करिए laughter show, congratulations, आपका वैसे नाम क्या,
2: thank you so much sir जी,
0: क्या नाम बताया आपने,
2: नई सर्ग, yes,
0: अच्छा मेरे को सुनाई दे नहीं सर नहीं सर, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल एंड यू एंजॉय द डे, थैंक यू, बाय बाय,
2: थैंक यू, यू एंजॉय योर डे,
0: या सी या।

0: स्वागत करते हैं जल्दी से आपको बता देते हैं लंच बॉक्स के थ्रू आपको कि अभी स्पोर्ट्स यानी कि फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में क्या चल रहा है। मैक्सिको वर्सेस इंग्लैंड 5 गोल टोटल हो चुके हैं। अभी जस्ट 2 गोल दूसरा गोल कर दिया है मैक्सिको ने, बट इंग्लैंड अभी भी आगे, यानी कि इंग्लैंड ने टोटल 3 गोल मारे हैं, 2 मैक्सिको की तरफ से आए हैं और राउंड 18 का ये मैच है। क्या लगता है आपको एट द एंड कौन जीतेगा आज के इस मैच में? वेल यस, जो भी जीतेगा शायद मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी गोइंग टू द क्वार्टर फाइनल। इंग्लैंड की तरफ से हैरी केन ने गोल किया है, जेरल को रेड कार्ड मिला है और ज्यूड ने 2 गोल किए हैं। उसके बाद मैक्सिको की तरफ से पॉल ने 69, बट उससे पहले जूलियन ने 42 मिनट पे गोल किया है। अभी 78 मिनट चल रहा है, लेट्स सी क्या स्कोर रहता आगे जाके। 2-3 यानी कि इंग्लैंड 3 गोल 1 गोल से आगे है अभी भी।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: कीप काम बिकॉज पंजाबी स्वैग इज ऑन।
3: ਮੰਗੀਏ ਤੇ

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
3: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
4: Sorry about that.
3: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
5: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla live.
6: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
7: Non-stop Bollywood.
8: Hum.
7: Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
9: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
7: इसके पीछे.
8: हम.
7: Tech Talk.
10: टेक टॉक के सेगमेंट में आपका स्वागत है. सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वार्टरली प्रॉफिट में बहुत ही जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और एनालिस्ट के मुताबिक कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो अप्रैल जून क्वार्टर में लगभग 18 टाइम्स बढ़कर 86 ट्रिलियन वॉन यानी कि करीब US डॉलर की अगर कैलकुलेशन करें तो 56.3 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 बिलियन एक्चुअली क्लोज नहीं एक्चुअली हाँ क्लोज ही होगा 100 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर हो चुका है. ये AI के लिए मेमोरी चिप की रिकॉर्ड डिमांड और चिप प्राइसेस बढ़ने की वजह से हो रहा है. AI बूम की वजह से ड्रैम एंड नैन मेमोरी चिप की डिमांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा सप्लाई में आ चुकी है जिससे उनकी प्राइसेस काफ़ी बढ़ती नज़र आई है. सैमसंग जो एनवीडिया गूगल और एप्पल जैसे टेक जायंट्स को मेमोरी चिप सप्लाई करता है इस ट्रेंड को बढ़ाकर बेनिफिशियरी बना चुके हैं. हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि एम्प्लॉई बोनस प्रोविजंस और फ्यूचर में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग धीमे पड़ने का रिस्क जो है वो कंपनी का प्रॉफिट पर असर डाल सकता है. और सैमसंग अपने डिटेल क्वार्टरली रिजल्ट के इस महीने के आखिर में अनाउंस करने वाली है. काफी इंटरेस्टिंग ये चीज है पर यस देखते हैं इस बार क्या इस साल एक्चुअली मुझे लगता है कि AI से AI से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसे इनोवेशन होने वाली है जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं बिकॉज आई एम टोटली इनटू AI राइट नाउ इन लर्निंग प्रोसेस ऑफ कोर्स. बट दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. बहुत ही बढ़िया आज का दिन समय बातें और आपके कॉल्स बहुत ही शुक्रिया उन सभी के लिए. आप बने रहिए और अभी कॉफी ब्रेक में सैंडी विल बी जॉइनिंग यू बैक अगेन उनका साथ दीजिए. मैं निकलता हूँ. आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम 12 से 3 तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड लव यू.

0: Cities. Football updates brought to you by Hisense. And Kiwi driver Shane Van Gisbergen has finished 25th in the latest NASCAR race. That's at Chicagoland Speedway in Illinois.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
3: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 14.6 डिग्रीज हो चुका है और आज का ओवरनाइट टेम्परेचर 9 डिग्रीज रहने वाला है। आने वाले दिनों में काफी ठंडी रहने वाली है, तकरीबन 4 डिग्रीज 3 डिग्रीज तक टेम्परेचर जाएगा ओवरनाइट।
2: द बीट ऑफ बॉलीवुड
4: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: कॉफी ब्रेक विद सैंडी।
3: 3:03 हो चुके हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। कैसे हैं आप? वैसे फीफा के बारे में बात करें, इंग्लैंड इज लीडिंग बाय 3-2। क्या लगता है आपको, अभी भी कुछ टाइम अभी बाकी है, सो कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा? और इंग्लैंड इज़ टेकिंग दिस। इंग्लैंड के भी वैसे बहुत फैंस हैं, मैंने देखा है बहुत सपोर्ट करते हैं इंग्लैंड को भी। इफ़ यू आर द वन यहाँ पे बता सकते हैं। सो मैक्सिको के भी काफ़ी फैंस हैं। सो फॉर नाउ इट्स 3-2, बट या एनीथिंग कैन हैपन, अदरवाइज इंग्लैंड इज़ टेकिंग थ्रू दिस। एंड इस बार मुझे लगता है 10 गोल्स का गोल्डन बूट भी रहने वाला है फीफा में, बट आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू ऑन द डिटेल्स। एनीवे, आपका वीकेंड कैसा गया है? आपका वीकेंड कैसा था एंड क्या आपने किया, इसके बारे में भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। थोड़ी देर में कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का भी आपको मौका मिलेगा। स्टे ट्यून्ड।
1: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स। गूगल PFSL टुडे, अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। विजिट indelibleHomes.co.nz।

3:08 हो चुके हैं और जैसे ही मैंने आपके लिए गाना प्ले किया था उधर मैच खत्म हो गया था मैक्सिको इंग्लैंड के बीच में, इंग्लैंड की जीत हुई है 3-2 के साथ। सो या 3 गोल जो है ये इंग्लैंड की टीम ने बनाए थे आज के दिन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहा और अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप के जितने भी मैचेस हो रहे हैं सो फार काफ़ी ज़्यादा इस बार इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। गुड थिंग इज़ हमारे लिए कि हम ये मैचेस को देख पा रहे हैं। इट वॉज़ हार्ट ब्रेकिंग इन द मॉर्निंग दो, ब्राज़ील और नॉर्वे के बीच में जो मैच हुआ था ब्राज़ील की हार हुई इफ़ यू आर अ ब्राज़ील फैन। नॉर्वे की 2-1 के साथ इसमें जीत हुई थी। एंड नेक्स्ट जो मैच होने वाले हैं कल पोर्चुगल एंड स्पेन के बीच में मैच होगा एंड देन यूएसए एंड बेल्जियम के बीच।

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
2: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
3: And if you're just joining us after the break, we're talking about... Holy... $10 deals on Uber Eats?
4: Find $10 ding-dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
5: My mate Sam hurt his shoulder at basketball. He got sorted with a rehab plan and was doing his exercises, but he started feeling a bit down. So me and the boys made sure to visit him, and he helped with some coaching, so he still felt like part of the team. It meant he stayed active and on top of the injury. Then when he recovered, he was back to his awesome self.
6: If you've got a sprain or strain, staying connected to friends, whānau and things you love doing can help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
7: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है हाँ, अच्छा बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
8: मिसेस सिंह
9: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
10: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.in
11: अपने सपनों की दुनिया बनाने we all came here and we work hard to protect them but when something goes wrong like a cancer diagnosis an accident or a heart attack your insurance claims only succeed if your application was done right from the start at Assure One Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured nothing is missed nothing forgotten because the right advisor knows the application process the policy wording and knows exactly what it takes for a claim to be successful Assure One plan for tomorrow today call 0800 77 HEERA North Henvale Advisory Limited trading as Assure One is a licensed financial advisor provider.

3:20 हो चुके हैं, लग रहा है 2026 सो फार दिलजीत दोसांझ का जाने वाला है दिस मूवी में वापस आऊंगा दो इसमें मैं वेदांग रायना वॉज द हाईलाइटेड वन एंड नुसरुद्दीन शाह एज वेल बट मैंने कल देखी फाइनली मूवी सतलुज पंजाब 95 का नाम बस चेंज किया था सतलुज एंड Z5 पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया था बिकॉज ये सिनेमाज में रिलीज़ होने के लिए मूवी को अप्रूवल नहीं मिला था विदाउट एनी कट सो वहाँ पे यू नो आई वॉज अ लकी वन जिसने जल्दी देख ली मूवी बिकॉज अभी ये OTT से भी उड़ चुकी है लेकिन ओवरसीज़ के लिए अभी भी अवेलेबल है तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं इट्स अ स्टोरी जो सबको पता है इट्स अबाउट जसवंत सिंह जिन्होंने एक मूवमेंट शुरू की थी ही यूज़ टू वर्क इन अ बैंक और जब उनको पता चला कि बहुत सारे लोग उनके पास आ रहे हैं कुछ पेरेंट्स आ रहे हैं उनके पास लोन लेने के लिए टू फाइंड देयर मिसिंग सन एंड बाद में उनकी फैमिलीज में उनके नोन्स में भी ये होने लगा तो ही स्टार्टेड टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द कि ये जो मिसिंग लोग हैं ये कहाँ पर जा रहे हैं सो इट्स अ डेथ स्टोरी जो कि इट्स बिटवीन 84 to 95 इन पंजाब जो कुछ हो रहा था उस समय पर एंड जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ है जो कि क्रिमेट कर रहे थे लेकिन उनका कोई अनक्लेम्ड बोल के उन्हें क्रिमेट किया जा रहा था हालांकि उनके घर वाले उन्हें ढूंढ रहे थे सो इन्हीं चीज़ों को उन्होंने अनकवर किया था एंड जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनको उन्होंने अनकवर किया था बट इवेंचुअली उनका भी वही हशर हुआ था सो उनके ऊपर इस मूवी को बनाया गया दिस इज़ अ फैक्ट जो कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ में इट्स एवरीवेयर सो मूवी में उससे ज़्यादा कुछ और दिखाया नहीं गया है इनफैक्ट इस मूवी को अप्रूवल दिया है जसवंत सिंह की वाइफ ने हु इज़ स्टिल कैरिंग द मोमेंट जो आगे इस चीज़ को बढ़ा रही है अपने बच्चों के साथ अभी भी फैमिलीज जिनको जस्टिस चाहिए उनके लिए फाइट कर रही है वो सो देयर इज़ नथिंग एक्स्ट्रा शोन इन द मूवी एंड नेम्स को लेके बात करते अगर तो जसवंत सिंह और उनकी वाइफ का नाम जो है बीच में रियल यूज़ किया गया है बाकी कोई और नाम बीच में रियल यूज़ नहीं किया गया सब बाकी और नाम बनाए गए हैं बट यू कैन ऑफकोर्स रिलेट कि किसका रोल किसने निभाया है बट कोई भी रियल नाम बीच में यूज़ नहीं किया गया सो काइंड ऑफ सरप्राइजिंग कि उसको OTT से भी इंडियन ऑडियंस के लिए हटा दिया गया है विद इन 24 आवर्स और सो नो 48 आवर्स के विदन दो दिन ये मूवी रही थी OTT पे चलो जिन्होंने देखनी थी उन्होंने देख ली है बट ओवरसीज ऑडियंस के लिए ये मूवी अभी भी अवेलेबल है

328 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. वैसे आज एक क्रैश भी हुआ था एट द इंटरसेक्शन ऑफ न्यू नॉर्थ रोड एंड माउंट ईडन रोड इन सेंट्रल ऑकलैंड. सो टू व्हीकल क्रैश हुआ था, रिजल्टेड इन वन कार स्मैशिंग इन टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ कमर्शियल बिल्डिंग. जो इम्पैक्ट था जिसकी वजह से काफ़ी एक्सटेंसिव डैमेज भी हुआ है टू द बिल्डिंग्स फ्रंटेज. वन पर्सन वॉज टेकन टू हॉस्पिटल इन अ सीरियस कंडीशन वाइल अनदर पर्सन सफर्ड मॉडरेट इंजुरीज. एमरजेंसी सर्विसेज वैसे ऑन द सीन थी. फायर क्रूज ने असेस किया द स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग कोलिजन के बाद. एंड द इंटरसेक्शन जो था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी आज रहा था. सो दिस क्रैश हैपन्ड अराउंड मिड डे, 12:10 के अराउंड ये हुआ था. सो पुलिस आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग द सर्कमस्टांसेज जिसके वजह से ये क्रैश हुआ था. ओवर द वीकेंड वैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी जगह पे ब्रेथ टेस्ट एंड ड्रग टेस्ट जो है ये भी चल रहे थे. एंड आई स्पेसिफिकली नोटिस्ड एक जगह पे तो पुलिस वॉज देयर फॉर तकरीबन 1.5 आवर, बिकॉज मैं जब गई तब किया टेस्ट और मेरे को तकरीबन 1.5 आवर लगा. जब मैं वापस आई तो तब भी पुलिस वहाँ पे खड़ी थी. दो बार हुआ खैर, बट या पुलिस वॉज क्वाइट एक्टिव इन डिफरेंट एरियाज़ ओवर दिस वीकेंड.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 09278860.

राघव चैतन्या की आवाज में दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग आप यहाँ पर सुन रहे थे। 3:40 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं, 20 मिनट बाकी है 4 बजने में 4 बजे के बाद। वैसे आपके लिए यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, कुछ कॉम्पिटिशन्स भी रहेंगे, आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा द ग्रेट कॉमेडी नाइट इस कॉम्पिटिशन में, जहाँ पे कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। एंट्रीज ओपन अप होगी आपके लिए ड्राइव शो में जब आप यहाँ पे एक जोक सुनाएंगे और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल होगा, जहाँ पे डबल पास आपके नाम हो सकता है जस्ट एक जोक ही सुनाने से। तो अपना जोक जो है ये रेडी रखेगा, ऐसे जोक यू नो इट कैन बी अ वन लाइनर जोक्स ऐसे भी हो सकते हैं, वो आपने कोई खुद से बनाए हुए जोक्स हो सकते हैं, वो आपके व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आए हुए जोक्स जो होते हैं ना ये वो भी हो सकते हैं, इट कैन बी एनी थिंग। सो लेकिन ऑन एयर फ्रेंडली जोक्स होने चाहिए, बस इतना आप ध्यान देना, इतनी सी बात आपको बस ध्यान में देनी है। सो उस समय पर आप यहाँ पे कॉल कर पाएंगे ड्राइव शो में जब आपको मौका मिलेगा, जब हम आपको यहाँ पे बोलेंगे 0800 00 हम पर 0800 00 4866। नाउ लेट्स कम टू अवर पॉडकास्ट। हमने एक पॉडकास्ट किया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, AI स्पेशलिस्ट दर्शित पांड्या के साथ, जो कि सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर है। सो दर्शित पांडे के साथ जो हमने ये जो पॉडकास्ट किया है, हमने चैट GPT से लेके AI को आप डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, AI को लेके एवरी डे ना कुछ नई नई न्यूज़ आ रही है, एवरी डे देर इज़ समथिंग न्यू। रिसेंटली आई लर्न्ड अबाउट कि अब प्रॉम्प्टिंग की जगह लूपिंग भी होती है, व्हाट इज़ लूपिंग एग्जैक्टली, इसके बारे में भी वैसे दर्शित पांड्या ने इस पॉडकास्ट में बात की है। सो देर इज़ सो मच मोर अबाउट AI जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मे बी इट्स टाइम टू अपस्किल योर सेल्फ, यू नो अगर आप AI को अच्छे से सीखते हैं तो आप अपने रोज़ की लाइफ के बहुत सारे काम ईजी कर सकते हैं, ये आपके साथ हो सकता है। सो ये सीखने के लिए कि आपको शुरू कहाँ से करना चाहिए, ये पॉडकास्ट सुनना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरू कीजिए इस पॉडकास्ट को सुनने से। अगर आप ड्राइव लिख के भेजते हैं 5599 पर, यू विल गेट ऑटो रिप्लाई में द फुल लिंक। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज़ कि रोवा पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए अनफिल्टर विद सैंडी एंड रुस्बे, तो वहाँ पर भी आपको हमारा पॉडकास्ट मिल जाएगा। या फिर आप स्पॉटिफाई पे जाइए, एप्पल म्यूज़िक पे जाइए, इन सब प्लेटफॉर्म्स में आप जा सकते हैं। यू कैन सर्च अनफिल्टर विद सैंडी एंड रुस्बे, तो आपको हमारा पॉडकास्ट मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, लेटेस्ट एपिसोड जो है वो सबसे ऊपर आता है, क्लिक कीजिए एंड यू लिसन टू होल एपिसोड, तो आपको और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के

0: Limited, The Drive Show with Sandy and Rizvi.
1: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
2: 4:03 हुए हैं. Good afternoon. You're listening to The Drive Show with Sandy and Rizvi. Hi Sandy, good afternoon.
3: Good afternoon Rizvi, कैसे हो तुम?
2: मैं बढ़िया हूँ Sandy. वैसे weather fine नहीं है अभी. अभी तो weather unfine हो गया है काफी.
3: क्या बात कर रहे हो बाहर?
2: काफी cloudy और एकदम ऐसे वो होता है ना कि बारिश आने से पहले जैसा weather हो जाता है.
3: Humid भी है क्या?
2: नहीं humid नहीं है.
3: Okay.
2: Windy है थोड़ा सा, हल्का सा.
3: ठंड है बस.
2: ठंड है धीरे हल्की हल्की.
3: Yeah.
2: Yeah, it's nice.
3: So it's a good weather कि bad weather.
2: अभी के लिए good है लेकिन बारिश होने की संभावना हो सकती है.
3: Full on कल का तो दिखा रहा है full on है लेकिन उसके बाद जब धूप खिलेगी तो temperatures can go down overnight 4 degrees, 3 degrees.
2: Ooh.
3: ऐसे जा सकते हैं.
2: So again, okay, peak winter July.
3: Yeah, so अभी ऐसा नहीं कि winter गई है. Winter तो अभी आई है.
2: Winter तो अभी आई है. थोड़ा
3: अभी late शुरू हो रही है actually में. Anyway, तुम्हारा डे कैसा गया सो फार?
2: मेरा डे बढ़िया था. वीकेंड कैसा था आपका सैंडी?
3: अच्छा था. इट वाज लाइक वेरी बिजी बट गुड वीकेंड.
2: गुड वीकेंड.
3: या वेरी गुड वीकेंड. व्हाट अबाउट यू?
2: या आके चला गया.
3: संडे बहुत रिलैक्सिंग था मेरा. सैटरडे वाज फुल बिजी. संडे वाज वेरी रिलैक्सिंग.
2: रिलैक्सिंग क्या करते हो? रिलैक्सिंग मतलब
3: संडे मतलब चिल आउट वाला था कि ज्यादा कहीं पे. हाँ, घर पे ऐसा चिल, जो देखना है वो देखो एंड कुछ नहीं. कभी कभी होता है ना आपको लेजी अराउंड करने का बड़ा मन होता है.
2: या
3: दैट वाज माय संडे एक्चुअली.
2: दैट्स गुड यार. मैं वही सोच रहा हूँ. मेरा लेजी अराउंड वाला तो ऐसा वीकेंड आई थिंक सैटरडे भी ओके था. आई थिंक इट वाज अ मिक्स ऑफ अ वीकेंड फॉर मी. एक्टिव एंड चिल वाला.
3: व्हाट अबाउट यू गाइस? क्योंकि कभी कभी ना मन होता है When life is going too busy, तो आपको होता है कि यार एक दिन मिले कि जस्ट ऐसे ही बैठना है. जस्ट
2: अभी आ रहे ना लॉन्ग वीकेंड उसके लिए. It's the short week for us this week.
3: Yeah, this is a short week. Wow, yeah, Friday को छुट्टी है.
2: Yeah, yeah. Actually hit नहीं हुआ ये बार ना कि ये short week आ रहा है.
3: और इसके बाद बहुत लंबे समय तक नहीं आने वाला है.
2: अभी लंबा समय कहाँ पे? अभी अक्टूबर में आ जाएगा ना फिर से. अभी जुलाई है, अगस्त, सितंबर, दो महीने, तीन महीने निकालने actually.
3: तीन महीने. देख लो, कोई बात नहीं.
2: तो sick leave किसके लिए लेकिन?
3: Yeah. लॉन्ग वीकेंड्स की बात करते हैं तो रिमेंबर ईस्टर 2027 यू कैन स्पेंड विद अस.
2: ओह यस यस, ईस्टर 2027
3: यू कैन हॉलिडे विद अस एक्चुअली.
2: या वी आर गोइंग टू हॉलिडे टुगेदर. हम लोग जा रहे हैं बाली और फिर बैंकॉक.
3: या
2: और अगर आपको भी इसका हिस्सा बनना है, आपको भी हमारे साथ अगर पार्टी करनी है या चिल करना है तो
3: आप ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर. और डिटेल्स वैसे आपके लिए रहेगी बट अगर आप ड्राइव लिखते हैं 5599 पर तो आपको एक फॉर्म मिलेगा. एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फिल कीजिए. जस्ट फिल योर इंटरेस्ट कि यू आर इंटरेस्टेड एंड हम जल्दी आपको आइटनरी पूरी की पूरी भेजेंगे प्राइस के साथ. एंड देन या और भी सारी
2: लाइव झिंगा लाला.
3: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा काइंड ऑफ ट्रिप.
2: दैट्स राइट.

0: न्यूजीलैंड बेस्ड मूवी प्लेयर्स से आप सुन रहे थे ये गाना. न्यूजीलैंड में शॉट हुई है ये, स्काई टावर पे इसके थोड़े बहुत शूट सीन्स है.
1: या मुझे सो फार ना तीन मूवीज याद है रूस में जो न्यूजीलैंड में शूट की गई है.
0: अच्छा,
1: अगर आपको ज्यादा पता है तो मैसेज करके बताइए.
0: मतलब आप बोल रहे हो मूवीज, मतलब ऐसे एज अ डेस्टिनेशन यहाँ पे शूट हुई?
1: डेस्टिनेशन मतलब जो मूवीज न्यूजीलैंड में शूट की गई है उसके चाहे थोड़े पार्टी से ही. कहो ना प्यार है,
0: बट मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ,
1: I hate love stories and players.
0: या जहाँ पे वो लोग ने बताया कि वो न्यूजीलैंड में है और वो लोग ने शूट किया है.
1: हाँ,
0: क्योंकि ऐसे और भी बहुत मूवीज या गाने हैं जो शूट हुए हैं
1: लेकिन उनको उनमें पता नहीं है.
0: बट उनमें पता नहीं है.
1: For example,
0: सोल्जर का गाना,
1: हाँ,
0: वो न्यूजीलैंड में शूट हुआ है. थोड़ा सा
1: कौन सा वाला?
0: वही सोल्जर, सोल्जर मीठी बातें बोलकर. वो जब चलती है, चलता है, और वो क्योंकि ना प्रीति जिंटा का एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे बोली थी कि हम क्वींसटाउन में थे, बहुत ठंड थी और वहाँ पे हमको ऐसा ऐसा करना था और पूरे अकड़े थे हमारे फिंगर्स, ये वो एक इंटरव्यू में मैंने देखा था. फिर सनी देओल की एक मूवी है उसमें भी उसका भी शॉट यहाँ पे हुआ था.
1: तो क्यों नहीं बताया उन्होंने मूवी में?
0: बट वो टाइम पे मूवी में नहीं ना, मतलब वो पहले होता
1: था
0: ना कि गाने ओवरसीज लोकेशन पे शूट होते थे, सिर्फ गाने शूट होते थे overseas location.
1: Yeah, once upon a time.
0: ऐसा होता था ना एक जमाने में. अभी भी होता है शायद, लेकिन अभी वो स्टूडियोज में शूट होते हैं.
1: अभी ग्रीन स्क्रीन, AI सब कुछ आ चुका है तो जरूरत नहीं है एग्जैक्टली लोकेशंस में जाने की.
0: या बट पहले बहुत पैसा होता था लोगों के पास, ऐसा एक एक गाने के लिए जाते थे शूट करने के लिए.
1: मेरे को तो लगता है कि अभी न्यूजीलैंड में ज्यादा आना चाहिए ना टूरिज्म, बॉलीवुड का भी खास तौर पर जो मूवीज है यहाँ पे ज्यादा शूट होनी चाहिए. पंजाबी मूवीज काफी शूट होती है यहाँ पे, वो काफी सॉन्ग्स भी यहाँ पे काफी शूट होते हैं.
0: हाँ, यहाँ पे एक्चुअली वो अच्छा है,
1: वो काफी ज़्यादा
0: मेन, लेकिन उनका मेन फोकस होता है कनाडा. फर्स्ट प्रेफरेंस कनाडा होता है. अगर वहाँ पे कुछ नहीं होता है तो फिर वो न्यूजीलैंड प्रेफर करते हैं.
1: न्यूजीलैंड में रिसेंटली काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा हुई है, या काफी सारी प्रोडक्शंस यहाँ पे हुई है. बट बॉलीवुड का मैं ज्यादा नहीं देखती हूँ.
0: बॉलीवुड का हाँ मेरे को लग रहा है
1: अभी रिसेंट टाइम में तो ज्यादा होना चाहिए.
0: बट देखो प्रॉब्लम क्या मालूम है, आजकल लोग भी बॉलीवुड नहीं देख रहे ना.
1: ये भी है.
0: जो अच्छी मूवी होती है वो निकल आती है, मतलब उसको निकाल देते तो फिर
1: करे. मैं वही बात किया मैंने थोड़ी देर पहले.
0: मेरे को तो पता है आज तो पूरा शो आप उसके ऊपर करोगे.
1: नहीं मैं चाहू तो कर सकती हूँ.
0: वही तो.
1: बट देन सुनने वाले भी होने चाहिए.
0: नहीं नहीं सुनेंगे लोग यार. बट एनी वे आई थिंक या इट्स टाइम टू रिवाइव shooting Bollywood, not just songs but also movies.
1: The movies I'm saying. The movies, New Zealand मेरे को लगता है कि इतनी scenic जगह है, हर कोई इसके बारे में बात करता है. राजकुमार राव आके गया था. वही तो, finally हो गया रुस्बे. तुमने manifest किया था उस समय पर FTA.
0: But सब credit national लेके जा रही है.
1: रुस्बे ने ये literally manifest किया था Melbourne Film Festival में.
0: मैनिफेस्ट नहीं, मैं वहाँ पे जाकर पहले से ही प्रमोट कर रहा था कि अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है.
1: मतलब वही ना, वो मैनिफेस्टेशन होती है जब तुम बोलते हो कि जो चीज होने वाली है वो हो चुकी है. इट्स लाइक करंट सिचुएशन. तुमने वहाँ पे बोली थी, किसको बोली था? जयदीप अलावत.
0: जयदीप अलावत को बोला
1: था कि सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, अब आते क्यों नहीं कहता.
0: नहीं होने वाला है, मैंने बोला होने वाला है.
1: एंड जयदीप अलावत बोला मुझे बुलाता नहीं है कोई. क्या सैड यार.
0: बट या एनीवे आई लाइक हिज ऑनेस्टी.
1: Yeah.
0: Honesty सही जा रही है. बट एनी वे 4:16 हुए हैं, और भी बातें करेंगे आपके साथ. आप सुनते रहिए हम आज. वैसे 5 के बाद हम आपके लिए ये लेकर आएंगे, देसी और नॉट सो देसी लेकर आएंगे, जहाँ पे हम आपके लिए एक बिहेवियर लाएंगे यहाँ पे और आपको बताना है कि इज इट देसी बिहेवियर और इज इट नॉट सो देसी बिहेवियर.
1: या तो यहाँ पे उस समय पर आप कॉल कर सकते हैं 0800 000 हम पर.

0: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: स्मार्ट पे इज नाउ शिफ्ट फॉर डकोटा NZ, ग्लोबल कॉमर्स, लोकल सर्विस।
5: वेटिंग वीक्स फॉर योर इफपो सेटअप, दैट्स लॉस्ट रेवेन्यू। शिफ्ट फॉर गेट्स योर बिजनेस अप एंड रनिंग एंड टेकिंग पेमेंट्स इन अंडर अ वीक। टेलर योर सेटअप फ्रॉम डे वन विद फ्लेक्सिबल प्लान्स एंड कस्टमाइजेबल ऑप्शंस दैट कैन ब्रिंग बिजनेस कॉस्ट्स डाउन। मेक द शिफ्ट टुडे।
6: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla live.
7: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
8: No way.
9: We in trouble?
7: Nah, it's BP Plus.
9: What is that?
7: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
10: Sweet. Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months, plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
11: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
12: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki, all together Auckland.

0: You're listening to Humbling Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे हम एक से गाने लेकर आते हैं और इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह भी ले आते हैं. वैसे सैंडी, पता नहीं आपने इसके बारे में बात की कि नहीं ऑलरेडी, कि ये कार जो है ये सेंट्रल ऑकलैंड की एक बिल्डिंग में क्रैश हो गई है.
1: या
0: क्रेजी,
1: ये आज मिड डे के टाइम पे हुआ था.
0: दो गाड़ियां एक्चुअली कोलाइड हो गई है और काफी नुकसान हो गया है. बिकॉज दिस हैपेंड कॉर्नर ऑफ न्यू नॉर्थ रोड एंड माउंट ईडन रोड इन ईडन टेरेस. और बहुत ही बुरा हाल लग रहा है गाड़ियों का यार. जो गाड़ी का हाल दिख रहा है काफी बुरा हाल. पहले ही यहाँ पे बिजनेसेस इतने सफर कर रहे हैं, उसमें भी ये गाड़ियां भी अंदर से आके एक्सीडेंट हो रहा है यार.
1: एक की सीरियस इंजरी हुई है इसमें.
0: एक की सीरियस भी इंजरी हुई है.
1: या
0: दैट्स क्रेजी यार. नहीं, बिकॉज़ फोटोज लुक क्वाइट डिवास्टेटिंग यार, क्योंकि वो गाड़ी का तो हाल ही पूरा खराब हो गया है. बट मुझे समझ में नहीं आता है, जहाँ पे 30-40 का जोन होगा यहाँ पे इस एरिया में, 40 या 50 का जोन, उसमें इतना बुरा एक्सीडेंट.
1: तो स्पीडिंग हो सकता है, दे आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग. अगर क्रैश हुआ है बिल्डिंग में तो 30 के जोन में तो क्रैश नहीं हो सकता है, बट लेट्स सी.
0: एंड इसका बिल्डिंग का वो, मेरे को लग रहा है बीम डैमेज हो गया है उसमें. मुझे से लग रहा है, सो इट कुड बी अ सीरियस थिंग.
1: वैसे तुम्हें पता है ओटैगो में रेड लेवल रेन वार्निंग भी है, अ रेयर रेड हैवी रेन वार्निंग जो है. ये पहले थी डोनेडन में, एक्चुअली में लिफ्ट अप कर दी गई है दो, बट स्टेट ऑफ एमरजेंसी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इन वाइटाकी. मेयर ने बोला है वहाँ पे जो कार्स हैड बिन अबैंडन दिस मॉर्निंग ड्यू टू रोड फ्लडिंग. वाह, इतना कुछ हुआ है यार, ऐसा मौसम भी हुआ है काफ़ी जगह पे.
0: जी, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना कि कुछ कुछ जगहों पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होने वाली है.
1: कैंटरबरी में एक्चुअली में वार्निंग है अभी भी, रेड लेवल की वहाँ पे वार्निंग है. मीन्स की काफ़ी पीक जो रेन है ये वहाँ पे जा सकती है. सरफेस फ्लडिंग भी होगी, स्लिप्स भी होंगे, रिवर कंडीशंस जो है ये डेंजरस भी हो सकती है.
0: ऑकलैंड में कंपैरेटिवली कम बारिश गिरी है ये बार, मुझे लगता है, इन दिस विंटर
1: कंपेयर टू साउथ आइलैंड,
0: एज कंपेयर टू एनी अदर पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड. मुझे लग रहा है ऑकलैंड में सबसे कम बारिश होगी ये बार. ना तो यूजुअली विंटर में काफी बुरा हाल होता है ना, बारिश काफी होती है वेदर, बट दिस टाइम इट्स बीन मच ब्राइटर एंड ब्यूटीफुल विंटर.
1: या इट्स बीन स्नोफॉल भी काफी जगह पे हो रही है. लेक टेकैपो वहां पे स्नो ब्लैंकेट्स एक्चुअली में दिखाई दे रहे हैं प्रॉपर.
0: या स्की सीजन इज ऑन.
1: या
0: थोड़ी देर में आपके लिए फीफा अपडेट्स लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ अपसेट्स, मेजर अपसेट्स हुए हैं. मैंने जिस टीम के बारे में, जिस टीम पे बेट लगाई थी, मेरे साथ ही ऐसा होता है यार, हो ही ना. और जो टीम हमें चाहिए थी नहीं जीते, वो टीम भी जीती है. सारी अपडेट्स आपके लिए बस ऑन हम. वेल, सिटी के अंदर से अगर आप सुन रहे हैं, सिटी से 87.7 पे भी आप हमें सुन सकते हैं.

0: बेनी दयाल शाल मलिक होलगड़े आपके लिए ओनली ऑन हम्पलिंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स बेशर्मी की हाइट, ये गाना आप सुन रहे थे अभी। और टाइम आ गया है आपको हम फीफा अपडेट्स भी दें। यहाँ पे फीफा में आज बड़े अपसेट वाले मैचेस हुए यार। पहले तो ब्राज़ील और नॉर्वे का मैच हुआ सुबह सुबह, जहाँ पे नॉर्वे ने धूम मचा दी यार। वो एक ही मेरे को लग रहा है गेम खा गया वो बंदा। दैट वाज क्वाइट अ मैच। और
1: एरलिंग,
0: एरलिंग ना,
1: या
0: तो नॉर्वे 2 और ब्राज़ील 1। एंड
1: नेमर ने वैसे गोल किया था ब्राज़ील में।
0: हाँ, एक नेमर ने किया, बट एनीवे इट वाज आई थिंक अ बिट टू लेट।
1: कल बाय द वे फ्रांस की जीत हुई थी 1-0 के साथ।
0: या और कल सुबह गेम होने वाला है पोर्चुगल और स्पेन के बीच। ये अगेन
1: स्पेन लुक स्ट्रांग यहाँ पे।
0: अच्छा, स्पेन लुक स्ट्रांग।
1: आई मीन पोर्चुगल इज गुड, लेकिन वो इट्स रोनाल्डो,
0: रोनाल्डो
1: बिकॉज़ ऑफ रोनाल्डो।
0: या
1: सो बट इसमें मेरे को गेम में मेरे को स्पेन ज्यादा वो लग रहा है, स्ट्रांग लग रहा है।
0: ओके,
1: या वैसे उससे पहले जो मैंने ओवर द वीकेंड देखा था, अर्जेंटीना का जो मैच मैंने देखा था, अर्जेंटीना एंड केप वर्दे के बीच में जो मैच था ना, सो सीपीवी मैं बोलती हूँ खैर उसको, कि वो जो टीम है ना वो एक छोटा सा आइलैंड है। वहाँ से मतलब बहुत मेहनत करके वो टीम जो है उनकी बनी है। अर्जेंटीना के खिलाफ उनका मैच था एंड व्हाट अ गेम मैन, व्हाट अ गेम। इट वाज नॉट इजी फॉर अर्जेंटीना, बहुत ही डिफिकल्ट विन थी। मतलब एंड मोमेंट तक, मतलब मैं मेरा भाई देख रहे थे, वी वर लाइक कि लगता है अर्जेंटीना गई, और गई भी किससे, सीपीवी से गई। बट या इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो या ये मैच अर्जेंटीना ने जीता 2 बाद में 3-2 के साथ, बट अमेजिंग मैच था।
0: सॉलिड टफ फाइट,
1: सॉलिड टफ फाइट इस टीम ने दी थी। एक समय पर तो लगा था कि ये लेके जाएगी, बट मैं वो इस देख रही थी कि दिस टाइम ना फीफा वर्ल्ड कप में जो मैचेस हो रहे हैं उसमें तो वेरी इंटरेस्टिंग, पेनल्टीज तक जा रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम तक जा रहे हैं, बहुत अच्छे मैचेस एक्चुअली में हमने देखने को मिल रहे हैं। गुड थिंग इज कि हमारा टाइमिंग मैच कर रहा है,
0: टाइमिंग बहुत मैच कर रहा है, इसलिए काम पे लोग काम नहीं कर रहे, मैचेस देख रहे
1: हैं, देख रहे हैं,
0: वो हो रहा है।
1: बट व्हाट अबाउट मेक्सिको एंड इंग्लैंड?
0: या मेक्सिको एंड इंग्लैंड, यार इंग्लैंड यहाँ पे भी जीत गया यार।
1: या यहाँ पे भी जीत गया मेक्सिको। एंड में अपनी गेम उन्होंने पुल की थी एक्चुअली में, एंड दे डिड 2 गोल्स, बट इट वाज टफ फाइट।
0: या इट्स बीन क्वाइट अ टफ वन यार। मैं तो सैड हूं कि ब्राजील बाहर निकल गया यार। ब्राज़ील से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे समझ में नहीं आता। मैं जो टीम को सपोर्ट, मैंने इंग्लैंड को सपोर्ट करना चाहिए, अभी मैं इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ,
1: इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ
0: ताकि वो बाहर निकल जाए ना।
1: या
0: बट एनीवे अभी जो कुछ मैचेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए और बेल्जियम कल होगा, और पोर्चुगल और स्पेन, इसके बीच में पता चलेगा कि कौन सी टीम आने वाली है।
1: आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती है, आपको क्या लगता है कौन सी टीम आगे जाने वाली है, पोर्चुगल स्पेन में, यूएसए बेल्जियम के बीच में किसकी जीत होने वाली है, आप भी यहाँ पे बता सकते हैं 5599 पर। और किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं ये भी आप बता सकते हैं।
0: फ्रांस को सपोर्ट किया था ना?
1: सपोर्ट नहीं किया था, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि फ्रांस के चांसेस हैं जीतने के।
0: फ्रांस तो है अभी भी रेस में,
1: वो तो है। मुझे ऐसा प्रेडिक्शन लग रही है कि हो सकता है कि इवेंचुअली आगे जाके इट्स इंग्लैंड फ्रांस, समथिंग लाइक दिस।
0: इंग्लैंड फ्रांस बोल रहे हो आप?
1: या हो सकता है ये।
0: मैं इंग्लैंड को ही सपोर्ट करता हूं ताकि बाहर निकल जाए।
1: आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम आगे जाने वाली है, क्या होने वाला है? आप भी अपनी प्रेडिक्शंस लिख के यहाँ पे भेज सकते हैं 5599 पर। अभी राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल्स हैं।
2: PFSL providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Buri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
3: कौन है?
4: हुनुआ और वेटाकरे।
3: अच्छा हुनुआ वेस्ट में?
4: किधर है हुनुआ?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: You're all listening to Hum playing Bollywood's biggest hits 4:39 right now on the clock. And abhi time aa gaya hai ki hum aapko bataye ki hum ईस्टर पे क्या करने वाले हैं.
2: या ईस्टर 2027 पे क्या होने वाला है. अगर आपने मिस आउट किया है लास्ट वीक इस इंफॉर्मेशन को, तो बाली एंड बैंकॉक ये दो जगह पे. सो बाली एंड बैंकॉक, या दिस इज द सीक्वेंस.
1: हाँ, ये यस है. सैंडी को पता नहीं क्यों
2: उल्टा होता है हमेशा. सो बाली एंड बैंकॉक जाने वाले हैं एंड मार्च में ईस्टर के टाइम के अराउंड. सो अगर आप हमारे साथ जाना चाहते हैं, यू कैन जॉइन अस इस ट्रिप में. आप हमारे साथ जा सकते हैं. सो ट्रिप में होने क्या वाला है, इसका थोड़ा सा आपको हम हिंट देते हैं रुजबे, थोड़ा सा आपको बताते हैं,
1: मतलब थोड़े से अपडेट्स जो है हमारे पास.
2: या
1: वो देते हैं. तो बेसिकली हम वहाँ पे पहले तो काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने वाले बाली में. ठीक है, विच इट विल इंक्लूड बनाना बोट राइड, जेट स्की राइड, फ्लाइंग फिश. हम ये जो भी पैकेज है इसमें फूड वूड सब इंक्लूडेड है.
2: सो
1: यू डोंट हैव टू पे फॉर, यू डोंट हैव टू कैरी एनी मनी विद यू, लाइक यू डोंट नीड टू अनलेस यू वांट टू शॉप और समथिंग.
2: सो आपका बेसिकली जो अकोमोडेशन है ना, वो भी सॉर्टेड है इस पैकेज में. और अकोमोडेशन में जिस होटल में आप रहेंगे वो 5-star होटल से कम नहीं होने वाला है.
1: 4-5-star होटल
2: रहेंगे. 4-5-star होटल रहेंगे और उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहने वाला है.
1: हाँ, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब इंक्लूडेड है सैंडी.
2: और पैकेज में या मतलब होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, अदरवाइज बाहर आप लंच डिनर जो है वो पैकेज में इंक्लूडेड है. मींस की जब आप हमारे साथ वहाँ पे टूर करेंगे तो वहाँ पे आपका लंच भी सॉर्टेड है और डिनर भी सॉर्टेड है. खाना पीना सॉर्टेड है, रहना सॉर्टेड है, बहुत सारी एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड है उस बेस में.
1: या लाइक सम हिडन जेम्स जो होते हैं वहाँ पे जाने का प्लान हो रहा है हमारा. जैसे कि ब्लू पॉइंट बीच वहाँ पे जाने वाले हैं, जिसको सुलुबन बीच बोलते हैं. वो एक जगह है जहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं, टूर करने वाले हैं. फिर एक बाउंटी क्रूज है जहाँ पे सनसेट डिनर क्रूज रहने वाला है. या सनसेट डिनर क्रूज होगा.
2: या सो क्रूज रहेगा जहाँ पे आप सनसेट जो है ये इंजॉय कर सकते हैं. इट्स अ वेरी नाइस क्रूज जहाँ पे यू कैन हैव बहुत सारी चीज़ें. वहाँ पे लाइव म्यूजिक रहेगा, कुछ डांसेस वहाँ पे रहेंगे, सिंगर्स वहाँ पे रहने वाले. यू नो क्रूज में जो इन्वायरमेंट रहता है वैसा इन्वायरमेंट वहाँ पे रहने वाला है. सो दिस क्रूज इज इंक्लूडेड एज वेल इसमें.
1: देन देयर इज सम विजिट टू द टेंपल्स, कुछ टेंपल्स है
2: क्योंकि बाली इज क्वाइट, या बाली इज क्वाइट फेमस फॉर द टेंपल्स एज वेल. बहुत सारे टेंपल्स को लेके एक उन्होंने वो भी बताया ना, स्टेयर्स वाला जो है, एक बहुत सारी स्टेयर्स चढ़ के आपको जाना होता है समथिंग, फिर एक ब्यूटीफुल सा व्यू आता है.
1: अच्छा,
2: ऐसा वाला भी कुछ है.
1: स्टेप्स वेप्स भी करोगे आप हॉलीडे पे?
2: इनफैक्ट बाली में वो जो स्विंग है, अलोहा स्विंग, वो भी एक्चुअली में इंक्लूडेड रहेगी.
1: एंड नॉट जस्ट वो, बट कुछ जो जुलाई में अभी रजिस्टर करेंगे हमारे साथ, उनको वो भी मिल रहा है ना उसके साथ, जो कॉस्ट्यूम रहता है,
2: कॉस्ट्यूम भी साथ में मिलने वाला है.
1: उसका एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ता है यूजुअली, बट दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, फ्री,
2: वो भी साथ में मिलेगा. सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड देन बाली टू बैंकॉक जब पहुँचेंगे तो वहाँ पे इनफैक्ट क्वाइट एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ एज वेल. बैंकॉक की एक फेमस सफारी आप करेंगे, सफारी वर्ल्ड एंड मराइन पार्क जो है ये आप घूमेंगे. देन कुछ मार्केट्स है वहाँ पे एंड फ्यू एक्टिविटीज़ एज वेल जो कि बैंकॉक की बहुत ही प्रोमिनेंट एक्टिविटीज़ है जो आप करने वाले हैं.
1: जो दामनियन सदुआक फ्लोटिंग मार्केट जो है ना,
2: या
1: वो जहाँ पे आप एक ट्रेडिशनल बोट राइड एंजॉय कर सकते हो, लाइक इट्स काफी रील्स में आपने देखा होगा वो.
2: या
1: वो रील्स को हम रियल में जीने जा रहे हैं.
2: या एंड यू नो ये सारी चीजें तो है ही वहाँ पे. आइटेनरी जो है प्राइसेस के साथ हम आपको भेज देंगे जब आप अपना जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास भेजेंगे. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज गाइज कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं विद मी एंड रुजबे. सो वी गोना बी ओवर देयर विद यू गाइस. एंड मैं पहली बार इन दोनों जगह पे जाने वाली हूँ रुजबे. आई नेवर बीन देयर.
1: मैं पहले
2: तुम जा चुकी हो पहले. सो यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ फ्यू प्लेसेस. मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आप ही की तरह जाने वाली हूँ. अगर आप पहले भी गए हैं तो ये हमारे साथ जो जाने का एक्सपीरियंस है आपको डिफरेंट मिलने वाला है. सो दिस इज नॉट जस्ट अ ट्रिप, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. दिस इज लाइक जिंदगी ना मिलेगी तुम्हारा ट्रिप. Yeah. या वो करने वाले हो हमारे साथ, जस्ट लाइक अ मूवी सीन्स ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. तो कुछ ऑफ कोर्स अपनी गेम्स भी वहाँ पे हम खेलने वाले हैं. सो जो हमारे साथ जाएंगे लोग उनके साथ हम प्लानिंग करने वाले हैं कि हम डे टू डे बेसिस पे क्या करेंगे.
1: या देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ मस्ती प्लस आई थिंक दिस ट्रिप वुड बी आइडियल फॉर समवन जो यू नो जिनको अकेले ट्रैवल करना इतना नहीं पसंद है. लाइक फॉर मी फॉर इंस्टेंस आई डोंट लाइक टू ट्रैवल अलोन. आई लाइक टू ट्रैवल इन ग्रुप्स. मेरा पर्सनल मुझे वो अलग ही मजा आता है ग्रुप में ट्रैवल
2: करना. अकेला पसंद भी है फिर भी आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं. बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि जब आप सोलो ट्रैवलर होते हैं जैसे आई एम, जब सोलो ट्रैवलर होते हैं तो फ्यू एक्टिविटीज आप ग्रुप में ही इंजॉय करना चाहते हो. फ्यू थिंग्स यू कैन डू इन अ ग्रुप एक्टिविटी एज वेल एंड यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स ओवर देयर एज वेल. सो यू कैन बी दैट पर्सन एज वेल. सो इफ यू आर अ पर्सन जो बहुत सारी जगह पे सोलो ट्रैवल करते हैं,
1: आई थिंक
2: इज अ ग्रुप थिंग जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ आप एक्टिविटीज कर सकते हैं. यू कैन do a solo travel as well but you can be a part of the group as well. There are so many things to explore actually.
1: That's right. But Sandy, aapko to nahi hum solo travel ke benefits dene wale because you have to be involved. Hamara ek wahan pe competition hone wala hai.
2: Yeah, you never know beech mein se main kahin nikal jaun us pe.
1: Ha wahi na. Sandy fry ho jayegi bolegi.
2: Fly ho jaungi.
1: Isko din bhar sahan karna padta hai.
2: Main nikli yahan. Yeah. But yeah, it's gonna be a lot of fun, guys. So, अगर आपको expression of interest भेजना है और आपको चाहिए कि हम पूरी itinerary और कितनी cost इस पूरी की पूरी itinerary की है, अगर आपको ये चाहिए तो आप drive लिख के भेजिए 5599 पर. auto reply में आपको एक form मिलेगा. Just fill the form, आपकी email ID हमारे पास आ जाएगी. And travel dates आपको बता देते हैं जो हमारे पास confirmed है. Travel dates are this is from 23rd March जो कि Tuesday के दिन पड़ेगा से लेके 2nd अप्रैल हमारे वापसी है. दीज आर द ट्रैवल डेट्स और इसमें आपको तकरीबन 6 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, 6 या 7 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी एक्चुअली में. एंड दिस इंक्लूड्स द ईस्टर वीकेंड. ईस्टर वीकेंड जो है वो 26 से लेके 29 तक है. सो द डेट्स आर 23rd मार्च और 2nd अप्रैल. इनफ टाइम है आपके पास अप्लाई करने के लिए.
1: तो ड्राइव लिख कर भेजिए एंड फिल इन योर डिटेल्स एंड या वी विल सेंड यू द आइटनरी एज सून एज पॉसिबल. तो फटाफट आप बस अभी के लिए तो ड्राइव लिख कर
2: अभी ड्राइव लिख कर भेजिए.

0: सुना के यू कैन विन अ डबल पास फॉर द कॉमेडी नाइट्स विद कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर.
1: मेरे को अच्छा ठीक है चलो देखते हैं.
0: तुम्हें भी जोक सुनाना है?
1: नहीं मुझे नहीं सुना है. मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर जोक सुनाना इतना इजी होता तो सभी अपना अपना शो निकालते यार.
0: वही तो इजी तो नहीं है ना.
1: डिफिकल्ट पार्ट टू मेक समवन लाफ.
0: 100%
1: बट लेट्स सी किसमें है दम.
0: किसमें है दम और कौन आज. मैं तो चलो हंसी लेती हूँ. कौन आज रुजबे को हंसा सकता है?
1: नहीं नहीं मैं भी हंस लूंगा यार. बस क्या? Sure? ऐसे मत करो सैंडी. मतलब हाउ डेयर यू. मतलब आप बोलते हो मैं तो हंसी लेती हूँ. मतलब मैं यहाँ पे फालतू मतलब ऐसे कुछ भी बोलता हूँ और आप हंस लेते हो ऐसा.
0: नहीं नहीं आज केतन ने किया था ये कॉम्पिटिशन एंड जोक सुनाने के लिए ज्यादा लोग आ नहीं रहे थे तो हमने यहाँ पे बोला कि देखो ज्यादा लोगों का तो कॉम्पिटिशन है नहीं. अगर अभी एक कॉल आ जाता है जोक सुनाने के लिए तो इज द विनर. So,
1: और आजकल जोक ढूंढना बहुत इजी हो गया है.
0: बहुत इजी है
1: क्योंकि
0: यार.
1: आप बस चैट जीपीटी को मैं अभी बोलूं क्या इसको कि प्लीज टेल मी अ जोक. अभी करूं क्या मैं?
0: हाँ करो.
1: देखते हैं इससे बेटर कोई जोक बोल पाएगा क्या. किसको पूछूं?
0: रेडियो फ्रेंडली जोक बोलना उसको.
1: चैट जीपीटी को बोलूं कि जेमिनी को बोलूं?
0: चैट जीपीटी को बोलो. तुम्हारी वही फ्रेंड है ना?
1: नहीं जेमिनी भी फ्रेंड है मेरे. बस क्या यार ऐसा नहीं है. दोनों फ्रेंड है. दोनों को मैं इक्वल टाइम देता हूँ. ऐसा नहीं है सैंडी.
0: तुम चैट जीपीटी से पूछो.
1: हाय हाय आपका स्वागत है.
2: हाय योगेश.
1: क्या नाम है आपका?
2: योगेश.
1: लोकेश.
0: लोकेश कैसे
1: लोकेश आपका आवाज अटक रहा है बीच बीच में यार इसलिए ऐसा डिस्टरबेंस हो रहा है.
2: ड्राइविंग.
1: हाँ हाँ बोलो बोलो. जोक सुना रहे हो ना? जोक सुनाओ लेकिन एक काम करता हूँ. हाँ वही मतलब हमारा भी कट रहा है और आपका फोन. मतलब मैं काम करता हूँ मैं आपको कॉल बैक करता हूँ. होपफुली अच्छा नेटवर्क रहेगा. आई विल गिव यू अ कॉल बैक. हम पार्वती नंबियार से कॉल करेंगे ठीक है. आंसर करना प्लीज. अभी आई होप वो समझ गए हम क्या बोल रहे हैं क्योंकि हम हिंट में बहुत बात करते हैं ना.
0: ना कैसे? अभी हर किसी को पार्वती नाम्बियार नहीं पता है. मतलब प्राइवेट नंबर
1: नहीं पता हर किसी.
0: अगर आपको नहीं पता था तो
1: यार सलमान खान के फैन तो होंगे ना अभी हर कोई. हाय लोकेश. या वी कैन हियर यू काइंड ऑफ. भैया जब रिंग बज रही थी ना जब रिंग बज रही थी तभी बहुत परफेक्ट बज रहा था. फिर आप आते हो तभी वो थोड़ा. बट कोई बात नहीं.
0: कौन से एरिया में ड्राइव कर रहे हो?
1: नहीं नहीं उनका ब्लूटूथ सिस्टम है मेरे को लग रहा है. अच्छा
0: बॉटरी डाउन ही है.
1: ये प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या लोकेश? आप देखो जोक तो सुना दोगे ठीक है लेकिन बिकॉज बीच में वो इंटरप्शन आएगा ना वो उसका टाइमिंग नहीं बैठेगा एंड जोक इज ऑल अबाउट टाइमिंग. तो हाँ वैसे करना ठीक है. जल्दी करना जल्दी करना.
0: नहीं आया मुझे क्या
1: वो लगा के कहीं तो भी फोन लगा के मतलब कहीं तो भी गाड़ी लगा के फिर कॉल करेंगे. हाय आपका स्वागत है.
3: हाय रुजबे. मैं आपने बोला आप चैट जीपीटी से कुछ करोगे तो मैं एक सुना रही हूँ.
0: ठीक है सुनाओ
1: सुनाओ सुनाओ.
3: संता यार बंटा मैं कल रात 12 बजे सड़क पर जा रहा था एक तो अचानक एक आत्मा ने मुझे रोका. बंटा ओए होए फिर क्या हुआ? संता उसने मुझे एक थैला दिखाया और बोली मुझे एक घंटे से ऑटो नहीं मिली शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है.
1: ओके
3: दिस इज फ्रॉम गूगल. आपने तो बोला था कोई भी कॉल करे.
1: नहीं मतलब आपने खुद ने पढ़ा ना
0: खत्म हो गया मुझे. I was
1: क्या सैंडी यार. नहीं मतलब
0: शायद आगे से कुछ आएगा.
1: देखो मैं क्या बोलता हूँ
0: आप तो लिटरली पढ़ रही थी ना.
1: नहीं नहीं देखो जोक तो गूगल बता देगा आपको लेकिन आपके ऊपर है ना पढ़ के आपको अगर फनी लग रहा है तो मतलब
0: थोड़ा एग्जीक्यूट करना डिलीवर करना तो आपके ऊपर है ना पढ़ के एक बार सुनाना.
1: नहीं, नहीं, अच्छा किया आपने अच्छा किया. हंसी सैंडी हंसी.
3: मैं ड्राइव कर रही हूँ जो पहले आया तो फिर वो
1: बेस्ट है वेरी नाइस.
3: पढ़ने का टाइम नहीं था.
1: नहीं नहीं बढ़िया वेरी नाइस.
0: सही है.
1: थैंक यू यार.
0: सही जा रही हो. थैंक यू.
1: हाय आपका भी स्वागत है.
4: रुस्वे लोकेश अगेन.
1: क्रिस्टल क्लियर.
4: ओके द जोक इज अ लेडी गोज टू अ मॉल विद 8 चिल्ड्रन और

0: वो बुलाती है रेयर कम हियर, तो आठ के आठ बच्चे वापस आ जाते हैं लेडी के पास। तो एक आदमी उसको देख के बहुत हैरान होता है कि अरे आठ बच्चे और तुमने सबका नाम एक जैसा रखा है। कहते हैं इसे बुलाना आसान रहता है कि एक को एक नाम लो सब आ जाते हैं। कहता और अगर किसी एक को बुलाना पड़े तो कहते हैं फिर बस सरनेम से बुलाती हूँ।
1: Oh my God! Oh God!
0: Didn't make sense.
1: Yeah.
2: Nice one, Lokesh. See, इसके लिए Bluetooth हटाना बड़ा जरूरी था.
1: ये हटा के ही समझे भाई, ये सही था जोका. Very nice.
2: Thank you, man. देखो तुम्हारी चैट जीपीटी ने क्या बताया?
1: नहीं अब तक पूछा ही नहीं मैंने, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत अच्छे मिल गए यार. मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ लोकेश के जोक से ऑनेस्टली, क्योंकि अब मुझे कोई नहीं ब्लेम कर सकता है कि अब वी थॉट दिस इज
2: इनअप्रोप्रिएट
1: ये वो, मेरे को कोई नहीं कुछ बोल सकता है.
2: नहीं नहीं नहीं रुज़बे तुम्हें नहीं बोलेंगे, लेकिन वी स्टिल वेटिंग फॉर योर जोक. हम ऑनलाइन ही तुमसे चैट जीपीटी के थ्रू सुनेंगे, मे बी आफ्टर अ सॉन्ग.
1: आप मेरा जोक सुनना चाहते हो सच्ची में?
2: हाँ मैं भी देखना चाहती हूँ ना कि हमने उस बंदी पे हंसे कि उसके ऊपर गूगल के पास जो जोक आया हो.
1: तो मैं अभी पूछता हूँ उसको.
2: हाँ
1: मैं बोलूंगा Hey, can you please tell me a joke for radio? It has to be radio friendly. Yeah, and it has to be for an Indian audience. Please give me a joke.
2: तो ऐसा पूछने का guys.
1: देखते क्या बोलती है ये. अरे यार ये बात क्यों नहीं कर रहा है यार, मेरे को ही बोलना पड़ेगा. कुछ तो काम कर ले, मेरे को बोल रहा है ये. Okay. Why did the मैं अभी ये मैं पहले नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं direct पढ़ रहा हूँ. Why did the Indian techie break up with his girlfriend?
2: Indian techie
1: break up with his girlfriend.
2: Why?
1: Because she told him we need to talk. He replied, sorry, that sounds like an unscheduled meeting. Please send a calendar invite with an agenda first.
2: आप गैस की और से ढूंढ के भेजना जोक या कॉल करना.
1: एक और है उसने मेरे को बोला है, इफ यू वांट समथिंग अ बिट मोर रिलेटेबल टू फैमिली हाउसहोल्ड डायनामिक्स.
2: ओके गुड.
1: माय मॉम टोल्ड मी टुडे, बेटा यू आर स्पेंडिंग वे टू मच टाइम ऑन योर फोन. लुक एट शर्मा जी सन, ही इज ऑलरेडी अ मैनेजर. आई टोल्ड हर, मम्मी शर्मा जी सन इज द वन सेंडिंग मी ऑल द रील्स.
2: अच्छा था, बेटर.

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: men.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki duniya mein already bahut sare perfect, polished, Instagram-friendly stories hain. Aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw. Emotions hote hain real. Aur conversations hote hain bina mask ke.
2: Raja, mantri, chor, sipahi, sab yahan aate hain.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi. On Rowa, Spotify, or anywhere you get your podcast.
3: Hum, accurate traffic.
4: Celebrate Matariki at Auckland Art Gallery.
5: Showers and gusty northerlies easing overnight for Auckland, a low of 9 degrees. On the northern, it's busy through West Haven, heading north. The northwestern is heavy from Waterview to Rosebank Road, but Tomasi just 32 minutes. The southern to Drury, 53 minutes, heavy from Newmarket to Ellerslie. Southwestern slow from Puhinui Road to Mangere Bridge, heading west and south from there to the southern.
4: Matariki at Auckland Art Gallery. Waiata Art, Kapahaka, Kai and more. 10th July.
6: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
7: Kyun? Kya hua?
6: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi, to itne documents maange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya, no response. Phir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
8: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800-564-424.
9: My pile of laundry's done in a flash at Liquid Laundromat.
10: Life's hard when you're feeling low energy and you've got piles of laundry to do. But don't worry, Liquid Laundromat's super fast washers and dryers are low energy too, using the lowest possible energy and water consumption. So you can save the planet, save time, and save money. And with 140 locations nationwide, there's probably one near you open convenient hours. So take a load off. Visit liquidlaundromats.com.
11: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
12: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
13: Sorry about that.
12: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
13: Kogan Mobile, true Aussie value.
12: Terms and conditions apply.
14: Are you ready to go home?
15: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
16: Power Drive at 5.
1: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
17: You're listening to हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 87.7 पे भी हम अभी सुनाई दे रहे सिटी के अंदर, सिटी के इर्द गिर्द, और 104.2 एफएम पे तो हमें होते ही है, और रोवा ऐप के जरिए आप हमें सुन सकते हो. अभी टाइम आ गया, हम आपके साथ खेलेंगे कुछ
18: या
1: देसी और नॉट सो देसी.
17: आज का देसी नॉट सो देसी पूछने से पहले हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं.
18: डिस्क्लेमर दैट
17: वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस एट ऑल.
18: We are not in favor of piracy at all. Piracy को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए. हमेशा कुछ भी अगर आपको देखना हो तो आपके पास राइट्स होने चाहिए. राइटफुली इस चीज को आपको देखना चाहिए.
17: करेक्ट.
18: या नो,
17: अभी हम टॉपिक पे आते हैं. ये जो पायरेसी वाली चीजें है, पायरेसी में देखना चीजें,
18: वो सीरीज हो सकती है, मूवीज हो सकती है, एनीथिंग.
17: हाँ, इज दैट देसी और नॉट सो देसी बिहेवियर? लाइक मैं ऑनेस्टली आई विल कन्फेस, हम जब भी बचपन में, मतलब जवानी में, जब मैं इंडिया में था, तो तभी हमारे यहाँ पे ना ऐसे एवरी वीक वो आते थे MP3 के CDs आते थे, जिसमें लेटेस्ट सॉन्ग्स होते थे, और मैं वो लेता था.
18: सॉन्ग्स, मैं तो मूवीज
17: भी होते थे, सॉन्ग्स भी होते थे, सब होता था.
18: Yeah.
17: तो मैंने वो बहुत लिया है. उसके ऊपर ही एक सीरीज भी आई है फर्स्ट कॉपी करके.
18: yeah.
17: मुना और फारूकी है उसमें.
18: yeah.
17: बढ़िया सीरीज है. तो आई हैव बीन गिल्टी ऑफ डूइंग इट.
18: इवन आई हैव डन दिस व्हाइल ग्रोइंग अप. हमारे वहाँ पे एक शॉप होती थी, वहाँ पे जाके आप बोलते थे कि इस हफ्ते जो मूवीज आई है हाँ. तो उसकी सीडीज आपको मिलती थी, तो अब घर पे लेके आके और वो डीवीडी प्लेयर जो होता है, डीवीडी एक्चुअली में डीवीडी प्लेयर में आप वो देखते थे. एंड या सो आई हैव
17: डन दैट. Is it desi behavior or is it not so desi behavior?
18: Hmm. Piracy में कुछ भी देखना.
17: Like for example, games भी काफी लोग खेलते हैं.
18: Yeah, काफी लोग piracy में
17: download करके ऐसी मतलब you know duplicate version जो भी मतलब वो
18: pirated version. तो उसमें viruses बहुत निकलते हैं बाद में. तो be careful.
17: जी, so नहीं, we are not promoting piracy at all, Sandy.
18: Yeah, yeah, yeah.
17: Don't do it. हमने जो किया था वो पहले किया था, अभी नहीं हम करते हैं. Most times.
18: भी नहीं, yeah.
17: कोई और अगर कर रहा है तो हम देख लेते हैं.
18: So,
17: ये देखो मैसेज है, टोरेंट वाज द किंग देन. यस, टोरेंट. मैं एक्चुअली जब नया आया था ना इस कंट्री में, तो मेरे को तो फुल हमको कॉलेज से डरा के रखा था कि टोरेंट पे मत जाना, तुम जैसे ही गए तुम्हारे घर पे लेटर आ जाएगा.
18: ओह या,
17: और
18: या,
17: तुमको
18: मैंने भी सुना था
17: नोटिस आएगी, फिर तुम्हारा वो इंटरनेट निकाल लेंगे.
18: एंड देन king.com हैपेंड.
17: नहीं, उससे पहले ही हुआ था ये सब, इसलिए इतना ज्यादा वो लोग ने वो कर दिया था. 2012-13 की बात कर रहा हूँ मैं,
18: उसी समय पे. सो या गाइस, आप बताइए कि पायरेसी पे देखना इज इट जस्ट अ देसी बिहेवियर और इज इट नॉट सो देसी. देसी बिहेवियर तो डेफिनेटली है, अवल से बहुत सारे लोग जो है ये पायरेसी पे इन्होंने देखा है चीज़ों सीरीज़ को एंड अभी भी देखते होंगे. सो आपको क्या लगता है कि सिर्फ देसी लोग ये करते हैं या फिर जो बाकी लोग हैं वो भी ये करते हैं? अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है,
17: 0800-004-866 गिव अस अ कॉल एंड शेयर योर.
18: आपके कोई ऐसी फॉन्ट पायरेसी स्टोरी है तो वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं,
17: जहाँ पे आप मतलब यू नो कुछ ऐसे
18: कोई मेमोरी
17: कोई हाँ कोई कुछ हुआ रहेगा किस्सा, क्योंकि मुझे मालूम है काफी लोग यहाँ पे मतलब जो इंडिया से एटलीस्ट उस जमाने में करते थे, ये मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो एक एक दो दो दिन तक वो लोग डाउनलोड करने लगते थे.
18: नॉट जस्ट इन इंडिया, न्यूजीलैंड में भी, जो मैं यहाँ पे नहीं आई थी,
17: यहाँ पे तो इमीडिएट हो जाता है.
18: यहाँ पे भी कुछ शॉप्स थी जो सीरीज देती थी.
17: अच्छा, सीरीज देती थी
18: या मूवीज की सीरीज?
17: ओह वाओ,
18: यहाँ पे भी मिलती थी, मैंने न्यूजीलैंड में ली हुई है.
17: क्या बात कर रहे हो. हाँ, मेरे को मालूम है कहीं तो भी एक ऐसे जगह रहती थी ना.
18: या
17: विदेशी हैव टॉट देसी वेल टू वॉच पायरेटेड वर्जन्स. अच्छा,
18: इंटरेस्टिंग,
17: ऐसा बोल रहे हैं.
18: Yeah.
17: विदेशी
18: तो कोई तो कॉल करो, किसी की कोई ऐसी कहानी है, नाम नहीं बताना है, नाम मत बताओ. देखो मैं और उसमें भी तो कहानी बता रहे हैं अपनी अपनी ना, हम तो हमारा नाम तो आप जानते ही हो.
17: वही तो, मैं भी अभी बोल दिया रहता कि मेरा एक दोस्त है वो करता है ऐसा. Yeah. लेकिन मैंने बोला कि ऐसा.
18: और मैं तो ये भी बोला कि मैंने न्यूजीलैंड में जो मैं नहीं आई थी, मैंने यहाँ पे खरीदी हुई है मैंने, एंड उस समय पर एक शॉप से लिए जहाँ पे सीडीज मिलती थी.
17: या मेरे को माना सैंडरिंगम में होती थी एक शॉप ना. नहीं,
18: अब मैं कहाँ थी कहाँ नहीं थी वो नहीं मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे, बट इतना बोल सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे ली हुई है. यहाँ पे भी था वो सिस्टम.
17: अच्छा,
18: या सो आप ही बताइए यहाँ पे 0800-00 वहाँ पर, विदाउट टेकिंग एनी नेम, किसी का नाम ले आपको नहीं लेना है यहाँ पे. अगर अपनी स्टोरी आपको शेयर करनी है, कोई फॉन्ड मेमोरी आपके इसके ऊपर,
17: फॉन्ड मेमोरी अराउंड watching something,
18: इसीलिए नहीं कॉल कर रहे कि अभी भी करते हो. अभी भी पायरेसी में देख रहे हो क्या आप?
17: अभी एक्चुअली काफी कम हो गया बिकॉज ऑफ
18: स्ट्रीमिंग. अभी तो शेयर पासवर्ड में देखते
17: हैं ना. हां, वो इज दैट कॉल्ड पायरेसी एक्चुअली, दैट इज द क्वेश्चन.
18: नहीं, शेयर पासवर्ड में यू हैव द राइट्स ना, एक कोई भी जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होता है उसमें वो होता है कि आप इतनी डिवाइसेस पे देख सकते हैं.
17: राइट,
18: तो यू कैन शेयर द डिवाइसेस बेसिकली.
17: ओह, यू कैन शेयर द, दैट इज नॉट पायरेसी.
18: इट्स नॉट अ पायरेसी, इट्स अ राइट.
17: It's a right.
18: जैसे Netflix for example हो गया, तो वहाँ पे लिखा होता है.
17: पर फिर उनका क्या, जो इंडिया का Netflix लेके यहाँ पे देख रहे हैं, is that considered piracy?
18: Devices उसमें अगर दो या तीन हो रहे हैं तो should be okay. नहीं, वो नहीं नहीं नहीं नहीं.
17: इंडिया का Netflix तुम यहाँ पे आके अगर देख रहे हो.
18: Netflix के rules थोड़े different है. Should be same household.
17: Yeah, it has to be the same household.
18: तो अगर आप वो कर रहे हो तो वो तो पायरेसी है.
17: But there are ways around that also, ना?
18: क्या?
17: It's not called piracy. Excuse me, it's playing the system. अभी आपको सुनाते बॉलीवुड मोस्ट वॉन्टेड. थोड़ी देर में कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे, होपफुली उस पर आप कॉल करो.
0: बॉलीवुड मोस्ट वॉन्टेड, गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
7: मैं लाऊं अपना ए गेम.
19: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: wanna run the race like me.
1: विशाल ददलानी की आवाज़ और आप सुन रहे थे ये बढ़िया सा गाना रेस 2 का ये गाना था जो आप सुन रहे थे ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: आज 6 बजे ट्रेंड मेकर्स में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं रणवीर सिंह को। आज रणवीर सिंह अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो रणवीर सिंह को आज हम सेलिब्रेट करेंगे। रणवीर सिंह के कुछ एपिक डायलॉग्स एंड मूवी के गाने हम प्ले करने वाले हैं
1: जी। और रणवीर सिंह के फैन मेरे को लग रहा है अगर आप नहीं है तो ये शो को सुन के जरूर आप उनके फैन बन जाएंगे, बट मोस्टली ऐसा कोई होगा ही नहीं जो रणवीर सिंह का फैन नहीं है। रणवीर सिंह इज अमेजिंग, ही इज अ टैलेंट हाउस यार। और धुरंधर के बाद तो भाई लोग दीवाने हो गए हैं,
2: दीवाने हो गए। मेरे को तो पहले से ही अच्छा लगता था वो। हाँ। काफी लोगों ने उसके कभी फैशन के ऊपर काफी चीजों के ऊपर मजाक भी बनाया है।
1: मेरे को ना सबसे पहले मूवी के बाद, क्योंकि पहली मूवी बैंड बाजा बारात, मुझे पहले लगा कि ठीक है एक्टर, मतलब यू नो, क्योंकि मुझे लगा वो दिल्ली से है तो क्योंकि पूरा दिल्ली बॉय का रोल किया था उसने, तो मुझे लगा कि हाँ उसके लिए इजी होगा ना। बट बाद में जब पता चला कि ओ नहीं, ये तो मुंबई का लड़का है जिसने इतने अच्छे से ये रोल को किया, मतलब मैं पहचान ही नहीं पाया कि ये मुंबई का। यूजुअली एक्टर्स से पता चल जाता है ना कि कहाँ से बिलोंग करते हैं,
2: क्या क्या करते हैं। इनफैक्ट मेरे को बहुत देर बाद जाके बाद में पता चला था कि उसने एक्टिंग के कोर्सेज भी किए हुए हैं, ओवरसीज में जाके भी इसने कोर्सेज किए हुए हैं।
1: यूएस में गया था ना,
2: यूएस में गया था, वहां पे उसने कोर्स किया था। एंड काफी चीजें उसके बारे में धीरे धीरे रियलाइज हुई है। एंड रणवीर सिंह हमेशा यही बोलता है कि वो अपना ड्रीम जी रहा है राइट नाउ, ही इज लिविंग हिज ड्रीम राइट नाउ
1: एंड ही वर्क्ड हार्ड टुवर्ड्स इट आल्सो। मतलब काफी बार लोग बोलते हैं कि ही इज लाइक kind of half nepo because
2: how come
1: kyunki uske dad matlab I think kafi matlab wo he was brought up in same school na Arjun Kapoor aur ye log sabke sath matlab wo same school mein brought up
2: hua tha। connections nikal sakte hain aapke kahin pe jane ke liye but wahan pe aapko aage kaise badhna hai wo aapke talent ke upar hai। पहला ब्रेक तो किसी को भी मिल सकता है
1: या उससे बाद जो रणवीर सिंह का नाम बना
2: है, जो जर्नी है वो तो टोटली टैलेंट के ऊपर होती है।
1: यू नो एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में मतलब अभी हम 6 बजे के बाद आज बात करने वाले रणवीर सिंह के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में, तो तभी आप सुनना। बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन मूवी व्हिच इज अ वेरी अंडररेटेड रणवीर सिंह मूवी।
2: आई थिंक आई नो व्हाट मूवी यू आर टॉकिंग
1: Because I've spoken about it earlier as well. But थोड़ी देर में क्या हो रहा है हमारे सुपर सिटी में इसके बारे में भी आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। वैसे एक कॉन्सर्ट भी हो रहा है आपके लिए, कुछ कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान आ रहे हैं ऑकलैंड में फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक। और अगर आपको भी उनकी सोल स्टरिंग कवाली सुननी है और उनकी पावरफुल वॉइस आपको इन्जॉय करनी है, ट्रस्ट अरीना में आपने पहुंचना है 25 जुलाई को। बट उससे पहले टिकट्स आपको लेनी पड़ेगी dryTickets.com पे जाके। dryTickets.com पे यू कैन गेट द टिकट्स फॉर राहत फतेह अली खान का कॉन्सर्ट। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय JK Star Productions, गोट लाइफ, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस।
2: और वैसे लोटो NZ ने अनाउंस किया है कि 8 जुलाई के बाद से दे विल नो लॉन्गर अनाउंस वेयर द विनिंग टिकट वाज सोल्ड ड्रॉ नाइट में। वो अनाउंस वो नहीं करेंगे, इंस्टेड विनिंग नंबर्स विल स्टिल बी रिलीज्ड, प्राइस अमाउंट एंड नंबर ऑफ विनर्स जो है अनाउंस हो गया, लेकिन कहाँ पे टिकट सोल्ड की गई थी ये इन्फॉर्मेशन वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज काफी प्लेयर्स ने इसके ऊपर फीडबैक दी है। मैनी पीपल सेड दे वांटेड मोर टाइम टू चेक देयर ओन टिकट, एक्साइटमेंट ऑफ डिस्कवरिंग दे हैड वन देमसेल्फ, ये सब चीज़ों को लेके भी। सो उन्होंने अब डिसाइड किया है कि भाई 8 जुलाई के बाद से वो नहीं बताएंगे कि इस एरिया से विनिंग टिकट थी।
1: तो 8 जुलाई को नहीं पता चलेगा, मतलब
2: 8 जुलाई को नहीं पता चलेगा। या सो 8 इज व्हाट, वेडनेसडे? ओह,
1: ये वेडनेसडे,
2: वाओ,
1: राइट।
2: सो या सो अनाउंसमेंट जस्ट कम बिफोर $23 million पावर बॉल जैकपॉट।
1: ओह नो,
2: इट्स $23 million, so there will be even more anticipation।
1: अच्छा,
2: कि ड्रॉ जो है हो रहा है, टिकट किसने खरीदी, कहां से टिकट खरीदी गई
1: यार, ये ना पता नहीं
2: ये अच्छा है कि बुरा है।
1: या
2: I mean, काफी लोगों को होता है ना कि पता करना है कि कहां से, बाद में फिगर आउट करते कि यार आउटस्कर्ट से टिकट खरीदती हो तो निकलती है, ऐसा कई बार परसेप्शन बना होता है लोगों का।
1: कितनी बार होता है कि आउट ऑफ ऑकलैंड जब भी हम ट्रिप पे जाते हैं तो ऐसा होता है कि अरे चलो टिकट ले लेते, क्योंकि आउट ऑफ ऑकलैंड का काफी बार नंबर लगता है। बट ऐसा कुछ मेरे को नहीं पता, कुछ ऐसा है। बट या आई थिंक द एंटिसिपेशन बिट इज गुड, बिकॉज काफी बार ऐसा होता है ना कि जब न्यूज में आ जाता है कि कोई कैंटरबरी से जीता है तो फिर मैं चेक भी नहीं करता हूँ टिकट।
2: दैट्स व्हाट एग्जैक्टली दे सेड, कि ऐसा होता है कई बार कि विनिंग टिकट सोल्ड इन टर्न एंड टर्न, एंड बाद में अपनी टिकट आप फेंक देते हो, व्हाट इफ हेडलाइन में ही प्रॉब्लम थी, आपने तो अपनी टिकट फेंक दी।
1: और ये तो हमने सीखा है कि न्यूज़ को न्यूज़ पे भरोसा नहीं रख सकते।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: You're listening to Hampling, Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे हम इधर उधर की बातें भी लेकर आते हैं. वैसे वेदर कल का थोड़ा बुरा रहने वाला है, लेकिन आज नाउ इट्स गोइंग टू क्लियर आउट अ लिटिल इन द इवनिंग. इम्पॉर्टेंटली, वेदर से अगर आप भी परेशान हैं तो और अगर आपको ट्रॉपिकल वेदर चाहिए तो ईस्टर में हम जा रहे हैं बाली और बैंकॉक.
4: यस, अगर आप, क्योंकि यूजली क्या होता है कि ईस्टर के टाइम पे यहाँ पे फुल बारिश हो रही होती है.
3: ये
4: हमने हर साल में एक्सपीरियंस किया है. लेकिन अगर आप अच्छी हॉलीडे चाहते हैं, यू वॉन्ट टू डू अ गेट अवे विद सैंडी एंड रुस्बे, तो आप हमारे साथ बाली एंड बैंकॉक जा सकते हैं. इनफ टाइम है आपको अपनी छुट्टी प्लान करने के लिए. द ट्रैवल डेट्स विल बी 23rd March से लेकर 2nd April. So these are the travel dates. Basically, 2nd April को वापस आ जाएंगे.
3: Yeah, and काफी benefits आपको मिलने वाले हैं if you register in July. Like you'll get a lot of freebies in there.
4: Yeah, but registration is $500 इसके लिए.
3: $500 to register. But अभी के लिए just to put in your name as an expression of interest, you can do that for free. No money required for that. Just so that आपको जो itinerary है वो मिले. और प्राइस डिटेल्स और सारी सब डिटेल्स मिले. आप उसके लिए ड्राइव लिखकर भेजिए 5599 पे. वील सेंड यू अ लिंक जिसमें आप जाके अपना एक डिटेल,
4: फोन नंबर एंड आपकी ईमेल आईडी हमारे पास आ जाएगी. एंड ये सब ईमेल आईडीज को हम आइटनरी एंड प्राइसेस जो है ये भेज देंगे, सो दैट यू कैन डिस्कस आपस में फ्रेंड्स के साथ, जो जो भी आपको डिस्कस करना है, यू कैन हैव अ लुक. एंड उसके बाद या जस्ट डू द बुकिंग, दैट्स इट,
3: गेट रेडी टू जॉइन अस टू बाली एंड बैंकॉक.
4: बहुत एडवांस में आपको हम बता रहे हैं ताकि आप एकदम प्रिपेयर्ड रहे इस ट्रिप के लिए, एंड ताकि हम साथ में मिलके ना एक्टिविटीज प्लान कर सके. देयर विल बी मेनी एक्टिविटीज जो आप इस पैकेज में इंक्लूडेड रहेगी. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो है इंक्लूडेड है, अकोमोडेशन इंक्लूडेड है. एवरी डे कोई ना कोई एक्टिविटी है जो कि इंक्लूडेड है उसमें. मोर देन वन एक्टिविटी एक्चुअली में जो कि उसमें इंक्लूडेड रहेगा. एंड ऑफ कोर्स टिकट फॉर बोथ बैंकॉक एंड बाली फ्रॉम ऑकलैंड एंड बैक इज इंक्लूडेड.
3: एंड 4 to 5 star होटल में अकोमोडेशन
4: इज इंक्लूडेड
3: विद फूड एंड एवरीथिंग
4: विद फूड. सो बस आपको अपने मनी अपने शॉपिंग के लिए ही वहाँ पे लेके जानी है. जो आपको वहाँ पे अपनी शॉपिंग करनी है सिर्फ उसी के लिए आपको अपना पैसा चाहिए होगा, और किसी चीज़ के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है.
3: या सो इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट इसके लिए, तो आप फटाफट हमें यहाँ पे ड्राइव लिखकर भेजिए 5599 पे.
4: सो क्या है ना कि हमारे पास जब ये आइटेनरी हम कर देंगे, लिमिटेड स्पॉट्स रहेंगे फिल अप करने के लिए. सो मेक श्योर कि अपनी अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप ज़रूर भेज रहे हैं. ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर एंड फिल द फॉर्म.

0: फॉलोअर्स का जो चैनल है ये जाने वाला था एंड द वन पर्सन हु हेल्प्ड हिम वाज रणवीर सिंह. या ही सेड कि मैं अगर कोई आता है, अगर जितने भी एक्टर्स आते हैं ना सामने रणवीर सिंह अगर आ जाता है तो ही इज लाइक योर पर्सन. सो नॉट जस्ट कि वो बंदा ऐसे ही फोटोज के लिए वीडियोज के लिए, बट ही इज लाइक लोगों के साथ बहुत ज्यादा करता है वो.
1: या ही इज अ पीपल्स पर्सन. एक्चुअली मैं आई विल करेक्ट माय सेल्फ, ही इज 41 इयर्स ओल्ड. 1985
0: वाओ
1: 1985 में बर्थ हुआ था.
0: वाओ
1: ऑन 6th जुलाई 1985. सो 41 इयर्स ओल्ड
0: एंड ही इज कैंसेरियन.
1: या कैंसेरियन. या
0: सो रणवीर सिंह का पूरा नाम है रणवीर सिंह भवनानी एंड ही ड्रॉप्ड द नेम बिकॉज़ ही फेल्ट इट साउंडेड टू लॉन्ग एंड मे बी ऑडियंस जो है ये डिफिकल्ट रहेगा उनके लिए इसको याद रखना पूरा नाम. सो जस्ट रणवीर सिंह उन्होंने मूवीज के लिए रखा.
1: या
0: इज अ सिंधी ना.
1: इज अ सिंधी.
0: या
1: दिमाग लगाया उसने. बट आपको पता है कि बिफोर एक्चुअली बीइंग दिस हैवीवेट इन बॉलीवुड रणवीर सिंह गए थे यूनाइटेड स्टेट्स टू स्टडी एट इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन, जहाँ पे उन्होंने मेजर किया क्रिएटिव राइटिंग में और माइनर किया था थिएटर में. तो उनका वो मेजर और माइनर होता है ना, तो माइनर थिएटर में था और एक्स्ट्रा मतलब पार्ट टाइम काम भी किया उन्होंने. स्टारबक्स में काम किया उन्होंने और उन्होंने होममेड बटर चिकन बेचा अपने डॉर्म रूम से. मतलब वो एक वो शेफ भी थे, मतलब खुद खाना बनाते थे होटल रूम अपने डॉर्म में.
0: He did his 9-to-5 part.
1: Yeah, and he sold butter chicken. Yeah,
0: he sold butter chicken.
1: That's
0: and
1: so cool.
0: I think वो जो आइसक्रीम वाला भी उन्होंने स्टारबक्स में आई थिंक बेचते थे कुछ ऐसा, तो वो उसके ऊपर कुछ जोक भी था. He was coffee with Karan में, तो वहाँ पे he shared some joke around it.
1: Oh, okay. Yeah. But Ranveer Singh was really good. I think because of his Starbucks job, उसने एक बार कॉफी विद करण में ही किया था. वो अलग अलग एक्सेंट कर सकता है.
0: Oh, yes.
1: US एक्सेंट के, मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सेंट कर सकता है.
0: फुल टैलेंटेड बंदा है यार. Yeah. फुल टैलेंटेड बंदा है. एंड वो बंदा ना इन एवरी इंच में कहती हूँ डिजर्व करता था ये जो फेम उसको मिली है, जो उसको सक्सेस मिली है, जो वो एक्टर है, क्योंकि उसके अंदर ना बॉलीवुड बसा हुआ है रणवीर सिंह के अंदर. वो किसी भी एक्टर 90s के किसी भी एक्टर के साथ जब वो खड़ा हो जाता है ना, उसको उस एक्टर की पूरी हिस्ट्री पता होती है, ट्रिवियाज उसको ना रटे होते हैं.
1: अरे क्रेजी लेवल ऑफ
0: नॉलेज. इस बंदे ने इस मूवी में ये डायलॉग बोला था, चाहे वो अनिल कपूर है सामने, चाहे सलमान खान है, चाहे शाहरुख खान है, आमिर खान है, एनीवन.
1: सो मैंने आपको बोला था ना सैंडी के रणवीर सिंह कहीं ना कहीं लाइक यू नो इज लाइक हाफ नेपोटिज्म काइंड ऑफ अ थिंग. सो हाउ आई विल टेल यू. सो उसका एक्चुअली हिडन कपूर कनेक्शन है. ही इज द मटर्नल सेकंड कजिन ऑफ एक्ट्रेस सोनम कपूर एंड प्रोड्यूसर रिया कपूर.
0: ओह या.
1: सो हिज मदर अंजू भवनानी इज द फर्स्ट कजिन ऑफ सोनम्स मदर सुनीता कपूर, जिनका पहला नाम भवनानी था.
0: या तभी वो कहते थे भाई भाई ना, अर्जुन कपूर एंड रणवीर सिंह,
1: इसलिए वो लोग काफी दैट वे. या सो या इट्स क्वाइट कूल यार. मतलब कहीं ना कहीं वो कनेक्शन था, बट ही वाज ऑलवेज वेरी कनेक्टेड इनटू बॉलीवुड.
0: या
1: बचपन से एकदम ही
0: कीड़ा था उसके अंदर बॉलीवुड का.
1: वेल पहली मूवी रणवीर सिंह की जो थी, आई थिंक डेफिनेटली क्रिएटेड अ ग्रेट इम्पैक्ट इन अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ. क्योंकि इस मूवी के बाद काफी लोगों ने अपने उस टाइप के बिजनेसेस शुरू कर दिए थे
0: जो इस मूवी में दिखाया गया था.
1: जिस मूवी में दिखाया है एंड दैट इज डूइंग इवेंट मैनेजमेंट.
0: उससे पहले पॉपुलर नहीं था ये बिजनेस,
1: बिल्कुल नहीं था. ये शादी की जो शादी मुबारक बैंड बाजा बारात में दिखाया था, शादी का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी,
0: ये पहले तो था ही नहीं.
1: पहले इतना
0: अगर होता भी होगा बहुत कम था, लेकिन इस मूवी के बाद इट बिकेम वेरी पॉपुलर.
1: अगर पहले था भी तो बहुत अमीरों के लिए ही होगा सिर्फ.
0: यस,
1: अभी हर किसी के लिए एक शादी का इवेंट कंपनी आ गया है. सो एनीवे लेट्स चेक दिस वीडियो आउट.
2: बिजनेस आइडिया बहुत बढ़िया, शादी मुबारक. कब से स्टार्ट
3: हो गया? स्टार्ट 1 घंटे में पहुंचा चंदन नारंग के ऑफिस.
2: उनके बच्चे की शादी है?
3: अरे नहीं, चंदा नारंग वेडिंग प्लानर्स के मार्केट के शाहरुख खान है. कुछ दिन उसके साथ ट्रेनिंग करूंगी फिर अपनी कंपनी.
2: अच्छा, मैं क्या सोच रहा था, मेरे पास भी एक बहुत बढ़िया बिजनेस का आइडिया है, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. पहले ये फिर वो तो सोच रहा था जब तक मेरा लाइन पे नहीं आता मैं तेरे साथ शादी मार्ग में पार्टनरशिप कर ले.
3: पार्टनरशिप में कॉम्प्लिकेशन नहीं पड़ना.
2: अरे इतना बड़ा बिजनेस, 50 लाख टर्नओवर अकेले कैसे संभालेगी?
3: इतनी सारी शादियां अकेले संभाली हैं.
2: मेरे पास कोई बिजनेस का आइडिया नहीं यार.
3: मालूम है
2: यार, अगर मैंने यहाँ रहकर कुछ काम धंधा नहीं किया ना तो बाबूजी पकड़े वापस गांव ले जाएंगे और सारी लाइफ गन्ने कटवाएंगे. गन्नों से बचा ले प्लीज, पार्टनर बना ले प्लीज
3: ना.
2: तू एक से बढ़ के एक आइडिया निकाल, सारी भाग दौड़ मुझ पे छोड़ दे।

0: मैं रात भर जाके डीवीडी बना के लाया, फ्रेंड है तू मेरी?
1: आज फ्रेंड बोल रहा है, कल आई लव यू बोल देगा। मेरे को इमोशनल सापा नहीं चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना है बस। और बिजनेस का फर्स्ट रूल, जिसके साथ व्यापार करो उससे कभी ना प्यार करो, प्यार व्यापार की जोड़ी कभी नहीं बैठती।
2: क्या बात है यार, मतलब this was a movie, man.
3: मतलब दोनों की केमिस्ट्री बड़ी कमाल की थी, अनुष्का शर्मा एंड रणवीर सिंह की।
2: उसी मूवी का ये गाना आपके लिए, to start off trend makers tonight.

0: लेडीज वर्सेस रिकी बेल का ये गाना आप सुन रहे थे, जो रणवीर सिंह के ऊपर ही फीचर था. एंड उसमें भी एक्चुअली दिस वाज द फर्स्ट टाइम वेयर रणवीर सिंह शोड अस अनदर टैलेंट ऑफ हिज, जिसके ऊपर बाद में मूवी बनी. कौन सा टैलेंट?
1: कौन सा वाला?
0: रैप करने का टैलेंट. इस गाने में जो रैप किया है वो रणवीर सिंह ने रैप किया है.
1: यस यस.
0: एंड देन लेटर ही डिड अ मूवी व्हिच वाज ऑल अराउंड रैप, व्हिच इज गली बॉय.
1: एक्चुअली में और गली बॉय में इनका, खैर उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस मूवी के बारे में, रामलीला के बारे में. रामलीला एक्चुअली ये टर्निंग पॉइंट था रणवीर सिंह के करियर एंड पर्सनल लाइफ में,
0: क्योंकि यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई दीपू से.
1: दीपू से मुलाकात हुई एंड उसके बाद र्यूमर्स हुई कि दे आर सीइंग ईच अदर पब्लिक में. कभी किसी ने नहीं माना.
0: हाँ, किसी तभी वो टाइम पे तो कोई नहीं माना,
1: कोई नहीं माना दीपिका की इंटरव्यू.
0: रणवीर का शक्ल देख के पता चल जाता था कि वो फुल लट्टू है दीपिका के ऊपर.
1: फुल लट्टू है. और मुझे उसी के बारे में बात करनी है. यू नो जो रणवीर सिंह है, इसे बोला जाता है ही इज नोन एज बॉलीवुड्स बिगेस्ट वाइफ गाय.
0: वाइफ गाय?
1: या ही नेवर हाइड्स हाउ मच ही एडमायर्स दीपिका, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे चाहे पर्सनल लेवल पे. प्रोफेशनल लेवल पे भी उसने हमेशा जिस वे से तारीफ किया है, अप्रिशिएट किया है दीपिका को, दीपिका के काम को, वो लोगों को काफी अच्छा लगा. यू नो ही सडनली बिकेम अ ग्रीन फ्लैग एवरीवेयर कि भाई ये बंदा अप्रिशिएट करने से पीछे नहीं हटता है.
0: अरे वो बीच में अभी एक कोई कौन सा कोई शो निकला था जहाँ पे हर कोई ट्रोल कर रहा था दीपिका को. कॉफी विद करण था ना शायद.
1: कॉफी विद करण ही था.
0: कॉफी विद करण, जहाँ पे
1: दोनों साथ में आए थे एंड जहाँ पे दीपिका ने बोला था कि आई वाज नॉट वेरी सीरियस अबाउट द रिलेशन जब शुरू हुआ था. एंड शी वाज शेयरिंग हर फीलिंग्स, तो लोगों को लगा भाई ये तो गलत था.
0: गलत है, लड़की ऐसे कैसे कर सकती है,
1: लड़की ऐसे कैसे बोल सकती है, तो लड़के बोलते हैं. बट एनीवे,
0: लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए.
1: Yeah, anyway, well, getting back to
0: I think it's very important for the men to understand, at least the ones that are growing up right now.
1: Yeah.
0: के भाई जो बचपन में ऐसा हमने सुना था ना कि लड़कियों ने ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत जल्द लड़कों पे इम्प्लीमेंट होने वाला है.
1: तो या
0: के लड़कों ने ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब यू नो इट्स चेंजिंग, इट्स 100% चेंजिंग
1: से ज्यादा मुझे लगता है कि इट्स बीइंग वॉइस्ड आउट. Yeah. जो चीजें हैं वो एड्रेस हो रही है, पहले एड्रेस नहीं होती थी, अब सिर्फ ये डिफरेंस हो रहा है कि चीजें एड्रेस हो रही है
0: विमेन के लिए.
1: विमेन के लिए पहले एड्रेस नहीं हो पाता था, तो चीजें जो थी अंडर कारपेट हो जाती थी. अभी एड्रेस हो रहा है तो कुछ को हजम होता है, कुछ को नहीं होता है.
0: दैट इज करेक्ट. एनीवे इन्होंने एक्चुअली इनका ना रणवीर सिंह के बारे में हम और भी बातें कर रहे हैं, बट अभी हम इनको उस एक मूवी जो रामलीला मूवी है,
1: क्या मूवी थी
0: यार, सुना रहे उसका एक परफॉर्मेंस दिखाते रणवीर से, सुनाते मतलब रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस है ये, तो सुनिएगा.
2: तूने तो साला सही और गलत का मीनिंग ही बदल दिया.
3: बकवास बंद कर, दोस्त है तेरे हम, चल.
2: बदला एक रात में सब बदला, प्यार का समंदर नफरत के रन में बदला, मुझे बेर से पैर था बदला, पहली बार तोड़ के प्यार किया साला, दुनिया छोड़ के प्यार किया बदला.
3: राम क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या?
2: देख रहा हूँ साला ये खून का रंग तो नहीं बदला, ये अभी भी लाल है कि साला सफेद हो गया.
3: बस कर राम, चल घर चलते हैं.
0: What a
1: epic performance थी यार इसमें. So रामलीला अगर मूवी आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखिएगा ये.
0: अभी के लिए रामलीला का ये बढ़िया सा गाना आपके लिए.

0: ट्रेंड मेकर्स
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
3: Mary didn't think she needed a DVS system.
4: I've got a heat pump. That should do.
3: But it didn't do it, did it, Mary?
4: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
3: So Mary got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
5: हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी टिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टब से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट
6: ओकलैंड तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए वंस अपॉन अ टाइम विद द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट अलोंग विद शाहजमान अली खान सैटरडे 25 जुलाई एट द ट्रस्ट एरिना बुक योर टिकट्स ऑन dryticket.co.nz फॉर स्पॉन्सरशिप्स कॉल करम हुंडल ऑन 02751460077
7: Don't be an egg. Have a crack at putting eggshells in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūtaki. Altogether Auckland.
8: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space and business shows up in your personal space. At ASB, one banker handles both. Because you're one person, not two accounts. ASB, one step ahead.
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits. आज रणवीर सिंह का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, तो इस पूरे घंटे आप रणवीर सिंह के गाने सुनने वाले हैं. एंड वी हैव हाफ ऑफ द शो स्टिल रिमेनिंग. एंड ऐसे लग रहा है कि भाई कैसे हम प्ले करने वाले हैं रणवीर सिंह के इतने सारे गाने.
2: बहुत सारी चीजों के लिए उसने वो उन्होंने एंडोर्समेंट भी किया.
1: दो दिन होना चाहिए इनका बर्थडे.
2: आई नो.
1: रणवीर सिंह बोल रहे हो आप?
2: वो भी एक्चुअली में स्पोर्ट्स वेयर, लग्जरी वॉचेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स.
1: रणवीर सिंह की ना ज्यादा मार्केटिंग की हम लोग बात नहीं करते. वरुण धवन को हमेशा बोलते कि वो मार्केटिंग जीनियस है, बट एक्चुअली रणवीर सिंह इज आल्सो रियली गुड एट मार्केटिंग. यू नो रणवीर सिंह वाज द फर्स्ट वन आई थिंक नेटफ्लिक्स पे जिसने एक शो किया था जहाँ पे इंटरक्टिव शो किया था उसने. याद है आपको रणवीर सिंह? रणवीर सिंह का ही था ना वो शो, वो वाइल्ड वाला शो. वो अलग अलग ऐसे वो एक कोई वाइल्ड बेयर, वाइल्ड बेयर कौन है वो वाइल्ड बेयर?
2: हाँ बियर
1: कोई तो भी. हाँ,
2: जो जंगल में ऐसा सरवाइव करता है. मैं समझ गई. तो वहाँ पे यू हैव टू सेलेक्ट कि तुम इसे ये करवाना चाहते हो या ये करवाना चाहते हो.
1: नेटफ्लिक्स पे जो था उसमें दो अलग अलग चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हो और वो
2: क्रेजी था. वो
1: बहुत सही था वो. एक्चुअली रणवीर सिंह ने अगर ऐसे हटके चीजें बोले तो उसने वो भी किया था. ही वॉज द वॉइस फॉर डेडपूल.
2: डेडपूल के लिए वॉइस था.
1: हिंदी में जो आया था उसका वो चल बज जाते.
2: एनबीए के लिए गया था रणवीर सिंह.
1: एनबीए में भी गया था.
2: एनबीए में गया था. बट वो मार्केटिंग जीनियस काफी चीजों में भी रहा है रुजबे, जैसे कि हिज कलरफुल क्लोथ्स, हिज डांसिंग, हिज हग्स, किसी को भी मिलना, दीपिकास क्लोथ्स, पब्लिक में किसी को मिलना तो एकदम से जादू की झप्पी बेसिकली देना उसको. इज बीन अ सिग्नेचर ऑफ रणवीर सिंह एज वेल. क्रेजी इंटरव्यूज तो है ही, बिकॉज वो हमेशा ऐसा रहा है कि भाई मैं अगर इस फील्ड में आया हूँ फेमस होने के लिए तो मैं फेमस होने का फायदा उठाऊंगा, मैं फेमस होकर दिखाऊंगा.
1: बट हाउ कैन यू फॉरगेट एआईबी नॉकआउट?
2: ओ यार, ही इज द फर्स्ट वन. ओजीज
1: रणवीर सिंह एंड अर्जुन कपूर बिफोर वी हैड
2: अलोंग विद दीपिका.
1: दीपिका वॉज देयर. आलिया भट्ट वॉज देयर.
2: आलिया भट्ट वॉज देयर.
1: अरे वो अपना संजय कपूर वहाँ पे था उसकी फैमिली के साथ. काफी बड़े बड़े नाम थे यार वहाँ पे.
2: When all this roasting just started.
1: Yeah, it just started and it stopped also immediately. Yeah, that was the first time when, you know, some media was banned or taken down.
2: Yeah, that reminds me second episode of Samiraina's show. It
1: देखा
2: was nice.
1: We're family friendly. Okay, अभी हम रेडियो पे बात कर सकते हैं उसके बारे में.
2: Yeah, it was nice show. मेरे को उसमें वो बहुत अच्छा लगा. चाय.
1: मेरे को चंदन को देख के बहुत.
2: हाँ चंदन. मैं चाय बोल रही हूँ.
1: You know there is this joke that I thought of. Should I do it on the radio?
2: You should know it's a friendly.
1: It is. I don't know if it is friendly, but I'm very sure that you will enjoy it.
2: अब मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो.
1: क्या?
2: हाँ बोलो.
1: So basically मेरा joke ये था कि India's got late in season 2. पहले दो episode में देखकर ऐसे लग रहा है कि this show will not get banned. Why?
2: Why?
1: Because दोनों episodes में चाय का जिक्र हुआ है. अभी के लिए जश्नेश का सुनते हैं.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits, और आपके लिए हम एक से गाने यहाँ पे लेकर आ रहे हैं रणवीर सिंह हिट्स, because it is रणवीर सिंह's birthday today. We are celebrating it on Hum today.
1: Yeah, so रणवीर सिंह का जो अभी आप गाना सुनने वाले हैं उनकी मूवी का पद्मावत रुज़वे, वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड मूवी भी रही, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी भी रही.
0: पद्मावत सुन लिया अभी उन्होंने,
1: और पद्मावत आपने सुना ना भैया? सो मेरे को लगता है कि वो जो उनका रोल था ना खिलजी का, जो रोल था उस समय पर, ही वॉज बैंड ऑफ गिविंग एनी इंटरव्यूज, सब कुछ क्योंकि बहुत कुछ हो रहा था उस समय पर,
0: दीपिका के ऊपर भी काफी सारी चीजें
1: थी. तो व्हाट, सिर्फ दीपिका की इंटरव्यू हुई थी और हमने की थी यहाँ पे इंटरव्यू.
0: ओह वाओ,
1: दीपिका की इंटरव्यू की थी उस समय पर, एंड बट ही वॉज नॉट अलाउड टू गिव एनी इंटरव्यू, nor Shahid Kapoor was not allowed, and
0: because he was playing Khilji wala role, that's why maybe.
1: तो काफी issues हो रहे थे. तो रणवीर सिंह ने बाद में post movie एक interview में बोला था कि because उसके अंदर इतना ज़्यादा था share करने के लिए about the role, but he couldn't talk about it. उसने सारी की सारी energy channelized की into the role, into the character, and that's how the character was.
0: I think he had to go into therapy after this movie. क्योंकि he had gone into such a dark corner कि उसको बहुत difficult हुआ था उससे बाहर निकलने के लिए.
1: Yes.
0: तो काफी difficult मतलब because he had literally got into that dark shade
1: of Alauddin Khilji. Anyway, so इसी note पे आपको Tata bye bye कहते हैं हम यहाँ पे.
0: Some epic movies by Ranveer Singh. मैं honestly बोल रहा हूँ, मैं एक movie के बारे में बात करने वाला था जो मैं नहीं कर पाया. But you should go and watch it.
1: Lutera.
0: No, it is Jayesh Bhai Jordar.
1: Oh yeah, even that movie.
0: जयेश भाई जोरदार इज सच अ क्लास मूवी, और आपको कहीं पे भी ओटीटी पे मिलना भी बहुत मुश्किल है वो.
1: या इवन लुटेरा मूवी, अगर लुटेरा नहीं देखी है तो इवन वो भी मेरे को बहुत अंडररेटेड लगती है.
0: मूवी अंडररेटेड है बहुत. बट जयेश भाई जोरदार, व्हाई आई एम सेइंग इज बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट हिज एक्टिंग द कैरेक्टर, बट इट्स ऑल्सो द होल थीम ऑफ द मूवी,
1: द सब्जेक्ट ऑफ द मूवी
0: इज ब्यूटीफुल.
1: या इट्स वेरी नाइस,
0: यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच इट. बट इसी के साथ अभी हम आपको कहते हैं बाय बाय. कम बात कर रहे हैं आज क्योंकि आपको धुरंधर का भी गाना सुनाना है ना.
1: या, उसके बिना एंड कैसे हो सकता है. सो गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अभी रैप सुनते हैं रणवीर सिंह की आवाज में.
2: कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा?

Happy Hour on Hum.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number, यार.
2: क्यों? क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
4: Danny didn't think he needed a DVS system.
5: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
4: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
5: Nah, only one room. It was just too noisy.
4: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.

0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz।
3: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

Drop the bait.

0: No Logic Monday.
1: No Logic Monday आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. इंटरेस्टिंग खबरें भी मेल कर आता हूँ. मैक्सिकन मैन अक्यूज्ड ऑफ फेकिंग किडनैपिंग. ये स्टोरी जुलाई 3, 2026 का है. टेनेंसिंगो स्टेट ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की स्टोरी है. इसको हमने ऑडिटी सेंट्रल वेबसाइट से लिया है, तो आप जाकर पढ़ भी सकते हैं अगर आपको पढ़ना है. यहाँ पर लिखा है कि एक मेयर जो मैक्सिको के मेयर है, इन्होंने अपना खुद का किडनैपिंग स्टेज किया. इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इट वाज मेंट टू हाइड मिसिंग पब्लिक फंड्स. अथॉरिटीज ने क्लेम किया है मिलियंस जो डिसअपीयर हुए हैं फ्रॉम द म्यूनिसिपल ट्रेजरी. और ये केस काफ़ी वाइड स्प्रेड पब्लिक और पॉलिटिकल अटेंशन ले चुकी है, अट्रैक्ट कर चुकी है. और द मेयर फेसेस सीरियस लीगल स्क्रूटनी, ये वेबसाइट की माने तो ऐसा कहा गया है. कुछ ही देर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चाइना अनवेल्स अल्ट्रा बायोनिक ह्यूमेनोइड रोबोट. इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा. इसके अलावा बैंक मैनेजर रिप्लेसेस कैश विथ प्ले मनी, इस पर भी जानकारी हमारे पास है. नो लॉजिक मंडे जारी है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: No Logic Monday.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश का साथ है नो लॉजिक मंडे आपके लिए जारी है। चाइनीज कंपनी उपटेक ने एक लाइफ लाइक ह्यूमनॉइड रोबोट को इंट्रोड्यूस किया है। इस रोबोट के फीचर्स रियलिस्टिक आर्टिफिशियल स्किन है और साथ में एडवांस्ड एआई का इस्तेमाल करके एक बहुत ही कम्प्लीट और बड़ा पैकेज ये बनाया है। इसको डिस्क्राइब किया गया है एज द फर्स्ट मैस प्रोड्यूस्ड फुल साइज अल्ट्रा बायोनिक ह्यूमनॉइड और ये टेक्नोलॉजी अब आगे चलकर एप्लीकेशंस को एक्सपेंड करना चाहता है, खासतौर पर इन सर्विस एंड रिसर्च। और ये एक मेजर स्टेप कहा गया है इन रोबोटिक्स डेवलपमेंट। 2 जुलाई को इस स्टोरी को पब्लिश किया गया ऑफ दिस ईयर और चाइना की ये स्टोरी है। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। कुछ ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग खबरें आप तक हम लेकर आते रहेंगे नो लॉजिक।

0: Now Logic Monday.
1: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits, Krish के साथ है, हमारा साथ रहेगा midnight तक, 8 to 9 आपके लिए रहता है, No Logic Monday. एक bank manager ने replace किया cash with play money. South Korean bank manager ने लगभग 45,000 चुराया from a vault, और इन्होंने genuine bank notes को replace किया with cartoon themed fake money. ये डिसेप्शन कंटिन्यू हुआ अंटिल मिसिंग फंड्स को डिस्कवर किया गया. अथॉरिटीज ने इनको अरेस्ट किया आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, और ये अनयूजुअल थेफ्ट जो हुआ है वाइड स्प्रेड मीडिया अटेंशन मिला है या अट्रैक्ट किया है. जुलाई 2nd को ऑफ दिस ईयर ये स्टोरी को पब्लिश किया गया है, और साउथ कोरिया की ये स्टोरी है. वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव लेटर पर जानकारी मैं आपको दूंगा. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम, नो लॉजिक मंडे आपके लिए जारी है.

छोड़ो भी।

0: Cafe on Hum.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने।
5: वो भी I love you वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत तो?
4: आए आए बताओगे यार।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
6: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
7: Kyun? Kya hua?
6: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi, to itne documents mange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya. No rest. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।
8: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
9: Don't put up with a damp, cold bathroom this winter. With a shower dome shower top, your bathroom will be warmer, drier, healthier. And now every shower dome comes with a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
10: The beat of Bollywood.
11: World's best, hamari koi branch nahi hai.
10: Hum. Night Cafe on Hum. Where nonsense makes perfect sense. No Logic Monday.
12: No Logic Monday आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। रिसर्चर्स ने कोई एक ऐसा मिनिएचर डाइविंग सूट क्रिएट किया है फॉर कॉकरोचेस। ये डिवाइस इंसेक्ट्स को सर्वाइव करने देता है अंडर वाटर फॉर अप टू 3 आवर्स। साइंटिस्ट का मानना है कि ये असिस्ट करेगा इन अंडर वाटर इंस्पेक्शंस और रिसर्च। और कहा गया है कि ये डिज़ाइन ऑक्सीजन सप्लाई करता है वाइल अलाउिंग मूवमेंट। और ये प्रोजेक्ट शोकेस किया है क्रिएटिव बायो इंजीनियरिंग। 1 जुलाई को सिंगापुर में इस रिसर्च को पब्लिश किया गया है। मतलब इस डिस्कवरी के बारे में बातें हुई है, इट्स वेरी रिसेंट। और ऐसे ही कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही है हमारे अराउंड जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। क्रिश का साथ है, सुनते रहो हम। नो लॉजिक मंडे आपके लिए जारी है नाइट कैफे में।

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम।
1: नो लॉजिक मंडे के अंत तक हम पहुंच चुके हैं और एक और स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा बिफोर वी फिनिश ऑफ विद दिस प्रोग्राम। डॉग रेंटल, इस पर डिबेट हो चुका है। चाइना की स्टोरी है कि चाइनीज प्लेटफॉर्म यहां पर लोगों को अलाउ करते हैं टू रेंट डॉग्स बाय द आवर। ओनर्स पैसे अर्न करते हैं वाइल अदर्स एंजॉय टेम्पररी पेट कंपेनियनशिप। सपोर्टर्स का मानना है कि इट हेल्प्स पीपल हु कैन नॉट ओन पेट्स। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि एनिमल वेलफेयर के बारे में बहुत बातें हैं क्योंकि डॉग्स पर काफ़ी स्ट्रेस होता है न्यू ओनर्स के साथ। लेकिन ये सर्विस जो है, इट हैज़ जनरेटेड सिग्निफिकेंट ऑनलाइन डिस्कशन। 30th जून को पब्लिश किया गया ऑफ दिस ईयर ये स्टोरी, चाइना की ये स्टोरी आपके लिए। नो लॉजिक मंडे में आज के लिए इतना ही। अगले घंटे पर मिलते हैं न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट के साथ ऑन द टॉप ऑफ द आवर। उसके बाद में आपके लिए रहेगा 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है। आज अगर आपका जन्मदिन है अ वेरी हैप्पी बर्थडे टीम हम की ओर से आपको हम विश करना चाहेंगे। बहुत सारी खुशियां बहुत सारी बधाइयां हम आपको देना चाहेंगे। कुछ स्पेशल हो रहा है कुछ प्लान किया गया है या आगे चलकर भी कुछ होने वाला है आपके लिए तैयारियां हो रही है तो इसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हम देना चाहेंगे। बस आपको हमारा साथ देना है। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टीम हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। सुनते रहो हम मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स Breakfast show with VJ and Pooja.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
0: The breakfast show with VJ and Pooja.

0: 6 to 10 AM.
1: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: हम
0: नाइट कैफे ऑन हम।
3: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। कुछ सामाजिक सूचनाएं भी हमारे पास है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन की ओर से सूचना है कि अखंड रामायण पाठ यहाँ पर होने जा रहा है सैटरडे 1 और संडे 2 अगस्त को। सैटरडे को रोट पूजा होगा, आरती और रामायण पाठ भी होगा 8:45 AM। संडे को सुबह 10 बजे रामायण पाठ ख़त्म होगा, 10:30 AM हवन और आरती भी होगी। महाप्रसाद भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। और भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 09836464647 पर। मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

You're humming along with Krish on your number one hum playing Bollywood's biggest hits. AI सभी जगहों पर है तो हम podcast सुनना ना भूले क्योंकि इसमें रुजबे और सैंडी बहुत ही interesting बातें करते हैं with AI specialist दर्शित पांड्या. ये एक senior principal engineer है platform at Zerko and an AWS community builder जो बहुत ही बारीकी से breakdown करते हैं the world of artificial intelligence in a way that actually makes sense. चाहे ChatGPT हो या AI at work हो to job security, privacy concerns, opportunities या कोई भी skills that you need for the future, ये conversation ये सारे questions का जवाब देता है और discuss करता है इन मुद्दों को. चाहे आप excited हो, curious हो या फिर little nervous about AI, ये episode आपके लिए एक practical guide है to understand कि टेक्नोलॉजी किस दिशा में जा रही है और कैसे आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल सकते हैं. तो AI is everywhere, लेकिन इसका क्या मतलब हमारे ज़िंदगी के लिए होता है, हमारे काम के लिए होता है, ये एपिसोड आप सुनना ना भूले. 5599 पर टेक्स्ट करें ड्राइव फॉर द फुल ऑडियो. इसके अलावा ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए भी आप हमारे पास 5599 पर BF भेजे, जहां पर फ्यू बिट्स एंड कन्वर्सेशंस विद विजय एंड पूजा होता है फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो. तो हमारे पॉडकास्ट को आप सुने क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपके लिए यहां पर डिस्कस किया जाता है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं.

प्यारे गाने हैं, आप खुद ही सुने और हमें बताएं कि आपको इस बार का जी ये जो नॉनस्टॉप सॉन्ग्स है ये कैसा लगा। इस घंटे पर राहत फतेह अली खान शो पर भी जानकारी देंगे, एक और शो आने वाला है द ग्रेट कॉमेडी नाइट, इस पर भी जानकारी हमारे पास है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, वेलकम टू द शो, यू लिसनिंग टू नंबर 1 हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. ओकलैंड गेट रेडी. लेजेंडरी राहत फतेह अली खान ओकलैंड आ रहे हैं फॉर वन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. इनका मैजिक आप एक्सपीरियंस कीजिए ऑफ हिज टाइमलेस हिट्स, सोल स्टिरिंग कवाली, पावरफुल वॉइस जो इनका होता है, जिन्होंने ऑडियंस को कैप्टिवेट किया है अक्रॉस द वर्ल्ड. इनके गाने इतने मजेदार होते हैं. ट्रस्ट अरिना में ये शो होने जा रहा है 25th जुलाई को, प्रेजेंटेड बाय जय का स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शन. आपके लिए टिकट्स आप dry.com से ले सकते हैं. राहत फतेह अली खान लाइव देखने का मौका है ऑन 25th जुलाई ट्रस्ट अरिना में. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. यू लिसनिंग टू नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
2: The moment that matters. When you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At AssureOne, we work with you to make sure every detail is captured upfront. Even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. AssureOne, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as AssureOne, is licensed financial advice provider.
3: ग्रेट कॉमेडी नाइट फीचरिंग कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर, ये दोनों लाइव ऑन स्टेज परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं। डबल द कॉमेडियंस, डबल द लाफ्टर, वॉच टू ऑफ इंडियाज बिगेस्ट कॉमेडी स्टार्स एक साथ में ये परफॉर्म करेंगे फॉर वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। इनका मैजिक ऑफ लाइव कॉमेडी एक्सपीरियंस कीजिए बियॉन्ड द टीवी स्क्रीन। इनका लाफ आउट लाउड मोमेंट्स को एक्सपीरियंस कीजिए। हिलेरियस स्टोरी सुनिए, रेजर शार्प पंच लाइन्स भी सुनने का मौका मिलेगा, हंसने का मौका मिलेगा और काफ़ी ऑडियंस इंटरेक्शन भी होगा इनके शो में। तो ब्रिंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर द परफेक्ट नाइट आउट, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज क्रिएट करने के लिए आप आ जाइए। और VIP टिकट्स बिक चुके हैं तो आप जल्दी से टिकट्स जो रह गए वो आप ले लें। ओकलैंड इज़ बजिंग, सो डोंट वेट अंटिल रिमेनिंग सीट्स डिसअपीयर। आफ्टर पे ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप इजीली बुक कर पाएंगे अपने लिए सीट्स। टिकट्स बहुत ही जल्दी से बिक रहे हैं, ग्रैब योर टिकट्स नाउ एट bookmyevent.co.nz बिफोर दे आर गॉन। 18 जुलाई को ये होने जा रहा है, विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में होगा। अगर आप 0800-004-866 पर कॉल करते हैं एंड इफ़ यू क्रैक अ जोक ऑन एयर, इफ द आरजे ऑन एयर लाफ्स, आपको डबल पास मिल सकता है। ओनली क्लीन ऑन एयर फ्रेंडली जोक्स होने चाहिए प्लीज़। तो आप ये कर सकते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 6 PM के बीच, और ऐसे ही आप जीत पाएंगे डबल पास हमारे साथ होकर। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम।

0: जरा जरा
1: आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम
2: नाइट कैफे आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. एक के बाद एक आपके फेवरेट सॉन्ग्स भी हम लेकर आते रहेंगे, बस आप हमें सुनते रहो. इंटरेस्टिंग खबरें भी है, साइंस रिलेटेड, बॉलीवुड रिलेटेड भी हमारे पास है. फिलहाल इस बार चाइनाज रूफटॉप रेन कूलिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ. एक चाइनीज अपार्टमेंट बिल्डिंग ने रूफटॉप मिस्टर्स को इस्तेमाल करके कूल किया है द सराउंडिंग एरिया. फाइन वाटर स्प्रेज टेम्परेचर्स को रिड्यूस करते हैं ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर हीट. और ये वीडियो जो ये सिस्टम का वीडियो बनाया गया है वायरल हो चुका है ऑन सोशल मीडिया. काफ़ी व्यूअर्स प्रेज कर रहे हैं कि ये एक इनोवेटिव अर्बन कूलिंग सोल्यूशन बन चुका है. लेकिन कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया है कि इनका लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी और वाटर यूज़ के बारे में. 3 जुलाई को ये स्टोरी पब्लिश किया गया है इन चाइना. और लेकिन फिर भी है तो ये क्रिएटिव रूफटॉप रेन कूलिंग सिस्टम जो बनाया गया है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. अगले घंटे पर मिलते हैं.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Murphy on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: Welcome back everyone. You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon aur hamara saath raat 12 tak rahega. This is our final hour. Welcome back everyone. News and sports update aapne suna abhi. आपके लिए होने जा रहा है 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूज़िक जो बहुत ही मज़ेदार है. बहुत ही लवली सॉन्ग्स हम लेकर आए हैं. आलिया भट्ट की आवाज़ में पहला गाना विशाल मिश्रा जो इन दिनों छा रहे हैं बहुत ही अलग अंदाज में, बहुत ही प्यारे प्यारे गानों को लेकर. कविता कृष्णमूर्ति, आशा भोसले, श्रेया घोषाल भी है. इनफैक्ट विशाल ददलानी और नेहा कक्कर भी आप सुन पाएंगे इसी लिस्ट में. एंजॉय कीजिए.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है। रात 12 तक हमारा साथ रहेगा। नाइट कैफे आपके लिए जारी है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है व्हाई सम ब्रेन रिजिस्ट अल्जाइमर्स। इस पर जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही जल्दी। जितने भी हमारे नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, ऊबर ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, आपको भी शामिल करते हैं। हमेशा की तरह आप हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और आपको याद भी कर रहा हूँ अगले गाने पर।

0: कैफे ऑन हम। हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल। 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
6: Right now, in midwinter with ills, chills, the short week and school holidays kicking in, many of NZ Blood's regular donors are out of the game. So if you can, please make time to give blood this week. The team would really appreciate your donation. Come off the bench and make a real impact. Your donation of blood could help save up to 3 lives. Bloody legend. Give blood, save lives. Book now at nzblood.co.nz.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994399 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz।

0: Coffee on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. Krish ke saath hai. Abhi Los Angeles ki ye research story mein aapke liye lekar aaya hoon. 3 July ko publish kiya gaya hai. Jahan par researchers ne find out kiya hai ki kuch aise brains hote hain jo naturally immature brain cells ko protect karte hain from damage. Your resilience ab aage chalkar memory loss linked to Alzheimer's disease ko slow kar sakta hai. Findings se new treatments बनाए जा सकते हैं जिससे ब्रेन फंक्शन को प्रिजर्व किया जा सकता है. साइंटिस्ट अब स्टडी कर रही है कि कैसे ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स काम करती है और इस डिस्कवरी से एक फ्रेश होप मिलता है फॉर प्रिवेंटिंग कॉग्निटिव डिक्लाइन या फिर इनके लिए एक ट्रीटमेंट भी बन सकता है. मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ, कुछ देर तक और हमारा साथ रहेगा.

नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। अब मुलाकात कल होती है नाइट कैफे ट्यूसडे नाइट, हम लेकर आ जाएंगे आपके लिए और प्यारे प्यारे गानों के साथ कोक स्टूडियो रिलोडेड भी लेकर आएंगे। हैव अ गुड वन एवरीवन, गुड नाइट।

rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.

0: driving you home?
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ भी किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत तो
3: आए आए बताओगे यार।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

0: हाय बॉयज, एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था, वो धोखे से राज करता था।
1: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
2: पर शुड वी कॉल हर सर?
3: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलाएंगे।
0: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई।
4: YRF Spy Universe presents
1: Alpha.
4: Now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
0: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
5: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा, Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले जब दिल मिले तब गुल खिले जब गुल खिले तब दिल मिले

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
3: Hi boys, एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था, वो धोखे से राज करता था।
4: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
5: But should we call her, sir?
6: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलाएंगे।
3: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई।
1: YRF Spy Universe presents
7: Alpha.
1: Now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
3: शुरू करो अग्नि परीक्षा।

0: दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind. Sif Rova par.
1: Playing Bollywood's biggest hits.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।

अब पढ़ती है वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: keep calm because Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
2: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
3: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
4: And award goes to Indelible Homes.
3: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
0: Kahani of Indelible Homes.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
5: Night Fly.

0: इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
5: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि आज मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
4: Playing Bollywood's biggest hits.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: क्या नाम है?
3: हुनुआ और वेटाकरे।
2: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में।
3: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
3: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
2: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927-99439 और विजिट legalassociates.co.nz.
8: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
1: Home. Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. People across Marlborough are being encouraged to delay travel or stay at home due to severe weather. Upwards of 400 millimetres of rain is expected to hit. Kaikoura District Council Chief Executive Will Doty says it's not worth the risk.
10: You'll be aware that it's school holidays, but you may want to reconsider travel plans for the next 48 hours.
9: People purchasing homes in flood-prone areas are being urged to read up on the dangers. Cotality found a stronger level of demand for those more affordable yet risky properties. Spokesperson Nick Goodall says that there are ongoing efforts to educate people.
11: With the national flood model due to go live in May next year, which will mean that data is in everyone's hands, hopefully.
9: The Greens believes lowering nitrate limits in drinking water is a no-brainer. It wants to also strengthen the rules on discharging wastewater. Co-leader Marama Davidson says this would put people and nature first.
12: Safe drinking water and the abundance of our oceans and seas needs to be a priority over corporate profits.
9: Prince Harry responded too late to secure a bed at Buckingham Palace during his UK visit this week. His team announced he had accepted an invite, but royal sources say he won't be staying there. To rugby with shift 4, after beating France, the All Blacks turned their attention to Italy and Wellington this weekend. Assistant coach Neil Barnes says they'll be making some changes.
13: There's some people that went all right last week that might not be in there, but there were also some really, really good performances that I think are going to be rewarded.
9: And in Basketball World Cup Asian qualifying, the Tall Blacks have thrashed Guam 129-75 on Auckland's North Shore.
1: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
14: 10 degrees temperature, Auckland mein abhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 14, overnight kam se kam 9 degrees. Barish hogi aaj, reh reh kar kuch gambhir barish bhi ho sakti hai. Badal garjenge, Fangipurwa ke north mein halki possibility bhi nazar aa rahi hai. Sunrise 7:33 am par, sunset 5:19 pm par hoga.
1: This show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Breakfast catch up.
14: 2 minute ho rahe hain, 6:00. Namaskar, a very good morning. Swagat hai aapka. Welcome to the breakfast show with Vijay and Pooja. Aaj मंगलवार है, 7 जुलाई. आज के ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. एक बार फिर आपका साथ देने के लिए आ गए हैं हम ऑन द ब्रेकफास्ट शो, और अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक हमारा और आपका साथ इस प्रोग्राम में रहेगा. उम्मीद है कल का दिन आपका अच्छा रहा होगा और अब एक नए दिन के लिए, एक नई सुबह के लिए आप तैयार होंगे. और अभी शायद तैयारियां चल भी रही हैं, ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं और बच्चों की स्कूली छुट्टियां परीक्षा भी चल रही है, तो काफ़ी कुछ निपटाना पड़ता है आपको घर से निकलने से पहले। आज के इस दिन की शुभकामनाएं हैं आपकी खातिर, और आज क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं या होनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म्ड और अपडेटेड रखेंगे। इनाम जीतने के कुछ बेहतरीन मौके और आपके मन चाहे गानों का ये लाजवाब सफर आज 7 जुलाई का हम शुरू कर रहे हैं।

दुनिया भर में सभी को पता है कि अकेलापन, लोनलीनेस जो है ये एक दिन ब दिन बढ़ती समस्या जो है ये बताई जा रही है, और कई जगहों पर इससे निपटने के लिए अलग अलग तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। और स्वीडन में एक फार्मेसी चेन है, उन्होंने कुछ बहुत ही यूनिक किया है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र जो है ये बन गई है। और उन्होंने यू नो ये जो कॉर्पोरेट वेलनेस ऐप्स है और साथ में कई अन्य जो चीज़ें होती हैं उससे हटकर कुछ बहुत ही अलग किया है। उस इस फार्मेसी चेन ने अपने सभी कॉर्पोरेट ऑफिसेस में फ्रेंडशिप आवर जो है इसे कंपलसरी कर दिया है। इस पॉलिसी के तहत कंपनी का हर एक एम्प्लॉय को महीने में एक घंटा जो है ये छुट्टी मिलती है। दे आर अलाउड टू लॉग ऑफ, पिक अप द फोन और अपने किसी परिवार वाले से, चाहने वाले से, दोस्त से या कोई रिश्तेदार जिससे बहुत लंबे समय से बातें नहीं हुई हैं उनसे वो बातें करें। टू एंश्योर कि पीपल एक्चुअली यूज इट विदाउट फाइनेंशियल स्ट्रेस, कंपनी जो है बैक्स द आवर विद एन एनुअल स्टिपेंड, जहाँ पर कंपनी जो कॉफ़ी या शेड मील का खर्चा भी उठाती है। एक्टिवली बेकिंग इमोशंस, और ये दिखाता है कि भाई ये एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम जो है इसको लेकर सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉब्लम बताने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ता है, और वही स्वीडन की इस फार्मेसी चेन ने भी किया है।

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
3: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
4: Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
5: अपने सपनों की दुनिया बनाने, we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At Assure One, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten. Because the right advisor knows the application process, the policy wording, and knows exactly what it takes for a claim to be successful. Assure One, plan for tomorrow today. Call 0800-77-HEETA. North Henvale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advisor.
6: The beat of Bollywood.
7: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
6: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
9: Global Headlines.

0: सुबह के मुख्य समाचारों में, क्यूबा में कल चल रहे बड़े एनर्जी क्राइसिस और फ्यूल शिपमेंट्स पर यूएस ब्लॉकेड के चलते पूरे देश में ब्लैकआउट हो गया, जिससे इलेक्ट्रिकल ग्रिड पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश का एजिंग इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड पूरी करने में स्ट्रगल कर रहा है और ग्रिड ऑपरेटर फिलहाल इस पूरे ब्रेकडाउन के असली कारण की जांच कर रहा है। इस साल क्यूबा में मेन सप्लायर्स से ऑयल शिपमेंट रुकवाने की यूएस पॉलिसी के बाद से हालात और खराब हो गए हैं, जबकि इससे पहले मार्च में भी एक ही हफ्ते के अंदर देश ने दो बार टोटल ब्लैकआउट झेला था। भारत में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खत लिखकर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रपोज्ड बदलावों पर फिर से विचार करने की मांग की है, जिससे स्टेट के 70 लाख गरीब लोगों का राशन कम हो सकता है। ड्राफ्ट बिल 2026 में हर परिवार को मिलने वाले 35 kg फूड ग्रेन्स के बजाय 7 kg पर पर्सन यानी मैक्सिमम 35 kg करने का प्रस्ताव है, जिससे तमिलनाडु के छोटे परिवारों को बड़ा नुकसान होगा। NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार हालांकि सेंटर का कहना है कि इससे इक्विटी और न्यूट्रिशन बेहतर होगा, पर CM विजय ने साफ किया है कि इससे तमिलनाडु के सबसे गरीब परिवारों तक पहुंचने वाला राशन काफी कम हो जाएगा। फिजी में फिजियन इलेक्शंस ऑफिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ वोटर्स के बारे में फेक या मिसलीडिंग खबरें शेयर करने पर $50,000 तक का फाइन, 5 सालों की जेल की सजा या दोनों हो सकते हैं। फिजी इलेक्शंस ऑफिस ने साफ किया है कि चुनाव से जुड़े नए और एक्यूरेट डाटा को अपडेट करने के लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस और इमिग्रेशन के साथ मिलकर रेगुलर डाटा क्लीनिंग और वेरिफिकेशन ड्राइव्स चला रही हैं। पीजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने जनता से इलेक्ट्रल एक्ट के सेक्शन 144 के तहत सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स पर ही भरोसा करने को कहा है, ताकि गलत अजम्पशंस की वजह से फिजी के इलेक्ट्रल प्रोसेस पर लोगों का भरोसा कम ना हो। फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत राउंड ऑफ 16 के मैचेस अभी थोड़ी देर बाद आज शुरू हो जाएंगे। आज 2 मैचेस खेले जाने हैं। सुबह 7 बजे बहुत ही जबरदस्त मैच पोर्चुगल और स्पेन के बीच खेला जाएगा, जिसके बाद दिन में 12 बजे USA बेल्जियम से खेलेगा। अभी तक क्वार्टर फाइनल्स की ओर अगर देखें तो फीफा वर्ल्ड कप का पहला क्वार्टर फाइनल इसी शुक्रवार की सुबह 8 बजे फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जाएगा। तीसरा क्वार्टर फाइनल रविवार की सुबह 9 बजे नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच होगा, जबकि सेकंड और फोर्थ क्वार्टर फाइनल्स का फैसला आज और कल होने वाले मैचेस के बाद होगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। गूगल PFSL टुडे, अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। विजिट indelibleHomes.co.nz।
2: Bollywood's most wanted.
3: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ।
4: मैं लाऊं अपना A game।
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजें रही आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 29 मिनट हो रहे हैं 6:00 बॉलीवुड में। अगर देखें तो प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम ने राजकुमार राव और उनके काम को एक बार फिर लोगों के नज़र में ला दिया है। हालांकि इस में उनके काम को बहुत पसंद किया गया है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अब उनकी आने वाली जो पेशकश है उसके लिए भी लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। एंड जो नया टाइटल है दादा द सौरव गंगुली स्टोरी, ये इस फिल्म का प्लॉट जब से अनाउंस हुआ है तब से काफ़ी चर्चे में है। और इंडस्ट्री के सोर्सेज के मुताबिक इस फिल्म के जो मेकर्स हैं वो फिल्म का फर्स्ट ऑफिशियल लुक जो है कल रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि कल सौरव गंगुली का बर्थडे है और इस मौके पर उन पर बन रही ये फिल्म जो है इसका फर्स्ट लुक जो है कि लॉन्च किया जा सकता है। ये स्पोर्ट्स बायोपिक जो है इस पर काम अप्रैल महीने में शुरू हुआ था और शूटिंग काफ़ी तेज़ी से हो रही है। एक सोर्स ने बताया है कि टीम इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ स्पेशल रिवील, और साथ ही में कल इस फिल्म का रिलीज डेट जो है ये भी अनाउंस किया जा सकता है। एंड इफ दैट हैपेंस मेकर्स कुड लॉक वन ऑफ द अपकमिंग मेजर रिलीज विंडोज। फर्स्ट लुक जो है सौरव गंगुली के बर्थडे के मौके पर रिलीज किया जाएगा एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी ए फिटिंग ट्रिब्यूट, जो कि भूतपूर्व इंडियन कैप्टन है या कैप्टन है क्रिकेट टीम के। और राजकुमार राव को पहली बार इस रोल में देखने का मौका जो है ये भी फैंस को मिल सकता है। दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है, बॉलीवुड कपल अली फजल और ऋचा चड्ढा, इन्होंने शायद मेरे ख्याल से एक साथ काम किया था फुकरे फ्रेंचाइज में, लेकिन कभी दे हैव नेवर वर्कड ऑपोजिट ईच अदर। और ये अब बदलने वाला है, क्योंकि एक्टर राइटर डायरेक्टर शशि वर्मा की आने वाली फिल्म जो है उसमें ऋचा चड्ढा और अली फजल एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर सकते हैं और एक नया ऑन स्क्रीन डायनेमिक जो है इन दोनों का देखने को मिल सकता है। अली और ऋचा अब फाइनली सेट टू स्टार ऑपोजिट ईच अदर और सीन वर्क प्रोडक्शंस और गिरिराज प्रोडक्शंस की ये पेशकश होगी। अपार्ट फ्रॉम देम इस फिल्म में कुमुद मिश्रा जो है ये भी रहेगा। इट इज सेट अगेंस्ट द कयोटिक दिल्ली बैकड्रॉप और शशि वर्मा इन्होंने फिल्म बाला, गुंजन सक्सेना, कटहल जो है ये डायरेक्ट की है, AK-47 और मुर्गा ट्रॉफी जैसी फिल्में लिखे भी हैं। इस फिल्म को अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इस साल बाद में या सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर में ये फिल्म जो है इस पर काम शुरू हो सकता है और अगले साल थिएट्रिकल रिलीज जो है इस फिल्म का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो जो भी डिटेल्स होंगे डेफिनेटली हम पर आपको हम जरूर देते रहेंगे।
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
3: Accurate traffic.
4: Trust the experts at Alloy Wheel Repair.
5: Pretty wet today, rain all day, windy as well, a high of 15 degrees. Citybound on motorways starting to slow in normal areas, nothing too major going on. Southern 26 minutes, Manukau to town, 50 from Drury. Slow Papakura to Papatoetoe and slowing down around Mount Wellington too. Northwestern 22 in from Massey, slow there to Te Aratu and close to the city. The northern slow Greville to Wairau Valley, 20 minutes from Constellation.
4: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
6: Craving ho rahi hai. थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
7: TriVision Entertainment and Ashik Homes Limited in association with Mega Finance, Mortgages and More and Peace of Mind Insurance presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
8: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
7: Saturday 18th July 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
8: Mashallah, bahut acha, very nice.
9: Big Barrel, Big Barrel, your local liquor store.
3: Big barrel, big range, bigger deals. Glenmurray Port, Sherry, Peated, Chardonnay or Cabernet Cask Whiskey Range, 700ml, $59.99. Screwball Peanut Butter Whiskey, 700ml, $54.99. And Maloney's Irish Cream Liqueur, 700ml, $17.99.
9: Big barrel, big range, bigger deals.
10: Big barrel, your local liquor store.
11: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
12: Hear that? It's Woolworths 3-day super sale. Get our washed white potatoes 4kg just $7 a pack and Tip Top Toppers or Jelly Tips 6 to 10 pack just $4.50 each. Ends Thursday, while stocks last. TCs and exclusions apply.
13: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
14: Azra le le tum sa.
15: Hum playing Bollywood's biggest hits. Yeah.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: अभी 25 मिनट रह गए हैं 7 बजने में. द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच. आपको हम कहना चाहेंगे सबसे पहले तो आज राम राम, जय बजरंगबली हनुमान, एंजॉय योर ट्यूसडे पीपल, हैव अ गुड डे. मिस्टर मटा मटा, आपको भी ये दिन, ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. और गुड मॉर्निंग गाइस, मैंडी आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग. जय श्री कृष्ण, विजय एंड पूजा एंड हैव अ लवली मॉर्निंग. डैनियल, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. बॉबी मान जी, हर सुबह की तरह आज भी सुबह सुबह आपने हमें याद किया. आपके वक्त के लिए, आपके मैसेज के लिए थैंक यू सो मच. और उसके अलावा गुड मॉर्निंग एंड नमस्कारम विजय पूजा, ऑल स्टाफ एंड लिसनर्स ऑफ हम, हैव अ हैप्पी डे. रविनेश मुदलियार जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. और साथ में परमा महाराज जी, आपने भी सुबह सुबह अपना जो गुड मॉर्निंग मैसेज है ये हमारे पास भेजा है, इसके लिए थैंक यू सो मच. आपको हम कहना चाहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. और साथ ही में आज 7th ऑफ जुलाई कई चीज़ें मार्क की जा रही हैं. टुडे इज़ वर्ल्ड चॉकलेट डे. चॉकलेट जो है हम में से बहुत सारे लोगों के लिए एक वीकनेस है, तो वर्ल्ड चॉकलेट डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है. इसके अलावा इट्स इंटरनेशनल पीस एंड लव डे. और इसके अलावा वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे जो है ये भी आज मार्क किया जा रहा है. और किस्वाहिली लैंग्वेज जो है ये शो करता है रेस्पेक्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के रिच कल्चरल हेरिटेज को और उसके लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को. और किस्वाहिली लैंग्वेज डे जो है इट्स जस्ट नॉट अ सेलिब्रेशन, लेकिन ये एम्फसाइज करता है जो रोल किस्वाहिली लैंग्वेज जो है ये प्ले कर रहा है. और सेलिब्रेटिंग किस्वाहिली लैंग्वेज डे कैन बी एनलाइटिंग एंड एन्जॉयबल, तो ये आज मार्क किया जा रहा है. एंड इसके अलावा आप भी शायद आज कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी का बर्थडे है या किसी की शादी की सालगिरह है, तो अपने मैसेजेस समय से पहले हमें भेजना ना भूलें, क्योंकि आपको हम याद करेंगे. आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे या हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी जो है ये भी हम विश करने वाले हैं आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. 7:30 बजे के बाद ये रहेगा इस प्रोग्राम में. फिलहाल अभी वक्त है आज का पहला सवाल जो है ये हम आपके लिए लेकर आए. एंड लेट्स सी कि क्या आज आप में से कोई है जो सही सही पहचान सकता है या फिर सही जवाब जो है ये हमें दे सकता है हमारे सवाल का या नहीं. और इस टाइम पर कुछ अलग बॉलीवुड जो क्विज़ है ये हम आपके साथ खेलते हैं, और आज भी ऐसा ही कुछ है आपके लिए. हम आपको बताएंगे कि एक एक्टर और कौन सा किरदार उन्होंने निभाया था, कौन सा रोल उन्होंने प्ले किया था, और आपको फिल्म का नाम जो है ये हमें बताना होगा. और आज का जो हमारा इक्वेशन है जो हम आपको बता रहे हैं, दीपिका पादुकोण एज एन आर्किटेक्ट, दीपिका पादुकोण एज एन आर्किटेक्ट कौन सी फिल्म थी? बी एफ अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमारे पास भेजें। देखेंगे आज सुबह सुबह आप में से कितने लोग हैं जो बिल्कुल सही जवाब इसका हमें दे पाते हैं। दीपिका पादुकोण एज एन आर्किटेक्ट कौन सी ये फिल्म थी, तो अपना जवाब हमारे पास आप भेज सकते हैं। और इसके अलावा मौसम को लेकर काफ़ी खबरें जो हैं ये आ रही हैं, कहा जा रहा है कि काफ़ी गंभीर बारिश जो है ओटागो में हुई है, जिसके चलते बाढ़ इवैक्यूएशंस और साथ में डेनिडन से ओमरू के बीच रास्ते जो है ये बंद किए गए हैं। स्टॉर्म जो है ये अब नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है और हैवी रेड हैवी रेन वार्निंग जो है नॉर्थ कैंटरबरी मार्लबोरो के लिए लागू की गई है। द रेन इज ऑल्सो रीचिंग इन टू द नॉर्थ आइलैंड, खासतौर पर वेलिंगटन पर इसका असर जो है ये अब पड़ना शुरू हो गया है। याद रहे ये खबर आ रही है कि एक शख्स जो है ट्रैप्ड इन फ्लड वाटर्स आज सुबह वायाऊ के नजदीक, और फायर इमरजेंसी साउथ आइलैंड शिफ्ट मैनेजर एलेक्स नॉरिस का कहना है कि क्रूज जो है हैवी मशीनरी के आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओवरनाइट उनको दो कॉल आउट्स आए थे, हालांकि उन्हें एक्सपेक्टेशन थी कि और लोग जो हैं ये कॉल करेंगे। कैकोरा के जो लोग हैं उनसे मांग की गई है कि आज बिना ज़रूरत के वो सफ़र ना करें। फेसबुक पर कैकोरा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जो है अभी भी हैवी रेड हैवी रेन मॉर्निंग के नीचे है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सावधान जो है ये रहना चाहिए। तो आज मौसम पर और भी नवीनतम जानकारियाँ जो हैं ये हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी तक तो दो ही लोगों ने अटेम्प्ट किया है आज का जो हमारा इक्वेशन है ये सॉल्व करने के लिए। दीपिका पादुकोण एज एन आर्किटेक्ट कौन सी ये फिल्म थी, बीएफ अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमारे पास भेज सकते हैं।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना,
2: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: Minute Traffic.
1: Step up and give blood.
2: A cloudy and windy day and very wet too, with rain most of the day. 15 hour high into the city. Northern Motorway, 22 minutes in from Constellation Drive. Not too bad. We are slow all the way from Greville, but heavy at Constellation. Northwestern, 25 minutes in from Massey. Slow there to Te Aritu and close to the city. Southern, half an hour in from Manukau. We're slow. Papakura on and off to Mount Wellington. Southwestern looking okay.
1: Give blood, save lives. Book now at nzblood.co.nz.
3: डिब्बा खुल गया
4: भरत भाई टिफिन खुल गयो छे
5: संजना का डिब्बा खुल गया
6: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा फिर यही तो होगा
5: डिब्बा खुल गया
6: हल्दी मिर्ची गरम मसाला कशिश मसाले अच्छे वाले बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
7: हाय बॉयज एक कहानी सुनाती हूँ एक राक्षस था घमंड उसका शस्त्र था वो धोखे से राज करता था
8: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है
9: बट शुड वी कॉल हर सर
10: इसकी माँ का नाम जानकी था हम इसे सीता बुलाएंगे
7: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई
11: YRF Spy Universe presents
12: Alpha
11: now showing in cinemas distribution partner Forum Films rating TPC
7: शुरू करो अग्नि परीक्षा
13: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
14: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
14: Breakfast Catch-Up. Throwback.
16: Throwback का वक्त अब हो चुका है बस 12 मिनटों बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं इस प्रोग्राम में और जो सवाल है आज का हमारा पहला अभी तक 4 लोगों ने ही अटेम्प्ट किया है मुझे नहीं लगा था कि इतना डिफिकल्ट होगा लेकिन अभी तक तो 4 ही लोगों ने कोशिश की है हरमिलाप है रोनल हैं नीलेशनी और नितिका थैंक यू सो मच आपके अटेम्प्ट के लिए तो हमने जो इक्वेशन आज आपको दिया है दीपिका पादुकोण एज एन आर्किटेक्ट कौन सी ये फिल्म थी बी एफ अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमारे पास भेजें कुछ देर बाद या 7 बजे वाले न्यूज़ इन स्पोर्ट्स अपडेट के बाद हम देखेंगे कि सही जवाब क्या है और क्या आप में से किसी ने इसका सही जवाब जो है ये हमारे पास भेजा है या नहीं बस 12 मिनटों बाद फीफा वर्ल्ड कप का जो बहुत ही ज़बरदस्त मैच कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ फाइनल पोर्चुगल वर्सेस स्पेन ये खेला जाएगा इस पर अपडेट्स जो है ये हम आपकी खातिर हम पर ज़रूर लेकर आएंगे और साथ ही में 7:30 बजे न्यूज़ हेडलाइंस भी होंगे उधर जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स डिवीज़न है इसने फैसला किया है कि वो अपने 20% वर्कफोर्स को ले ऑफ करेगा एंड 20% ऑफ इट्स वर्कफोर्स इट इक्वेट्स टू अराउंड 3,200 एम्प्लॉइज यानी 3,200 नौकरियां यहां जा सकती हैं रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश जो है ये की जा रही है इनमें से मोर देन 1,600 रोल्स जो है इनको इमीडिएटली ख़त्म कर दिया जाएगा विद द रिमेनिंग जॉब्स कट प्लान ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट फिस्कल ईयर एम्प्लॉइज को एक्स इन अ नोट टू एम्प्लॉइज शेयर्ड ऑन एक्स जो CEO हैं एक्सबॉक्स की आशा शर्मा उन्होंने कहा कि ये मूव इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्ट्रक्चर इन एक्सबॉक्स हिस्ट्री उन्होंने एक्नॉलेज किया है द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉइज आई नो दिस इज पेनफुल दिस चेंजेस विल डायरेक्टली अफेक्ट पीपल हु हैव पोर्ड देयर क्रिएटिविटी इनटू बिल्डिंग एक्सबॉक्स और उन्होंने कहा कि आज का जो फैसला है डज नॉट रिफ्लेक्ट देयर टैलेंट और डेडिकेशन उन्होंने जो रीज़न है ये भी बताया है कि एक्सबॉक्स का जो बिजनेस है हैड स्ट्रगल्ड डिस्पाइट ईयर्स ऑफ एक्सपेंशन आवर बिजनेस टुडे इज़ नॉट हेल्थी we are operating at margins that are 3 to 10 times lower than comparable platforms or publishing businesses, jiski wajah se unko ye kadam uthana pad raha hai. So, Xbox jo hai, is going to lay off 3,200 employees. और इसके बारे में कुछ और जानकारियां मिलती हैं तो ये हम आपके लिए इस प्रोग्राम में ज़रूर लेकर आएंगे. फिलहाल जब तक आज का हमारा अगला थ्रॉबैक आप एंजॉय कर रहे हैं, तब तक का वक्त है आपके पास बी एफ अपना जवाब और अपना नाम ये 5599 पर हमारे पास आप भेजें और बताएं कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें दीपिका पादुकोण ने एक आर्किटेक्ट का रोल प्ले किया था. बी एफ आंसर और नाम ये आपको हमें भेजना है.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 10.5 डिग्रीज टेम्परेचर ऑकलैंड में अभी आप फील कर रहे हैं। आज का हाई 14, ओवरनाइट कम से कम 9 डिग्रीज। आज बारिश होगी, कभी कभार कुछ गंभीर बारिश भी हो सकती है। सनसेट शाम 5:19 पर होगा।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Welcome to Morning Madness on Hum Playing Bollywood's Biggest Hits 104.2 FM और Rover पर आप हमारा साथ दे रहे हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। आपको हम कहना चाहेंगे इस घंटे बस थोड़ी देर बाद आज के आपके राशि वाइब्स जो है ये हम लेकर आएंगे, आपको बताएंगे आज का दिन आपका कैसा गुजरने वाला है। इसके अलावा 7:30 न्यूज हेडलाइंस और साथ में फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत जो मैच अब शुरू हो रहा है इस पर भी बारी बारी से जानकारियां जो है ये हम पर आपको हम देते रहेंगे। सो स्टे विद अस फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। इतनी सारी चीज़ें जो है ये दुनिया में होती रहती हैं। यू नो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर इतने कमाल के अभिनेता एंड बाय मिड 1980s यू नो ये हॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट बैंकेबल स्टार्स थे। टर्मिनेटर, प्रेडेटर और ऐसे कई फिल्मों में इन्होंने काम किया था, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे कि उन्हें कोई एक कॉमिक रोल जो है ये दे। जिस भी स्टूडियो को वो अप्रोच करते सब जगह से उनको मना कर दिया जाता एंड कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो नहीं कर सकते, यू आर एन एक्शन हीरो। इतने वो थक गए, हार गए कि उन्होंने ऑफर किया कि वो एक कॉमेडी फिल्म में बिल्कुल फ्री में काम करेंगे। अपनी सैलरी जो है ये इन्होंने वेव कर दी और डैनी डेविटो के साथ और आइवन रिटमैन के साथ उन्होंने काम किया मूवी में इन एक्सचेंज फॉर अ कलेक्टिव 40% ऑफ द ग्रॉस। और ट्विंस जो है ये बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी फिल्म साबित हुई एंड अर्न्ड अराउंड $216 million एट द बॉक्स ऑफिस, जिसकी वजह से आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को ओवर $40 million पैसे जो है ये मिले थे, मोर देन एनी अदर मूवी ही एवर अपीयर्ड इन। सो जस्ट इमेजिन, कभी कभी कुछ चीज़ें जो है इट डज वर्क आउट। जो गट फीलिंग थी उनकी कि भाई मुझे ये भी करना है, मुझे कॉमेडी करनी है, और कोई उनको मौका नहीं दे रहा था, उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं मैं खुद ही करूँगा, फ्री करूँगा, बस 40% ऑफ द ग्रॉस जो है ये आप मुझे दे दो, सिंपल इज दैट। And he earned over $40 million. खैर, जो सवाल हमने पिछले घंटे आपसे पूछा था, दीपिका पादुकोण एज एन आर्किटेक्ट, उसके बाद दो और लोगों ने अटेम्प्ट किया नितिका के बाद, क्रिश और अली। थैंक यू सो मच आपके आंसर्स के लिए। एंड द करेक्ट आंसर वॉज पीकू।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: प्राणप्रिय

0: much, eh? Huh?
1: Buddy.
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
3: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
2: Rashi Vibes.
4: कैसा रहेगा आज का आपका दिन? सबसे पहले मेष यानी एरिस, आज कोई लीगल प्रॉब्लम थी तो ये खत्म होगी। किसकी संगति करते हैं इसका ख्याल रखें। फैमिली में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो सकता है और बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। वृष यानी टॉरस, आज व्हीकल या मशीन्स वगैरह यूज करते समय केयरफुल रहें, अपने गुस्से पर कंट्रोल बनाए रखें, किसी के साथ झगड़ा झंझट में ना पड़े और उतावली में आकर, एक्साइटमेंट में आकर कोई काम ना करें। और साथ ही में सोशल वर्क या रिलीजियस वर्क में भी आज आपका मन लगेगा। मिथुन यानी जेमिनी, आज झगड़ा झंझट से प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, बिजनेस बढ़िया चलेगा, कुछ नए प्रपोजल्स आपको मिलेंगे जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। सही समय पर सही फैसला आपको काफी अच्छा फायदा आज दिला सकता है। कर्क यानी कैंसर, घर बाहर कुछ चीजों को लेकर आप थोड़े टेंस्ड रहेंगे लेकिन प्रॉपर्टी के काम से फायदा होगा। और कोई भी रिलेशनशिप है, खासतौर पर इमोशनल रिलेशनशिप्स में डिसीजन लेते समय जल्दबाजी ना करें और आज आपके बॉसेस शायद आपके काम से उतने इंप्रेस्ड ना रहें। सिंह यानी लियो, ट्रेवल एंटरटेनिंग होगा, खाना बढ़िया एंजॉय करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा होगा, पैसे भी आज आपको मिल सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका अच्छा खासा रहेगा। कन्या यानी विगो, कुछ ज़्यादा दौड़ धूप करनी पड़ेगी और पेशेंस के साथ आज काम करना ज़रूरी होगा क्योंकि काम का बोझ जो है ये काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को और लोगों के साथ बांटें। फाइनेंशियली आज का दिन उतना अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। तुला यानी लिब्रा, आज आपकी कोशिशें जो हैं ये सक्सेसफुल होंगी और आपके काम को प्रेज किया जाएगा, पैसे काफ़ी आपको मिल सकते हैं, खुशियां होंगी और बिजनेस जो है काफ़ी तेज़ी से आगे

0: बढ़ेगा और समझदारी से डिसीशंस लेने पर आपको फायदा हो सकता है। उसके बाद वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, लेन देन करते समय सावधान रहें। घर पर कोई मेहमान आ सकते हैं आज। उसके अलावा पैसे मिलेंगे आपको और आपका मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। धनु यानी सेजिटेरियस, कोई बड़ा काम होने से आप काफी खुश रहेंगे, बिजनेस ट्रेवल अच्छा जाएगा और आज अपने हेल्थ का भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मकर यानी कैप्रिकॉन, आज आपके लिए कहा जा रहा है कोई मुसीबत आ सकती है, इसकी वजह से पैसे भी आपके खर्च होंगे। बिना जरूरत कोई रिस्क आज ना ही ले तो अच्छा होगा। और बिजनेस ट्रेवल्स को लेकर दोस्तों से आज कुछ मदद आपको मिल सकती है। कुंभ यानी एक्वेरियस, आज ट्रेवल अच्छा जाएगा, पैसे मिलेंगे, घर के बारे में आप थोड़े वरिड हो सकते हैं। क्रिएटिव कामों में आज बहुत अच्छा रिजल्ट्स आप हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद मीन यानी पाइसेस, आज अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, कुछ नए रिलेशनशिप आज आप बनाएंगे जिनका आगे चलकर आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। पार्टनरशिप में शुरू किया गया कोई भी काम जो है ये आज आपके फायदे के अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सकता है। प्रॉपर्टी जो है ये खरीदने का मन आज आप बना सकते हैं। पति पत्नी के बीच आज संबंध बहुत मजबूत होगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास जो है ये भी बढ़ेगा और कामकाज को लेकर तेजी जो है ये बनी रहेगी। तो ये रहे आज के आपके राशि वाइब्स ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। अभी 19 मिनट हो रहे हैं, अब 7 बजकर थोड़ी देर बाद सेलिब्रिटी अलार्म भी हम खेलेंगे।
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स,
3: 80s के रेट्रो गाने।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: हम पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
2: Danny didn't think he needed a DVS system.
3: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
2: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
3: Nah, only one room. It was just too noisy.
2: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz.
7: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
8: Here for your long weekend. The roadies, the snack stops, and are we there yet? Ice cream will fix that. Whatever you're up to this long weekend, we're here for that too. Foursquare, what'll it be today?
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
11: Celebrity Alarm. Hit it.
12: 22 minutes after 7 o'clock, celebrity alarm ka time ab ho chuka hai aur ab to aapko bahut achhi tarah se pata chal chuka hai ki ye khel hum kaise khelte hain, aapko kya karna hota hai. Aur agar nahi pata hai to bata dete hain aapko. Awaaz hum aapko sunayenge, and all you've got to do is identify the voice. Aur uske baad aap apna jawab jo hai ye hamare paas 5599 पर भेज सकते हैं. बी एफ आंसर और नाम. तो सबसे पहले आज की आवाज जो है ये आप सुन लें.
13: गुड मॉर्निंग.
14: मॉर्निंग.
15: गुड मॉर्निंग.
13: ओह एंड इन केस आई डोंट सी यू, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट.
12: तो ये कौन हो सकते हैं जो मेल कैरेक्टर हैं, उनका जो नाम है ये हमें चाहिए. अच्छी तरह से आवाज एक बार फिर आप सुन लें.
13: Good morning.
14: Morning.
15: Good morning.
13: Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.
12: तो अब कोशिश करें और बताएं कि ये आवाज किन की है, और कुछ देर बाद देखेंगे कि क्या आप में से कोई है जो इनकी आवाज सही सही पहचान सकता है या नहीं. सबसे पहले बी एफ लिखें, उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम.
16: Bollywood's most wanted.
17: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आऊं.
18: मैं लाऊं अपना ए गेम.
16: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: headlines.
1: आज सुबह के मुख्य समाचारों में ट्रेड मिनिस्टर टॉड मैक्ले के मुताबिक इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने से पहले ही उसका इफेक्ट नजर आ रहा है और इसकी वजह से न्यूजीलैंड का एप्पल एक्सपोर्ट 63% बढ़ गया है और टूरिज्म भी नए हाइट्स पर पहुंच गया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऑकलैंड आने से पहले नेशनल पार्टी ने वादा किया है कि अगर वो री इलेक्ट होते हैं तो न्यूजीलैंड के नेक्स्ट बिलियन डॉलर्स या नेक्स्ट बिलियन कस्टमर्स के लिए 7 नए मार्केट्स के साथ ट्रेड टॉक्स शुरू करेंगे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन इस डील को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। उनके कॉल्यूशन पार्टनर न्यूजीलैंड फर्स्ट के विंस्टन पीटर्स इस समझौते और इमिग्रेशन का विरोध कर रहे हैं, जिस वजह से वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस हिस्टोरिक विजिट में शामिल नहीं होंगे। चाइना के साउथ पैसिफिक में लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट पर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स ने चिंता जताई है और कहा है कि ये रीजनल स्टेबिलिटी और शांति के खिलाफ है। एक्सपर्ट अय्याय गिलेस्पी के मुताबिक ये टेस्ट इलीगल नहीं है, पर पैसिफिक रीजन को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है और ये टाइमिंग तब आई है जब ऑस्ट्रेलिया और फिजी ने नया सिक्योरिटी अलायंस साइन किया है। स्टारबोर्ड मैरीटाइम के एनालिस्ट मार्क डगलस ने बताया कि चाइना के सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल्स इस टेस्ट के लिए पहले से तैयार थे और फिजी के पास एक तीसरे चाइनीज शिप की मौजूदगी ने सबको हैरान किया है। फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत आज का पहला राउंड ऑफ 16 का मैच पोर्चुगल और स्पेन के बीच खेला जा रहा है। प्रथम हिस्से में आधे घंटे का खेल पूरा हो चुका है और अभी भी दोनों टीमें नील ओल से बराबर हैं। इसके बाद आज दूसरा राउंड ऑफ 16 मैच दिन में 12 बजे यूएसए और बेल्जियम के बीच खेला जाएगा। इन मैचेस पर और भी अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आते रहेंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today, Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living. Hum. Accurate traffic.
3: Flixiven, you're skipping a bag.
4: A high of 15, quite a wet and windy one all day today. Coming into the city, most motorways looking okay. The southern, the heaviest, 42 minutes Manukau to town, slow most of the way in from Papakura right to the city. Northwestern, fairly good, 26 in from Massey, we're just patchy to the causeway, then slow even heavy from Point Chief to town. Northern, 25 in from Constellation, heavy there, slow all the way from Greville.
3: Visit flixiven.co.nz for stockists, TCs and collection areas.
5: Coffee, the usual?
6: How about the unusual?
7: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
8: If you're looking for premium comfort, head into Bedzaras. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech. Available exclusively in Bedzaras, Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
9: TriVision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
10: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
9: Saturday, 18th July, 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
10: Mashallah, bahut acha, very nice.
11: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88-600.
12: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस. Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
2: The beat of Bollywood.
13: World's best, hamari good branch nahi hai.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Birthday greetings.
14: Iska birthday bhai?
15: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
14: Happy birthday to you.
1: मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आज का दिन आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो, जहां कहीं पर भी आज अपनी सालगिरह आप मना रहे हैं. और सबसे पहले तो आज रविनेश कुमार, आपको ये दिन अनेकों बार शुभ और मुबारक हो. और आज अपनी सालगिरह आप मना रहे हैं, पत्नी हैं आपकी अलेशनी, और साथ में जितने भी परिवार वाले हैं दूर और करीब से, सभी आज आपको शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं. ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं. हम सभी की ओर से भी ये दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. सुजन लता, अ वेरी हैप्पी बर्थडे आपको. खुशी के इस मौके पर आज आपके जितने भी परिवार वाले हैं शुभकामनाएँ आपको दे रहे हैं. कुमार हैं, साथ में क्रिश हैं, कुणाल इन्होंने आज आपको याद किया है, विमला प्रकाश जी हैं, कमला दत्त हैं, साथ में शीतू हैं, और इसके अलावा स्नेहलाल हैं, और राजीव, रंजनी और अंजनी, सभी ने आज आपको याद किया है और जन्मदिन के मौके पर आपको शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं. तो आपको सालगिरह अनेकों बार शुभ और मुबारक हो. मॉर्निंग मैडनेस में अभी 20 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, और अभी वक्त है देखें हमारे सेलिब्रिटी अलार्म का आज क्या हाल हुआ है. चलो हम एक क्लू आपको या दे सकते हैं कि ये एक एक्टर हैं, हॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं. ये एक क्लू हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि कई गलत आंसर्स जो हैं ये आपने हमारे पास भेजे हैं. तो आखिरी बार आवाज़ हम आपको सुना रहे हैं. इन्होंने कुछ बहुत आइकॉनिक हॉलीवुड मूवीज़ में काम किया है, और उन्हीं में से एक ये डायलॉग का हिस्सा जो है ये हमने आपको सुनाया है, और एक बार फिर आखिरी बार आपको सुना रहे हैं. सो लिसन वेरी केयरफुली.
16: गुड मॉर्निंग.
17: मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग.
16: ओह, एंड इन केस आई डोंट सी यू, Good afternoon, good evening, and good night.
1: तो कौन है ये एक्टर, इनका नाम हमें चाहिए आज सेलिब्रिटी अलार्म में. सबसे पहले आपको लिखना है BF, उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम, और उसे 5599 पर हमारे पास भेज देना है. जब तक अगला गाना आप सुनेंगे तब तक का ही टाइम होगा आपके पास. अभी तक अगर देखे तो 1400 विधि आपने अपना जवाब भेजा है, बॉबी हैं, साथ में मेलकम हैं, सोनल हैं, आपने भी अपना जवाब भेजा है, 0481 आपने भी जवाब भेजा है, प्रदीप थैंक यू सो मच आपके भी आंसर के लिए, आपका जवाब तो गलत हो गया. इसके अलावा 3631 आपने भी गलत जवाब हमारे पास भेजा है, और इसके अलावा साथ में सिम आपने भी गलत जवाब हमारे पास भेजा है. कई और लोगों ने कोशिश जो है ये की है. तो बताएं ये आवाज़ किन की हो सकती है, और साथ ही में हमारे साथ शामिल रहें, क्योंकि आज एक बार फिर डबल पास जीतने का मौका हम आपको देंगे द ग्रेट कॉमेडी नाइट के लिए, जो होने जा रहा है 18th of July को विक्ट्री कॉन्वेंशन सेंटर में. ट्राइविजन इवेंट्स की ये पेशकश, कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर लाइव ऑन स्टेज आने वाले हैं, और इसके लिए टिकट्स बुक माई इवेंट्स विजिट करते हुए आप ले सकते हैं. याद रहे www.bookmyevent.co.nz आप विजिट करें, और लिमिटेड नंबर ऑफ जो टिकट्स है इसमें से आप अपने लिए टिकट्स ले सकते हैं. सो रिमेंबर, आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो कुछ देर बाद एक डबल पास जीतने का मौका हम आपको जरूर देंगे.

0: toast, butter, jam, or a special chai.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: Accurate traffic.
4: IKEA sale is on now.
5: Rain this morning, easing later on, a high of 15 today, a little windy as well. Into the city, northern at flying fairly well, 27 minutes in from Constellation Drive. We're just slow all the way from Greville. Northwestern, 28 minutes in from Massey, fine to the causeway, slow from there, Heavy Point Chief to St. Luke's. Southern, 44 minutes in from Manukau, slow from Papakura right to the city, a few heavier patches. Southwestern, pretty decent.
4: Get up to 70% off selected products at ikea.co.nz today.
6: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
8: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।
9: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
10: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on
1: 0927-88-600. Zabardast hits. Playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with

दस मिनट रह गए हैं अभी आठ बजने में, आठ पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में। फिलहाल राजेश मनुरेवा से, साथ में रोहन, आपने भी अपना जो जवाब हमारे पास भेजा है और 3500 आपका भी आंसर हमारे पास आया है। थैंक यू सो मच आप सभी के आंसर्स की खातिर आज के सेलिब्रिटी अलार्म के लिए। और जो सेलिब्रिटी हैं वो थे जिम कैरी। जिम कैरी वॉज द करेक्ट आंसर जिसकी हमें तलाश थी, और जितने भी लोगों ने सही जवाब भेजा है बहुत बहुत शुक्रिया आपके आंसर्स के लिए। और खबरें तमाम आ रही हैं, मौसम पर भी लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह जो है ये हम आपको इस प्रोग्राम में देते रहेंगे, बस हमारे साथ आपको शामिल रहना है। और हम और जो वेदर अपडेट्स हैं इस की ओर अगर देखें तो कई चीज़ें जो हैं ये फ़िलहाल कही जा रही हैं और कई रास्ते जो है ये बंद किए गए हैं, खासतौर पर साउथ आइलैंड में। और NZTA को एक्सपेक्टेशन है कि कुछ और असर जो है बाद में देखा जा सकेगा। स्टेट हाईवे 6 पटरुआ से हरिहारी ये बंद है, हास्ट से फोक्स ग्लेशियर, साथ में फेलाय से लेक पुकाकी के बीच भी स्टेट हाईवे 8 जो है इसे बंद कर दिया गया है। और स्टेट हाईवे 1 7 माइल रोड और पुखेरी के बीच फ्लडिंग की वजह से इस रास्ते को फिलहाल बंद किया गया है। और हुरनुई में एक गाड़ी में एक शख्स जो है ये फंस गया था और फायर एंड एमरजेंसी द्वारा उसे आज सुबह 3 बजे के वक्त बचाया गया है। तो लेटेस्ट अपडेट्स वेदर से रिलेटेड, खासतौर पर जो खबरें आ रही हैं ये भी हम आपको बारी बारी से इस प्रोग्राम में देते रहेंगे।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 10.2 डिग्रीज टेम्परेचर अभी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं आज का हाई 15, ओवरनाइट कम से कम 8 डिग्रीज, बारिश होगी, कभी कभार गंभीर बारिश भी हो सकती है। फंगपुरुवा के नॉर्थ में हेल की पॉसिबिलिटी भी है। आज सनसेट शाम 5:19 पर होगा।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: ट्रेन तो अभी दो लोग कर रहे हैं दुनिया भर में। एक का नाम है जोय चेस्टनट और दूसरी जो है इनका नाम है मिकी सूडो। और ये दोनों जो हैं इनका जो रिकॉर्ड आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि भाई जो रिकॉर्ड इन्होंने अचीव किया है कैसे कर लिया है। ये बन चुके हैं अनडिस्प्यूटेड किंग्स ऑफ कॉम्पिटिटिव ईटिंग। और जो अभी हाल ही में नेथन्स फेमस हॉट डॉग ईटिंग कॉन्टेस्ट हुआ था 4 जुलाई को, उसमें इन्होंने जीता। जोई चेस्टनट जो हैं इन्होंने 10 मिनट्स में 66 हॉट डॉग्स जो हैं ये खाए, 66। और मेंस टाइटल जो है ये उन्होंने अपने नाम किया। दिस मार्क्स इज 18th विक्ट्री एट द इवेंट। और इनको जो फेमस मस्टर येलो बेल्ट मिला है और $10,000 कैश प्राइस। और चेस्टनट जो है इजिली बीट द सेकंड प्लेस फिनिशर पैट्रिक बेटोलेटी जिन्होंने 51 खाए थे। और 2021 में उन्होंने 76 हॉट डॉग्स जो है ये खाए थे। चेस्टनट ने एडमिट किया कि बहुत गर्मी पड़ने की वजह से वो थोड़ा स्लो हो गए थे और ही हैड टू स्टे काम एंड पेस हिमसेल्फ, नॉट पुशिंग हिम वेरी हार्ड, ताकि वो जो रिकॉर्ड है या फिर जो जीत है ये हासिल कर सके। वुमेन साइड अगर देखें मिकी सूडो जो है इन्होंने 38.75 हॉट डॉग्स जो है ये खाए और 12th करियर विक्ट्री जो है ये रिकॉर्ड किया है इनके पास। सूडो जो है इनके पास वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 51 हॉट डॉग्स जो है ये है, एक उन्होंने 51 हॉट डॉग्स जो है ये खाए थे। और इस जीत के बाद सूडो जो है जॉइन द फैंस टू चीयर फॉर हर हस्बैंड जो एक कॉम्पिटिटिव ईटर हैं। और एक बार उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था, 3 मिनट में उनके पति ने 50 बॉइल्ड एग्स जो है ये खाए थे इन 3 मिनट्स। आई एम जस्ट थिंकिंग कैसे ये कर सकते हैं, 50 उबले हुए अंडे 3 मिनट में कोई कैसे खा सकता है। खैर जो भी हो और भी डिटेल्स हम आपको देते रहेंगे थोड़ी देर बाद। आज का हमारा व्हाट्स योर टेक का टॉपिक भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट कि आपकी क्या राय है इस बारे में।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है बंदा हो तो जिंदा हो।

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
1: क्यों, क्या हुआ?
0: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424.
3: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
4: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
5: Sorry about that.
4: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
6: The King Living Winter Sale ends soon. Save up to 50% on Australian design award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale ends soon. Shop online or visit a King Living showroom today.
7: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers. Buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
8: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
8: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
10: What's your take?
11: What's your take? वक्त अब हो चुका है on the breakfast show with Vijay and Pooja on हम playing Bollywood's biggest hits. अभी आई थिंक दो दिन पहले न्यूजीलैंड फेस्ट पार्टी ने ये अनाउंस किया कि वो कैंपेन करेगी कि इलेक्ट्रल लॉ जो है इसे चेंज किया जाए ताकि न्यूजीलैंड में मत देने का अधिकार सिर्फ नागरिकों के पास यानी सिटीजन्स के पास हो. उनका कहना है कि करंटली एनी पर्मानेंट रेसिडेंट हु हैज गोन थ्रू द नॉर्मल प्रोसेस after just 2 years in living, 2 years living in New Zealand can vote. In addition, anyone who is here on certain visas that have no ex-

0: expiry date are technically eligible to vote after just 1 year living in New Zealand. They can vote on who the government is. They can vote on who the local council is. They can even vote in referendums that would fundamentally change the social fabric of our society. And New Zealand First ka manna hai ki voting ka adhikar jo hai उन लोगों को ही मिलना चाहिए जिन्होंने इस देश के प्रति शपथ जो है ये ली है, जिन्होंने अपना कमिटमेंट जो है ये दिखाया है टुवर्ड्स न्यूजीलैंड। तो आज हमने चलो सोचा कि आपसे पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड में वोट करने का अधिकार क्या सिर्फ सिटीजन्स के पास होना चाहिए या वर्तमान में जो व्यवस्था है उसी को फॉलो करना चाहिए। तो 0800 हम बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है आपको, जो भी आप फील करते हैं वही आपको बताना है कि क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड में वोट करने का अधिकार सिर्फ सिटीजन्स के पास होना चाहिए या फिर अभी जिस व्यवस्था को फॉलो किया जा रहा है, अभी जो सिस्टम है इन प्लेस वो ठीक है। तो ये आज आप हमें बता सकते हैं। लाइन्स अब हम आपके लिए खोल चुके हैं और अब देखना है कि आप में से ज़्यादा लोग क्या राय रखते हैं इसके बारे में, और अपनी जो राय है वो आप हमें बता सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें जो हैं ये अभी तक हुई हैं, और इसको लेकर आपने क्या सोचा अभी तक, या जब आपने ये खबर सुनी क्या आया आपके मन में, तो वो आज आपको बताने का मौका जो है ये हम दे रहे हैं। और नंबर हमारा याद रखें 0800 हम 0800 004866, इस नंबर पर आपको कॉल करना होगा। जो अनाउंसमेंट या फिर न्यूजीलैंड फेस्ट का जो कहना है कि अगर आपने शपथ नहीं ली है टू न्यूजीलैंड तो आपको ये नहीं मिलना चाहिए, अधिकार नहीं मिलना चाहिए। गुड मॉर्निंग एफाज।
1: गुड मॉर्निंग, कैसे आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
1: मैं भी ठीक हूँ। वैसे है क्वाइट कंफ्यूजिंग थिंग, बट वैसे अगर हम आप इतने साल से इस कंट्री में रह रहे हैं, तो जैसे परमानेंट रेसिडेंट है तो उसको भी ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रीट किया जाता है एज अ सिटीजन। तो मेरे हिसाब से वो सही है कि अगर आप उनको वो बाकी सारी चीजें दे रहे हो तो फिर एक हक उनसे क्यों छीना जाए। बट लॉजिकली अगर आप देखो तो जैसे कोई भी कंट्री है उसमें सिर्फ सिटीजन का ही अधिकार होता है उस कंट्री को वोट करने का।
0: ओके,
1: तो बेसिकली जैसे हम ईस्ट हो जाते हैं अगर काइंड ऑफ सिटीजन काइंड ऑफ थिंग नो, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से वो बात सही भी है कई हद तक।
0: तो
1: बट अगर आप या तो फिर आप उनको पूरा अधिकार मत दो या तो फिर आप उनसे एक चीज मत छीनो।
0: अच्छा, तो आप सोचते हैं
1: दैट वुड आई से।
0: ओके, इंटरेस्टिंग।
1: हमको बाकी सारे राइट्स तो मिल ही रहे ना, अगर आप परमानेंट रेसिडेंस को बाकी सारे राइट्स दे रहे हो और अगर सिर्फ एक राइट नहीं दे रहे हो सिर्फ पासपोर्ट के वजह से, बट आप उनको चॉइस भी दे रहे हो ना, इफ दे कैन टेक द पासपोर्ट और दे कैन लिव इन न्यूजीलैंड फॉर एवर विदाउट गेटिंग द सिटीजनशिप, बट दे आर आई मीन बट उनको आप जब सारी चीजें दे रहे हो तो वो भी दे दो।
0: ओके, इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच एफाज आपके कॉल के लिए। आओ 800 00 हम 800 00 4866, ये हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय जो है ये शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं व्हाट्स योर टेक कि क्या न्यूजीलैंड में वोट करने का अधिकार सिर्फ सिटीजन्स के पास होना चाहिए या जो करंट सिस्टम इन प्लेस है ये आपको ठीक लगता है। यही बस आपको बताना है, और अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट भी हमें कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो।
2: हाय, गुड मॉर्निंग, स्नेहिया
0: जी। मैम,
2: मेरे को लगता है पहले वाली ठीक है, लेकिन उसमें से एक चीज नहीं है, जो लोग यहाँ पे बिना रेसिडेंस के काम करते टैक्स देते, जो तुम टैक्स देता व्हाई कांट यू वोट।
0: ओके,
2: या
0: दैट्स इंटरेस्टिंग, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। तो आप कह रही हैं कि अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो वोट क्यों नहीं कर सकते? भाई, ये भी ख्याल रखना होगा कि आप टैक्स भरते हैं क्योंकि आप इस देश के सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी चीज़ों को यू नो कहीं पर भी आप काम करते हैं तो टैक्स वगैरह तो भरना पड़ेगा। खैर जो भी हो, बट थैंक यू सो मच आपकी राय के लिए। 23 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर, बातें आज हो रही हैं कि क्या न्यूजीलैंड में वोटिंग का अधिकार सिर्फ सिटीजन्स के पास होना चाहिए और हमें जो करंट सिस्टम है वही फॉलो करना चाहिए। 5599 हमारा नंबर है जिस पर आप चाहें तो अपने टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं ये हमारे पास भेज सकते हैं। और न्यूजीलैंड फेस्ट ने ये भी कहा है अपने स्टेटमेंट में कि इफ़ यू हैवन्ट मेड दैट कमिटमेंट और स्वॉन दैट एलिजेंस, वी आर हैप्पी टू लेट यू लिव हियर परमानेंटली, बट व्हाई शुड यू गेट अ से इन हाउ दिस कंट्री इज रन और गवर्न्ड। न्यूजीलैंड फर्स्ट जो है उनका कहना है कि वो इस बात पर कैंपेन करेंगे कि न्यूजीलैंड का भविष्य कैसा होना चाहिए, इसका फैसला करने के लिए जो अधिकार है यहाँ के नागरिकों को ही मिलना चाहिए। वोटिंग इन जनरल इलेक्शंस शुड बी रिजर्व फॉर दोज हु हैव मेड द फुल लीगल एंड सिविक कमिटमेंट टू दिस कंट्री, ये एनजेड फेस्ट का कहना है। आपका क्या कहना है वो आप हमें बता सकते हैं 5599 पर या फिर कॉल भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो।
3: मॉर्निंग जी, कैसे हो?
0: मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो?
3: बढ़िया बढ़िया। ये आपने क्वेश्चन पूछा विंस्टन पीटर के पीछे, पर सर ये बताइए 40 ईयर्स पहले भी मैंने सुना है कल न्यूज में कि 40 ईयर्स पहले भी यही थॉट था उसका, वो डिनाइड किया हुआ था। ओके, एंड सेकेंडली एज अ permanent resident we are paying taxes, that's absolutely fine, we are using the services and we have to pay the tax, but mera ye rahi hai ki like hum yahan par hamara contribution economy mein hai, so we should be able to decide who can run the government, kyunki see I'm not being a racism, is it on air or what?
0: Yeah aap radio par hi hain.
3: Okay so mera itna hai ki hum जो माइग्रेंट्स है उसके ऊपर ये पूरा कंट्री चल रहा है ज्यादातर। ओके, बट यहाँ के लोकल लोग जो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक बिजनेस रन करता हूँ और मुझे भी पता है कि क्या हो रहा है, और वहां पर जाके जब वो नॉर्मल यहाँ के न्यूजीलैंडर्स है उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि उनको काम नहीं करना है। और वी हैव अ राइट टू डिसाइड हु कैन रन द कंट्री, सो दिस पॉवर्टी कैन गो अवे। वो मेरा एक राय है, बट I don't know what could be happening on this matter, but I would say this could be a legal right for the permanent resident of the New Zealand. They can vote and they can decide who can run the country.
0: Thank you, sir. Thank you so much. आपके भी कूल के लिए and sharing your take with us. तो अब वक्त इतना ही है हमारे पास कि आप अब टेक्स्ट कर सकें। ज़्यादा कुछ नहीं, आप इतना ही बता दो कि क्या आपको लगता है जो न्यूजीलैंड फेस्ट कह रही है कि दे आर गोइंग टू कैंपेन ऑन सिटीजन्स ओनली वोटिंग, क्या आप इसके फेवर में होंगे या फिर नहीं? अभी तक जितने भी लोगों ने कॉल किया सभी ने कहा कि नहीं भाई, वी मेक इक्वल कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी और अभी जो वर्तमान सिस्टम है इन प्लेस दैट्स गुड इनफ, और उनको भी ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि किस तरह से। और भाई दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई सिटीजन नहीं हो पाता है दे इज अ सर्टेन टाइम फ्रेम जिसका इंतज़ार करना पड़ता है बिफोर यू कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ न्यूजीलैंड, तो अगर कोई पर्मानेंट रेसिडेंस पर इंतज़ार कर रहा है और वो चाहता है कि वो जानता है कि वो आगे चलकर नागरिकता लेगा यहाँ का, तो उनको यहाँ की तो उनको मत देने का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो मिलना चाहिए। अलग अलग दलीलें हैं, जो भी आपकी राय है वो 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं।
4: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chubojao, papi ho. Chubojao.
2: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
3: मैच जो है ये फिलहाल खेला जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत और इसमें स्पेन का मुकाबला जो है पोर्चुगल के साथ हो रहा है. दूसरे हिस्से का खेल अब शुरू हो चुका है और अभी भी या दूसरे हिस्से में खेल जारी है. अभी भी दोनों टीमें नील ओल से बराबर है. इस मैच पर और भी अपडेट्स बारी बारी से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे. समय की ओर देखें, फिलहाल 25 मिनट रह गए हैं अब 9 बजने में.
4: Accurate traffic.
5: Celebrate Matariki at Auckland Art Gallery.
6: Cloudy, wet and windy most of the day, a high of 15 degrees. Pretty quick into the city on most motorways. Northwestern, fine to the causeway. Slow from there, a little heavy in patches. 25 minutes in from Massey, fairly quick. Northern, 27 from Constellation, not an issue. We just slow Greville to the bridge. Southern, 43 minutes in from Manukau. Slow from Papakura most of the way into the city. Southwestern, just a bit slow both ways.
5: Matariki at Auckland Art Gallery. Waiata, art, kapahaka, kai and more. 10th July.
7: Discover the magic at Go Bananas Chai Ke, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
8: Go Bananas Chai Ke is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
7: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Chai Ke Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
8: Available at selected branches. T's and C's apply.
9: Get the kids creating these school holidays with awesome arts and crafts deals at Warehouse Stationery. Like 25% off Crayola, 20% off Alma's slime kits and glue, plus loads more deals at Warehouse Stationery. Conditions apply.
10: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
11: Big Save is overloaded with stock. Our warehouses are full, our stores are packed, so we're having a massive stock liquidation sale. Today we're clearing out $20 million worth of furniture and beds with massive savings and deals store-wide. Save hundreds on sofas. Sofas from $7.99, queen beds from $8.99. Plus get huge clearance deals on bunks, dining suites, recliners and bedroom furniture. Everything must go, only at Big Save.
12: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
13: अच्छा,
12: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
13: मिसेस सिंह,
14: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
15: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु. कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz.
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
3: 22 मिनट रह गए हैं अभी 9 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और प्रोग्राम में कई अन्य जानकारियां जो हैं ये भी आपके लिए हम बारी बारी से लेकर आते रहते हैं. कुछ बहुत वियर्ड चीज़ें इस दुनिया में होती रहती हैं और इनकी जानकारियां जो है कि हम पर आपके लिए हम बारी बारी से लेकर आते रहते हैं. कुछ ट्रेंडिंग खबरें जो हैं ये होती हैं वो भी आपके लिए इस प्रोग्राम में होती हैं और साथ ही में जो ज़रूरी जानकारियां हैं ये भी हम आपको बारी बारी से हम पर देते रहते हैं. तो हमारे साथ ही आपको शामिल रहना है इस प्रोग्राम में. और जैसे हमने आपको पहले बताया, कई रास्ते जो है ये फ़िलहाल बंद किए गए हैं. वेदर से रिलेटेड कई अपडेट्स जो है ये भी आ रहे हैं. और कैकोरा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने कहा है कि वहाँ पर कुछ रास्ते अभी भी बंद हैं. रेड हैवी रेन वार्निंग जो है इशू किया गया है. और उसके अलावा लगभग 263 होम्स आर विदाउट पावर वेस्ट कोस्ट में, क्योंकि वहां पर काफ़ी तेज़ हवाएं जो हैं ये भी चल रही हैं, जिसकी वजह से वेस्ट पावर के नेटवर्क को काफ़ी क्षति पहुंची है। वेस्ट पावर का कहना है कि फोल्ड क्रूज इंजीनियर्स और उनके कंट्रोल रूम के जो टीम मेंबर्स हैं ये मिलकर अभी सिचुएशन जो है इसे इवेलुएट कर रहे हैं और अपडेट्स बाद में हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल थोड़ी देर बाद हम आपको मौका देने वाले हैं फॉर योर अपॉर्चुनिटी टू विन ए डबल पास, और ये डबल पास होगा द ग्रेट कॉमेडी नाइट के लिए जो होने जा रहा है 18th ऑफ जुलाई को विक्ट्री कॉन्वेंशन सेंटर में। ट्राई विजन इवेंट्स की ये पेशकश कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर एक साथ आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, एंड ओवर 1400 टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ टिकट्स बाकी रह गए हैं जो बुक माई इवेंट .co.nz विजिट करते हुए आप ले सकते हैं, एंड अभी थोड़ी ही देर में अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आपको क्या करना होगा, हमारे पास कॉल करना होगा और एक छोटा सा क्लीन एकदम फैमिली फ्रेंडली चुटकुला जो है ये सुनाना होगा लाइव ऑन एयर, और ऐसा आप करते हैं तो एक डबल पास जीत सकते हैं टू गो एंड वॉच कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव ऑन स्टेज। तो ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी ही देर में इन अबाउट 6-7 मिनट्स आपको मिलेगी, तब तक अपना चुटकुला आप तैयार कर लें और जैसे ही हम आपको बताएं आपको हमें कॉल करना होगा।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Traffic.
2: Mega toy sale on now at the warehouse.
3: Wet and a bit windy today, high of 15 degrees. Into the city at the moment, Northern Motorway fairly quick, just some slow patches from Constellation to the bridge, 23 minutes in from Constellation Drive. Northwestern Motorway, 23 minutes Massey to town, slow from Point Chev, little heavy at St. Luke's. Southern 37 Manukau to the CBD, slow from Otahuhu, heavy through Mount Wellington. Southwestern looking pretty fast both ways now.
2: Be in to win a $500 toy shop at the warehouse. T's and C's apply.
4: Fuel ke daam roz badh rahe hain. और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
5: Māori Mā, have you received a reminder email or text about your role for this year's election or not sure you're enrolled? Luckily, we still have time. If you're Māori and 18 or over, you get to choose Māori role or general role. There's no right or wrong, just right for you. The role you choose affects who you can vote for to represent you and your roe in Parliament. Find out more at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
6: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
7: Now's the time to book your next tour with House of Travel. Save $500 per couple on Globus small group tours to Japan, Vietnam, South Africa and more. See the very best of every destination without the stress. Talk to our team today only at House of Travel. T&Cs apply.
8: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
8: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
10: ट्रॉपिक का वक्त अब हो चुका है, जबकि 12 मिनट रह गए हैं अब 9 बजने में। और साथ ही में हमने कहा था कि अपॉर्चुनिटी हम आपको देंगे फॉर यू टू गेट ए डबल पास टू वॉच द ग्रेट कॉमेडी नाइट। और ट्राइविजन इवेंट्स की ये पेशकश, आपको ज़्यादा कुछ तो करना है नहीं, बस एक छोटा सा चुटकुला जो है ये हमें सुनाना है। और जैसे ही आप ये करेंगे आप एक डबल पास जो है ये जीत सकते हैं। तो लाइंस अब हम आपके लिए खोल रहे हैं 0800 004866। रिमेंबर 0800 00। हम इस नंबर पर अब आप हमें कॉल कर सकते हैं और कोई एक चुटकुला, चाहे नया पुराना जो भी हो, आपका खुद का हो या आपने कहीं सुना हो पढ़ा हो, वो आपको सुनाना है। इट्स जस्ट दैट आप कितनी क्रिएटिवली उसको सुना सकते हैं। और अगर आपने सही सही किया तो ये डबल पास आपका। ऐसा भी नहीं कि आपका नाम किसी एक ड्रो में हम शामिल करेंगे, डायरेक्टली ये डबल पास ट्राइविजन इवेंट्स की ओर से आपको मिल जाएगा। एंड इन केस टिकट्स आपने नहीं लिए हैं तो रिमेंबर bookmyevent.co.nz जो है ये विजिट करते हुए जल्द से जल्द अपने टिकट्स आप ले लें। एंड बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीक, जब विक्ट्री कॉन्वेंशन सेंटर में कृष्णाभिषेक और राजीव ठाकुर आपको हंसाने के लिए आ रहे हैं। और दो दो कॉमेडियंस, मतलब दोहरी हंसी, दोहरा मज़ा आपके लिए जो है ये होने जा रहा है। एंड लेट्स सी, गुड मॉर्निंग, हेलो,
11: गुड मॉर्निंग।
10: अरे परविंदर, क्या बात है।
11: बेटे को छोड़ने जाती।
10: अच्छा, तो बेटे को किंडी छोड़ने जा रही है। आपने कोई आपको चुटकुले आते हैं?
11: मुझे मैं फ्रेंकली बताऊं, मुझे करने वाले आते हैं पर मैं अच्छे वाला अभी सुनाऊंगी, पर वो बहुत ही बेसिक बच्चों लेवल का है।
10: बच्चा ओके अच्छा शुरू हो जाओ।
11: वो क्या कहते हैं, वो ना हाथी चींटी होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो हाथी की पेरेंट्स ने मना किया होता है चींटी के साथ घूमने को। तो वो एक दिन वो ऐसे डेट कर रहे होते हैं तो हाथी के पेरेंट्स आ जाते हैं, तो वो घबरा जाता है कि मेरे पेरेंट्स आ गए, उन्होंने मना किया है तेरे साथ घूमने को, है ना। तो वो कहते हैं तो घबरा क्यों रहा है, मेरे पीछे छुप जा ना।
10: क्या क्या स्टाइल है आपका चुटकुला सुनाने का। आपको आपको
11: अच्छा
10: मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, कैसे आपको बताऊं कि आपने क्या सुनाया है मुझे।
11: मतलब अच्छा था या बेकार था।
10: अच्छा आप बताओ आपको क्या क्या क्या लगता है, कैसा रहा आपका चुटकुला।
11: मुझे लगता है कि बहुत अच्छा था।
10: अच्छा आप तो लगता बहुत अच्छा था। I don't know परविंदर, आपको हम डबल पास जो है ये तो दे रहे हैं, ठीक है, डबल पास।
11: ओह थैंक यू।
10: आप जाकर कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर को देख सकती हैं द ग्रेट कॉमेडी नाइट में। लेकिन अभी जितने जितने भी लोगों ने आपका चुटकुला सुना है उनसे हम एक मदद चाहेंगे कि आप हमें बताइए कि परविंदर का चुटकुला कैसा था, क्या उन्हें जाकर वहाँ पर चुटकुला जो है इसका मज़ा लेना चाहिए या फिर हंसी का मज़ा लेना चाहिए या फिर कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर से कुछ सीखना चाहिए।
11: पर कृष्णा अभिषेक का भी ना जोक थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे हाथी चींटी, मैंने पुराने जो उनके शो देखे है ना, तो है थोड़े सिमिलर जोक ऐसे थे ना, जैसे वो शेख बना होता है, वो चिली पे बैठ जाता है, वो कहते ये क्या कर रहे हो, कहते मैं शेख चिली हूँ, तो यू नो
10: बहुत मजा आता है ना।
11: मैंने देखो पहले बोला था कि मुझे ऐसे वाले जोक कम ही आते हैं, पर मैं ट्राई कर रही हूँ, ये बच्चे लेवल का है।
10: नहीं जोक जोक बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। इट्स आपने इतने इंटरेस्टिंग तरीके से उसको सुनाया है और उसके बाद आपने अपने चुटकुले का मजा खुद लिया है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। अब आई डोंट नो और कितने लोगों के और कितने लोग जो जो आपके चुटकुले को सुन रहे थे उनमें से कितने लोगों को के चेहरे पर मुस्कुराहट जो है कि आई होगी ये मैं नहीं बता सकता, वो तो वो ही टेक्स्ट करके बता सकते हैं। बट नेवरदलेस परविंदर आपने कॉल किया और चुटकुला सुनाया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आपका नाम जो है ये हम डाल रहे हैं यहाँ पर और वेरी सून आवर टीम विल बी इन टच विद यू फॉर द डबल पास। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
11: थैंक यू। कौन से डे पे, एक बड़ी आइडिया दोबारा बोल दो, कौन से दिन है
10: आप, कौन से दिन पे फ्री हो।
11: नहीं नहीं आप बताओ ना कौन सा दिन
10: है,
11: मेरा क्या है
10: भाई। मैं हम लोग तकरीबन दो महीने से बताते आए हैं, 18 तारीख जुलाई को विक्ट्री कॉन्वेंशन सेंटर ट्राइविजन इवेंट्स की ये पेशकश द ग्रेट कॉमेडी नाइट होने जा रहा है और कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर की किस्मत खुल जाएगी अगर आप वहाँ जाएंगी।
11: ये तो है।
10: आप ठीक?
11: बढ़िया।
10: थैंक यू परविंदर, यू हैव अ गुड डे। सो और भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी, मेक श्योर यू टेक पार्ट। बाय द वे आप बताएं परविंदर का चुटकुला आपको कैसा लगा, 5599 पर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं।

0: Accurate traffic.
1: Delicious, tasty cookie dough bars.
2: A high of 15, wet and windy today, but despite the weather forecast, driving's fine today. Northern, 23 minutes, Constellation Drive to the city. Just some slow patches from Constellation to the bridge. Northwestern, 23 in from Massey, slow from Point Chef to the CBD. Southern, 37 minutes in from Manukau, slow from Otahu, heavy through Mount Wellington. Southwestern looks really good, fine to the airport.
1: Tasty cookie dough bars. A delicious cookie dough snack bar that the whole family will love.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
6: We pulled it off, Johnny. We're rich!
7: Oh, no. I've left my glasses in the vault.
6: What? You're kidding me? No, they'll be covered in your fingerprints.
7: Oh, Pete! I went to Specsavers and got a smudge-resistant coating. They're not going to find a single print.
8: Someone's been to the Specsavers winter sale. There's 50% off lens options, including light reactive, drivewear, and smudge-resistant. With two pairs from $169 or above. Limited time, conditions apply.
7: I think I dropped my wallet, too.
9: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz
0: करण औजला ब्रिंग्स हिज पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर टू न्यूजीलैंड ऑकलैंड स्पार्क अरेना दिस ऑगस्ट Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
10: Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
11: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. Two people have been rescued in floodwaters in Kaikoura. They'd been swept away at Crib Creek Bridge on Inland Road. Crews were already returning from an earlier rescue where one person spent 4 hours trapped in their vehicle after also being swept away in floodwaters. Kaikoura, meanwhile, is teetering on the edge of declaring a state of emergency if heavy rain continues. It's under a rear red warning with upwards of 400 millimetres expected. Mayor Craig Mackall says civil defence is ready to go.
12: As I say, this rain is not going to let up. Standby is what we're on.
11: And residents in Canterbury's Horonui district are being urged to stay home. Serious rain has caused roads and rivers to flood overnight. Mayor Marie Black says emergency crews are ready to help.
13: And our fire and emergency and volunteer St John's and the like are available to support our communities if needed.
11: Motorists are being warned of black ice in Waitaki. Police say freezing temperatures coupled with very damp conditions will cause slippery roads. The highway between Pukiuri to Seven Mile Road remains closed. In sport, the dream run continues for British wildcard Arthur Ferry at Wimbledon.
14: It's incredibly tough to put words to what I've just felt on a tennis court.
11: The 23-year-old, world number 114, is through to the quarterfinals with a 5-set win over Grigor Dimitrov. And at the World Cup, it was scoreless a short time ago, approaching full-time in the round of 16 match between Portugal and Spain. Football updates brought to you by Hisense.
10: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
15: World's best, hamari good brands me.
10: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
16: 10.5 degrees temperature. Auckland mein abhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 15. Overnight kam se kam 8 degrees. Barish hogi. Kabhi kabhar kuch gambhir barish aaj ho sakti hai. Fangapurwa ke north mein hail ki possibility bhi hai. Sunset sham 5:19 par aaj hone ko hai.
10: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
17: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
10: What's going on? Kya bakte ho?
18: Are kehna kya chahte ho?
16: Har din aise hi kuch na kuch कहानियां जो हैं ये हम आपके लिए लेकर आते हैं ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स जिन्हें सुनने के बाद लगता है हमें कि भाई ये क्या हो गया ऐसा कैसे हो सकता है तो क्या बकते हो मैं, ऐसी कुछ स्टोरीज जो हैं कि आपके लिए होती हैं ओनली ऑन हम। और ये जो खबरें हैं इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जब उन्हें स्मगल करते हुए पाया गया, और इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने 45,000 बनानास जो है ये नेपाल में स्मगल करने की कोशिश की थी। और समवेयर अलोंग द वे अ डिसीजन वाज अपेरेंटली मेड दैट द क्विकेस्ट रूट टू रिचेस इन्वॉल्व बिकमिंग यू नो अमीर अगर बनना है तो केले जो हैं ये लेकर ये चले जाए। और एक रेड जो है ये पुलिस ने किया और वहाँ पर 3,790 डजन जो है कच्चे केले पाए गए एक रेंटेड वेयर हाउस में। अथॉरिटीज को दो पिकअप वैन्स और एक मोटोबाइक भी मिला जिसका इस्तेमाल किया गया था, और एंटायर स्टॉक जो है इसको कस्टम्स के हवाले कर दिया गया है, और जिनके पास अब 45,000 बनानास हैं। और लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है कि इन्हें रखना कहाँ है, कैसे रखना है, इसका इस्तेमाल एविडेंस के तौर पर कैसे किया जाएगा। बट इट्स नॉट अ एवरीडे थिंग जो लोगों को मिलता है, बट जस्ट इमेजिन 45,000 केले स्मगल करने की कोशिश इन्होंने की थी।

0: going on.
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: हर दिन हम आपको बताते हैं हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है, इसकी जानकारियां हम पर आपके लिए होती हैं। और सबसे पहले तो एक मेडिकल ट्रीटमेंट के सहायता तिरुकुट्टु नाइट होने जा रहा है 10th ऑफ जुलाई को, यानी इसी हफ्ते वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एफ पापाटोईटोई में ऑकलैंड यूनाइटेड तिरुकुट्टु ग्रुप द्वारा। एंट्री फीस $10 है और आप जाकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कुछ जानकारियां आपको चाहिए तो जीत कुमार को 02105447377 पर आप संपर्क कर सकते हैं। श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडरसन में अखंड रामायण पाठ शनिवार फर्स्ट से लेकर रविवार 2 अगस्त तक होगा। सैटरडे सुबह 7 बजे रोट पूजा होगी, जिसके बाद 8:15 बजे आरती, 9:15 बजे से रामायण का पाठ जो है ये शुरू हो जाएगा, जो रविवार की सुबह 10 बजे तक चलता रहेगा। और 10:30 बजे हवन और आरती। प्रोग्राम के दौरान यहाँ पर आपके लिए भोजन का भी प्रबंध रहेगा। अगर आप अपनी मंडली के साथ इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो पंडित जी को संपर्क कर सकते हैं 09836-4647 09836-4647 पर आप उनसे ज़रूर बातें कर सकते हैं। न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री राम लीला होगी वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एफ पापाटोईटोई में 8 तारीख अगस्त को। और इसमें अगर आपको स्टॉल्स वगैरह चाहिए या फिर आप टीम में एज अ क्रिएटिव विजुअल डायरेक्टर शामिल होना चाहते हैं, मास्टर अशोक से आप ज़रूर बातें कर सकते हैं 02117954599। इस नंबर पर डायल करते हुए उनसे आप ज़रूर बातें कर सकते हैं। आपके पास भी कम्युनिटी की कोई खबर है जो चाहते हैं आपके और लोगों तक पहुंचे तो उन्हें हमारे पास आप ज़रूर भेज सकते हैं buzz@humfm.com buzz@humfm.com पर अपने ईमेल्स आप हमें भेज सकते हैं।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: देखो आ गए।
4: Ladies and gentlemen,
5: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के।
6: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
5: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
10: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी, जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
11: हाँ, एक चपाती मुझे भी।
10: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Mungo. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living. Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibalehomes.co.nz.
2: 21 मिनट हो रहे हैं फिलहाल अब 9 बजकर और पोर्चुगल टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुकी है आज सुबह राउंड ऑफ 16 में पोर्चुगल की हार स्पेन के खिलाफ 1-0 से हुई है स्पेन की ओर से ये गोल जो है ये इंजरी टाइम में बनाया गया था मेरिनो द्वारा और अब स्पेन जो है ये क्वालिफाई हो चुका है क्वार्टर फाइनल्स के लिए फीफा वर्ल्ड कप के और वो शनिवार की सुबह 7 बजे होने वाले क्वार्टर फाइनल में नज़र आने वाले हैं एक और मैच आज दिन में 12 बजे यूएसए और बेल्जियम के बीच होगा इस मैच पर भी अपडेट्स आपकी खातिर हम पर हम ज़रूर लेकर आएंगे बाय द वे ये भी याद रखें कि उस्ताद राहत फतेह अली खान आ रहे हैं ऑकलैंड एक हसीन रात के लिए अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक ये लेकर और ये रहेंगे द ट्रस्ट अरीना में 25th ऑफ जुलाई को जेके स्टार प्रोडक्शंस गाउट लाइव ड्रीम्स एंटरटेनमेंट सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शंस की ये पेशकश टिकट्स आप dryticket.com विजिट करते हुए अपने लिए ले सकते हैं
0: Most wanted.
3: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ
4: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है। 9:30 बज रहे हैं। बॉलीवुड में आए दिन अब कोई ना कोई सेलिब्रिटी ऐसा होता है जो अपने पर्सनालिटी राइट्स को बचाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है, और इस बार रवि किशन पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट अपनी जो पर्सनालिटी राइट्स हैं ये प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ में रिस्ट्रेन करने के लिए इंडिविजुअल्स को, वेबसाइट्स को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, उनका नाम, उनकी तस्वीर जो है ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए। ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने उन्हें ये जो इंटरिम रिलीफ है ये दे दिया है, जबकि कई जगह पर गलत तरीके से उनका नाम जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और साथ ही में इसके अलावा अगर आप देखें बॉलीवुड में और चीज़ें हो रही हैं, 12th फेल और सेक्टर 36 जैसी फिल्मों में काम करने वाले विक्रांत मसीह जो हैं ये ट्रांजिशन कर रहे हैं बैक टू हिज बिलवड रोमांटिक रूट्स, और जो नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल फिल्म है मुसाफिर कैफे उसने अपना जो पहला म्यूजिकल ट्रैक तेरा हुआ साहिबा ये अब रिलीज़ कर दिया है, और इसे कंपोज किया है गर्वित प्रियांश ने, और सुनने के बाद लोगों को ये गाना जो है बहुत पसंद आया है, और काफ़ी नॉस्टैल्जिया जो है ये लोगों को मिल रहा है। विक्रांत मसीह और वेदिका पिंटो जो हैं इनकी केमिस्ट्री भी लोगों को पसंद आ रही है। भोपाल और मसूरी में इस गाने की शूटिंग जो है ये की गई है, और अब लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि कब विक्रांत मसीह की ये फिल्म जो है ये रिलीज़ हो। हालांकि अभी वेब सीरीज़ जो आई थी उसमें उनका काम जो है ये काफ़ी पसंद किया गया था, जहां पर उन्होंने काम किया था अरशद वारसी के साथ, और प्रीतम और पेड्रो उसमें उनके काम को काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया गया है। 28 मिनट रह गए हैं फिलहाल अब 10 बजने में।
1: Mornings made better.
2: दो फ्राइंडा, चार टोस्ट, बटर, जैम और एक स्पेशल चाय.
1: The breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Driving you home. The drive show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला,
5: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा तो
5: आए आए बताओगे यार।
3: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number यार.
8: क्यों? क्या हुआ?
7: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया. No रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
3: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
9: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
3: Available at selected branches. T's and C's apply.
10: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
11: What's going on?
0: 25 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में, और व्हाट्स गोइंग ऑन में डेली राउंड अप का वक्त अब हो चुका है। पुलिस ने आज सुबह गोल्डन बे के उस महिला की तलाश शुरू कर दी है जिन्हें आखिरी बार कल सुबह देखा गया था। इस महिला की उम्र 80 ईयर्स बताई गई है और कल सुबह 8:30 बजे के वक्त उन्हें अपने घर से पैदल निकलते हुए देखा गया और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। खराब मौसम के चलते उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंता अभी जताई जा रही है। कईखोरा में लगभग 400 घर फिलहाल बिजली की सेवा के बगैर हैं। मेन पावर जो है ये दिखा रहा है 375 विदाउट पावर इन कईखोरा इनलैंड रोड स्टेट हाईवे 1 के पास, जबकि 23 और घर जो है फिनलहस्ट में इलेक्ट्रिसिटी के बगैर है। ककोरा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कहना है कि उन्हें इन आउटेजेस के बारे में पता है और मेन पावर जो है इस पर फिलहाल काम कर रहा है। इसके अलावा हुआंगरुआ नदी जो है ये अब लैप कर रही है, कहाँ काफ़ी गंभीर बारिश के बाद वहाँ पर स्टेट हाईवे 1 शेविट और कईखोरा के बीच इसे बाढ़ की वजह से बंद कर दिया गया है और स्टेट हाईवे 8 फेलाई से लेकर लेक पुकाकी के बीच स्नो की वजह से बंद है। स्टेट हाईवे 6 पतरुआ से लेकर हरिहारी के बीच वेस्ट कोस्ट में तेज़ हवाओं की वजह से बंद है और स्टेट हाईवे 6 हास्ट और फोक्स ग्लेशियर के बीच बंद किया गया है क्योंकि रास्ते पर पेड़ वगैरह जो है ये गिरे हुए हैं। तो और भी अपडेट्स वेदर से रिलेटेड आपके लिए बारी बारी से हम पर हम लेकर आते रहेंगे। फिफ्टी चाइल्ड प्रोटेक्शन कंप्लेंट्स और जो अडल्ट सेक्सुअल असोल्ट केसेस जो है इनको री ओपन किया गया है जब एक सीनियर ऑफिसर के बारे में चिंता व्यक्त की गई और रेडियो न्यूजीलैंड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऑफिसर जो है इज नाउ सब्जेक्ट टू एन एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस और पुलिस जो है इस मामले की तहकीकात कर रही है। एक रेडियो न्यूजीलैंड को भेजे गए एक स्टेटमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट तुषा पेनी ने बताया कि कॉन्सेंस जो है मई महीने में रेज किए गए थे कि किस तरह से इस केस को मैनेज किया गया था। द इनिशियल केस स्पार्क्ड अ फर्दर रिव्यू जहां पर 13 अन्य केसेस को आइडेंटिफाई किया गया था जिनके री इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी। सभी केसेस को रीअसाइन कर दिया गया है और सभी विक्टिम्स को फिर से कॉन्टैक्ट किया गया है। पुलिस ने एक रिव्यू किया था ऑफ अबाउट 1000 फाइल्स विच वे अंडर द ओवरसाइट ऑफ ए सीनियर ऑफिसर विद अ फर्दर 40 केसेस आइडेंटिफाइड फॉर री इन्वेस्टिगेशन। और पेनी ने बताया कि इस ऑपरेशन के थ्रू एक टीम जो है ये तैयार की गई ऑफ स्पेशलिस्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड अडल्ट सेक्सुअल असोल्ट इन्वेस्टिगेटर्स जो इन री ओपन केसेस पर काम करने वाले हैं और इस पर अब रिपोर्ट्स का और इंतज़ार किया जा रहा है। इसके अलावा कीवी बैंक के इकोनॉमिस्ट जो हैं उनका कहना है कि कल का जो रेट हाइक कॉल है रिजर्व बैंक से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि फोकास्टर्स अभी बटे हुए हैं कि क्या ऑफिशियल कैश रेट जो है वहीं पर रहेगा या उससे बढ़ाया जाएगा। रिजर्व बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये OCR को रिव्यू करने वाली है कल और एक बैंक के इकोनॉमिस्ट जो हैं ये डिवाइडेड हैं कि वेदर इट विल लिफ्ट जो रेट है फ्रॉम 2.25% या उसे वहीं पर रखेंगे। INZ जिसने आउटकम को एक नेल बताया है एक्सपेक्ट्स 0.25% जिसके बाद जो OCR है ये बढ़कर 2.5% हो जाएगा, जबकि QE बैंक के इकोनॉमिस्ट जो हैं उनका कहना है कि सही फैसला होगा कि इन रेट्स को वहीं पर रखा जाए लेकिन लैक ऑफ कंसेंसस की वजह से जो है अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि देखें कल क्या होता है। और एक और खबर आई है रेस रिलेशंस कमिश्नर इन्होंने पॉलिटिशियंस से मांग की है कि वो कोई भी बयान देते समय अपने शब्दों का चयन यानी चॉइस बहुत सोच समझ कर करें और किसी भी तरह का हेटफुल स्पीच ना दें। मेलिसा डाबी जो हैं इन्होंने कल लॉन्च किया द फोर्थ स्टेटमेंट ऑन रिलीजियस डाइवर्सिटी सेटिंग आउट रिलीजियस फ्रीडम्स और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन सेफ गार्डिंग दीज और दिस वॉज पार्टली अ रेस्पॉन्स जो टू डेस्टिनी चर्च लीडर ब्रायन तमाकी का जो कमेंट आया था हिंदू सिख्स और मुस्लिम्स को लेकर। रेड न्यूजीलैंड की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि उन्हें इन बातों को सुनकर बहुत चिंता व्यक्त हुई है। उन्होंने कहा कि वेयर शी सेट ऑन द बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इंसाइटिंग हेटेड वॉज फॉर पुलिस टू लुक इन टू। और इसके अलावा उनका कहना है कि लोगों को किसी भी तरह की बातचीत करने से पहले अच्छी तरह से उसके बारे में सोचना और समझना चाहिए। और साथ ही में फीफा वर्ल्ड कप, अगर आपको पता नहीं है, आपने मिस आउट कर दिया था, तो आपको बता दें कि जो राउंड ऑफ 16 का एक और मैच आज सुबह पूरा हो चुका है और इस मैच में स्पेन की जीत पुर्तगाल के खिलाफ 1-0 से हुई है और स्पेन अब क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो चुका है जो शनिवार की सुबह 7 बजे से खेला जाएगा। आज दिन में 12 बजे यूएसए और बेल्जियम के बीच राउंड ऑफ 16 का एक और मैच खेला जाएगा, जिसके बाद अंतिम दो मैचेस कल सुबह खेले जाने हैं। अर्जेंटीना की भिड़ंत कल सुबह 4 बजे इजिप्ट से होगी और कल सुबह 8 बजे स्विट्जरलैंड और कोलम्बिया का मैच जो है ये खेला जाएगा। इन मैचेस पर भी अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे।
3: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz. Love.

वक्त है आज की दो बातें जो है ये हम आपके लिए लेकर आए इस प्रोग्राम में। और हर दिन जाने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आप किस साथ हम शेयर करते हुए जाते हैं, जो हमें सोचने पर शायद कुछ मजबूर करते या फिर हमारे लिए एक आई ओपनर हो। तो आज की पहली बात कहते हैं कि रोजगार है तो सोमवार है, नहीं तो सातों दिन रविवार है। जो नौकरी है आपकी, उस की आप रेस्पेक्ट करें, सही तरीके से अपना काम जो है ये ज़रूर करें। दूसरी बात, जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लोगों ने सोचने में गुजार दी। आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं एक बार उसके बारे में ज़रूर सोचें, और अगर कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो वो भी अपनी लाइफ में आप ला सकते हैं, वो बदलाव अपनी ज़िंदगी में आप कर सकते हैं। और अब यही कहेंगे कि बाकी का आज का आपका दिन अच्छा गुजरे, अपना ख्याल रखिएगा। मौसम उतना अच्छा नहीं है तो उस पर भी नज़र बनाए रखें, अपडेट्स वगैरह जो है ये हम आपको देते रहेंगे। और हम आपसे मिलेंगे अब कल सुबह 6 बजे एक बार फिर वापस आएंगे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, किसी और को खुश रखने की कोशिश करें।

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

टाइम अनाउंसर है एंड उनके साथ हमने पूरी अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की कि यू नो इस फेस्टिवल में क्या क्या होता है. सो ही शेयर्ड अबाउट इट, जो कि आपको हमारे अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में ज़रूर मिल जाएगा.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाए, रिश्तों को और करीब लाए। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
2: Skeegee. It's a word now. Verb. To stop in Fiji on your way to or from skiing. Because why fly straight to the snow when paradise is on the way? Soak up the sun in Fiji and then go shred the slopes. Or relax and recover in Fiji on your way back home. Skeegee flights are on sale now. Fly to Vancouver return from $1,799 or Japan from $1,299. FijiAirways.com.
3: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
4: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
3: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
4: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
3: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
5: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
6: Right now, in midwinter, with ills, chills, the short week and school holidays kicking in, many of NZ Blood's regular donors are out of the game. So if you can, please make time to give blood this week. The team would really appreciate your donation. Come off the bench and make a real impact. Your donation of blood could help save up to 3 lives. Bloody legend. Give blood, save lives. Book now at nzblood.co.nz.
7: The Cooperative Bank has shared over $25 million in profit with our customers. Switch to the Cooperative Bank today and get a share of $25,000. Bank Better New Zealand. Apply by the 31st of July. T's and C's and eligibility criteria apply.
8: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
9: My Time, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
10: Office shout out.
11: वेल, ऑफिस शाउट आउट में दिव्यानी, इस समय आप हमें सुन रही हैं, माय टाइम आप इस समय पर मजा ले रही हैं, थैंक यू सो मच ट्यून इन करने के लिए। रिमेंबर, आप रोवा के जरिए हमें कभी भी कहीं पर भी सुन सकते हैं। सो रोवा, अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, गुड टाइम टू डाउनलोड दिस ऐप, बिकॉज बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस ऐप के ज़रिए मिलते हैं, बहुत कुछ जीतने का मौका भी आपको मिलता है हमारी ऐप के ज़रिए। सो अगर आप जाते हैं आपके ऐप स्टोर में, प्ले स्टोर में, जस्ट सर्च रोवा, ROVA इज़ अ स्पेलिंग, फ्री टू डाउनलोड है। आपको बस अपना यूज़र नेम वहाँ पर क्रिएट करना है, जो अपनी ई मेल आई डी से आप क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। उसको यूज़ कीजिएगा, वहाँ पे हम पे क्लिक करो तो हमको आप कभी भी सुन सकते हैं, किसी भी कंट्री में चले जाए, कहीं पर भी चल जाए, बस नेटवर्क होना चाहिए, रोवा आप कहीं पर भी इंजॉय कर सकते हैं। ऑल्सो अनदर ग्रेट थिंग इज़ कि रोवा के ज़रिए बहुत सारे म्यूज़िक स्टेशंस भी आप सुन सकते हैं। अगर आपको 80s के गाने सुनने हैं, 70s के, 60s के, 50s के गाने अगर आपको सुनने हैं, ये सब भी आपको वहाँ पर मिलने वाला है। सो आप रोवा पे हम पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको म्यूज़िक स्टेशंस मिलेंगे, 80s जुकबॉक्स मिलेगा, रिवाइंड मिलेगा, फीजी कीर्तन्स मिलेंगे, फीजी भजन्स आपको मिलेंगे, चढ़ती कला पंजाबी हिट्स आपको मिलेंगे, जिसमें चढ़ती कला एज

0: के पंजाबी गाने आपको सुपर डुपर मिलने वाले हैं। सो ये सारे के सारे म्यूजिक स्टेशंस आपको रोवा ऐप पे मिलते हैं।
1: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
1: फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बातें करते हैं तो वैसे आज यूएसए बेल्जियम के बीच में से कौन आगे जाएगा इसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। फ्रांस मोरक्को के बीच में 10 जुलाई को मैच होने वाला है विच विल बी इंटरेस्टिंग। देन नॉर्वे एंड इंग्लैंड के बीच में रिसेंट जो ब्राज़ील नॉर्वे का मैच हुआ था हर किसी की निगाहें ब्राज़ील के ऊपर थी बट नॉर्वे टुक द मैच। मैक्सिको इंग्लैंड के बीच में इट वॉज़ नॉट ईजी मैच लेकिन इंग्लैंड ने जीता 3-2 के साथ। And then also जो नेक्स्ट मैचेज है स्विट्ज़रलैंड कोलंबिया के बीच में होगा। देन अर्जेंटीना एंड इजिप्ट के बीच में मैच होगा तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि आगे कौन सी दो टीम्स खेलने वाली है। सो अभी सो फार अगर हम राउंड ऑफ 16 से बाहर आकर देखें क्वार्टर फाइनल्स में फ्रांस एंड मोरक्को जो है इनके बीच में मैच कन्फर्म है। नॉर्वे एंड इंग्लैंड के बीच में मैच कन्फर्म है। सो उसके बाद सेमीफाइनल्स जो है बाकी दो मैचेस जब कंफर्म होते हैं टीम्स के वहां से हमें समझ में आएगा।

0: माय टाइम फिलहाल आप यहाँ पर सुन रहे हैं हमिंग अलोंग विद सैनी राइट नाउ। एंड अगर आपने कोई सपना देखा है, कोई ड्रीम देखा है जिसका आप चाहते हैं एनालिसिस करना कि भाई इसका मतलब क्या ही हो सकता है, मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे 5599 पर। हमारे पास एनालिसिस की मशीन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ड्रीम्स के मतलब क्या होते हैं। सो यू कैन टेक्स्ट राइट नाउ ऑन 5599।
1: माय टाइम ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर।
2: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ कर के तुम नाराज ना होना,
2: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: Irvine, सिर्फ रोवा पर.
1: Don't put up with a damp, cold bathroom this winter. With a Shower Dome shower top, your bathroom will be warmer, drier, healthier. And now every Shower Dome comes with a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
2: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
3: हाँ, अच्छा
2: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
3: मिसेस सिंह,
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
5: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहोहो. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
6: Transform your home with Flooring Extra. Expert advice, seamless install, all backed by warranties. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
7: Flooring Extra. Adore your floor.
8: MediaWorks complaints. How can I help?
9: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
8: Thank you.
9: It's all I can think about.
8: What does it sound like?
9: Yeah, I'd rather not.
8: Go on, why don't you have a crack?
9: Okay, got a plumbing problem.
8: Oh, I need a bit more than that.
9: They've got your back.
8: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
9: Oh, okay.
10: There's no better plumber to give it a crack.
8: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
9: No, I want a plumber.
11: Advertise with
12: MediaWorks.
11: New Zealand listens to us.
13: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
14: ड्रीम डायरी.
15: ड्रीम डायरी में जो इस बार हमारे पास एक ड्रीम आया है, इनका कहना है कि इनको अक्सर ये सपना आता है कि इनके बाल जो है हेयर केप्ट फॉलिंग आउट इन हैंड लव हैंडफुल्स. सो इनके बाल जो है बहुत ज़्यादा ऐसे हाथों में आ जाते हैं, ऐसा गिरना शुरू हो जाते हैं, ऐसा इनको सपना आता है. वेल, एनालिसिस जो है इस ड्रीम का ये कहता है कि जो हमारे बाल होते हैं ना हेयर, दे ऑफन सिम्बलाइजेस कॉन्फिडेंस एंड आइडेंटिटी. सो दिस ड्रीम में सजेस्ट यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, ओवरवेल्म्ड और लाइक यू आर लूजिंग कंट्रोल ओवर अ सिचुएशन. सो ड्रीम्स जो होते हैं, दे आर पैक्ड विद फैसिनेटिंग स्टोरीज, मिथ एंड साइंटिफिक मिस्ट्रीज दैट मेक यू नो कोई ना कोई स्टोरी, दे मेक अ ग्रेट स्टोरी एज वेल. सो कई बार हमारे जो ड्रीम्स हैं, ये कई बार जो रियल लाइफ की सिचुएशंस है जो हमने कहीं ना कहीं पे पीछे बैक ऑफ द माइंड में रखी होती है, कई बार उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं. तो बेसिकली कई बार हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उसका अफेक्ट हमें कई बार ड्रीम्स में भी पड़ता है. सो दिस माइट बी सिचुएशन इन अ लाइफ जहाँ पे किसी चीज़ को कंट्रोल करने की सिचुएशन को मे बी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आप, बट इट्स नॉट हैपनिंग देयर. सो या कई बार ड्रीम्स हमारे बहुत ही वियर्ड हो जाते हैं. वैसे एक फैक्ट मैंने पढ़ा है कि डॉग्स को भी ड्रीम आता है. साइंटिस्ट जो है इन्होंने ऑब्जर्व किया है, डॉग्स दे ट्विच समटाइम्स, दे बार्क सॉफ्टली एंड दे मूव देयर लेग्स. अगर आपके घर में डॉग है तो आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, ये मैंने नोटिस किया है. सो डॉग्स को भी एक्चुअली में ड्रीम्स आते हैं, बट सोचने वाली बात है कि उनको क्या ही ड्रीम आते होंगे ना. मतलब क्या वो खेल रहे हैं, वो ट्रीट खा रहे हैं, वो भाग रहे हैं, क्या उनको ड्रीम आता होगा? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वेल उनके बारे में. बट अदर देन दैट, कैट्स, हॉर्सेस एंड मैनी अदर मेम्बर्स, दे ऑल्सो अपीयर टू ड्रीम. ये साइंटिस्ट जो है इन्होंने इसके बारे में कन्फर्म किया है.
16: दिल

थ्रोबैक में 90s के गाने यहाँ पर माई टाइम में एंड लंच बॉक्स में आप सुनते हैं एंड ड्राइव शो एंड ब्रेकफास्ट शो में वैसे आप अर्ली 2000s लेट 2000s के गाने आप सुनते हैं। आने वाले दिनों में कुछ इवेंट्स भी होने वाले हैं जैसे कि द ग्रेट कॉमेडी नाइट, ये एक इवेंट होने वाला है जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। इसमें कृष्णा अभिषेक जो है ये लाइव परफॉर्म करने वाले हैं अलॉन्ग विद राजीव ठाकुर। सो अगर इसकी आपने टिकट अभी तक नहीं खरीदी है ज़रूर खरीद लीजिएगा, बुक माई इवेंट और कोरोट एन जेड पर जाके, टिकट्स बहुत जल्दी जा रही हैं। VIP टिकट्स आर ऑलरेडी सोल्ड आउट एंड जब आप टिकट खरीदने लगेंगे तो आफ्टर पे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। सो आपका ये जो इवेंट है ये विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है 18 जुलाई को। सो मेक श्योर कि अपने टिकट्स आप ज़रूर खरीद रहे हैं। कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर को लाइव देखने का मौका आपको मिल रहा है। डबल द कॉमेडियंस डबल द लाफ्टर, इनको हमेशा आपने टीवी स्क्रीन में देखा है, आपने कपिल शर्मा के शो में देखा है, बट दिस इज़ योर चांस टू एक्चुअली वॉच देम लाइव।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का हो रखा है 13 डिग्रीज, ओवरनाइट आज 9 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है।

0: A very very good morning to you. My time आप यहाँ पर सुन रहे हैं एंड 12 बजे के बाद यहाँ पे लंच बॉक्स में केतन का साथ आपके साथ हो जाएगा. यू हमिंग अलॉन्ग विद सैंडी राइट नाउ एंड आई एम फीलिंग इन फॉर कशिका बिकॉज कशिका इज अवे और अ हॉलीडे इंजॉय कर रही है वो अपना माय टाइम. सो मैं आपके साथ यहाँ पे दे रही हूँ. इस सावर में रिसाइकल रीयूज के बारे में भी बात करेंगे. क्या आपने कभी किया है अपने घर पे किसी चीज़ को रीयूज या फिर रिसाइकल किया है? तो आप भी शेयर कीजिए. यू कैन शेयर इट 5599 पर. मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने घर पे जो जार्स होते हैं उनको रीयूज़ करते हैं. यू नो, जब खाली जार होता है काफ़ी लोग उसके अंदर प्लांटिंग भी करते हैं. स्पेशली अगर किसी को मनी प्लांट लगाना होता है तो वो उसी में लगाते हैं. इफ़ यू आर द वन, मैसेज करके बता सकते हैं 5599.
1: बचाओ क्या

0: डिफेंस ट्रीटी अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की फोर्थ है ये अलॉन्ग साइड जो उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हैं US, न्यूजीलैंड एंड PNG के साथ. मोर देन डिफेंस बोथ कंट्रीज ऑल्सो साइंड द वो वेले यूनियन जो कि स्ट्रेंथन करती है इकोनॉमिक टाइज को, स्किल ट्रेनिंग्स, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी कॉपरेशन, पीपल टू पीपल कनेक्शंस एज वेल. ऑस्ट्रेलिया ने प्लेज किया है मोर देन $1 billion ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इन इन्वेस्टमेंट इन फीजी ओवर द नेक्स्ट डेकेड विच इज़ एक्चुअली ह्यूज. सो लेट्स सी द चाइना फैक्टर भी है इसमें. वाइल नाइदर कंट्री नेम चाइना इन द ट्रीटी एनालिस्ट ने बोला है कि जो एग्रीमेंट है कम्स एज ऑस्ट्रेलिया लुक्स टू स्ट्रेंथन इट्स इन्फ्लुएंस इन द पैसिफिक फॉलोइंग चाइनाज ग्रोइंग प्रेजेंस इन द रीजन एज वेल. सो या ऑस्ट्रेलियन फीजी द हिस्टोरिक न्यू डिफेंस ट्रीटी जो है एक्चुअली में इन्होंने कल साइन की है.
1: हम फीजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फीजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फीजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन.
2: At Flooring Extra, they don't just sell floors, they transform homes. From luxurious carpets to show-stopping hard flooring, you get expert advice and installers who get it right the first time. They make it effortless. Visit in-store or they'll bring the showroom to you. Measure, quote, install, done. All backed by solid warranties for total peace of mind. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
3: Flooring Extra. Adore your floor.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
7: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla live.
8: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
9: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Tūriki, all together Auckland.
10: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
11: My Time brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
0: मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये सेगमेंट. Six word stories में आज के जो 6 वर्ड की कहानी है वो है Dreams survive when discipline shows up. Once again, it's Dreams survive when discipline shows up. Basically, this is a gap between wanting something and actually becoming it. Dream जो होता है, जो हमारे सपने होते हैं ना, बहुत emotional होते हैं. बहुत emotional होकर हम सपनों को देखते हैं, exciting होते हैं, inspiring भी होते हैं. So, हम picture करते हैं एक success को, एक life को. लेकिन जो discipline है, is what carries that dream when the excitement fades. सो एक सपना देखना तो एक एक्साइटमेंट होती है कि यार मुझे ना ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतना घूमना है, कुछ भी. लेकिन जब उस पाथ की ओर आप डिसिप्लिन बनाते हो तभी उस ड्रीम को आप अचीव कर पाते हो, नहीं तो वो जो ड्रीम है वो फेड हो जाता है. बिकॉज मोटिवेशन जो है ना ये अनरिलायबल होती है. think of it like this.

0: इज कि जैसे आपका ड्रीम है आई वॉन्ट टू बी फिट, लेकिन डिसिप्लिन क्या कहता है, आई एम गोइंग फॉर द वॉक इवन वेन इट्स रेनिंग एंड कोल्ड. ड्रीम है जैसे आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, तो डिसिप्लिन कहता है कि आई एम डूइंग द वर्क वेन नो बडी इज वॉचिंग एंड नो वन इज क्लैपिंग, तब भी आप अपना कंसिस्टेंटली काम कर ही रहे हो. जैसे ड्रीम है कि आई वॉन्ट टू चेंज, आई वॉन्ट चेंज, तो डिसिप्लिन कहता है आई विल रिपीट बोरिंग एक्शंस अंटिल दे बिकम रिजल्ट. कई होते हैं ना, कई बार एक ही चीज़ बार बार कर रहे हो कि यार ये तो बोर हो गई ये करते करते, बट कई बार वो बोरिंग स्टेप आपको रिपीट करने पड़ते हैं जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता है. सो मोस्ट पीपल दे डोंट फेल बिकॉज उनके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, दे फेल बिकॉज उनके ऊपर एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, उनको अचीव करने के लिए डिसिप्लिन जो है बेसिकली वो नहीं होता है. डिसिप्लिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है एक्शन में. क्या ज्ञान दिया यार आज मैंने मज़ा आ गया. मुझे लगता है कि ये ज्ञान मैं खुद को ही दे रही थी, क्योंकि सपने हैं, ड्रीम्स हैं, लेकिन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है ज़्यादा नहीं है. तो डिसिप्लिन बनाने की ज़रूरत आपको, मुझे, दोनों को है.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

माई टाइम फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। वैसे लेजेंडरी राहत फतेह अली खान बहुत ही जल्दी ऑकलैंड में पहुंचने वाले हैं अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक के लिए। ट्रस्ट अरीना में इनका शो होने वाला है 25 जुलाई को, विच इज प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस। टिकट्स dryTickets.com पे आपको मिल जाएगी। दिस इज लास्ट फ्यू डेज जब ये जो टिकट से आप खरीद सकते हैं, तो जल्दी से अपनी टिकट खरीदिए एंड इस शो को इन्जॉय कीजिएगा, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम ये शो अटेंड किया था, बहुत मज़ा आया था मुझे ये शो अटेंड करके। इनफैक्ट राहत फतेह अली खान अपने बेटे के साथ जब वहाँ पर बैठे गाना गा रहे थे, वी वर हमिंग ईच एंड एवरी सॉन्ग, बिकॉज हमारे अंदर बसे हुए हैं ना उनके गाने, कब से उनके गाने हम सुनते ही आ रहे हैं। एंड लेकिन लाइव एक्सपीरियंस करना ना एक अलग ही टाइप ऑफ फीलिंग होती है, क्योंकि वो बातें भी करते हैं अपने गानों के बीच में, उनके बारे में एक्सप्लेन भी करते हैं। इट्स अ वेरी नाइस डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। सो अगर आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है ऐसा, तो दिस इज़ योर चांस, दिस इज़ योर टाइम टू गो एंड एक्सपीरियंस इट। इट विल बी अ नाइस गेट अवे रोज़ की लाइफ से, एक म्यूजिकल इवनिंग आप जाके इन्जॉय करोगे। सो राहत फतेह अली खान ट्रस्ट अरीना में इनका शो होगा 25 जुलाई को।

0: माई टाइम फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ। एंड आज थोड़ी देर में रिसाइकल रेस्क्यू में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट स्टेन्ड टी शर्ट के बारे में। हर किसी के घर पे होगी एक ऐसी टी शर्ट, आपके घर में एक ऐसी शर्ट, कोई ऐसा कपड़ा, कोई ऐसी ड्रेस पड़े होगी जिसके ऊपर स्टेन्स लगे हुए हैं, आप उसको बाहर नहीं पहन सकते हैं। उस स्टेन्ड टी शर्ट को आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। अगर आपके पास है फील फ्री टू मैसेज 5599 इज अ नंबर।
1: माय टाइम ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर। कीप काम बिकॉज पंजाबी स्वैग इज ऑन।
2: हे मोमबत्ती है पहले दिनों तेरे उत्ते अख रखिए, तेरे बिना एरिए च और कुड़ी दा ना दिल मंगिए

0: Media.
1: Streaming on Rover.
2: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
3: Coffee? The usual?
4: How about the unusual?
5: Can't wait for coffee? Then don't! Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
6: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech. Available exclusively in Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
7: Say hello to the Club Plus Smart Shopping Buddies. They're here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. They'll help you scan, score and save on all the stuff you love. And there's a smart shopping buddy for everyone, even you. So join Club Plus to meet yours and get the best of New World, Pack and Save and Foursquare. Find out more at clubplus.co.nz.
8: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
9: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
10: It's a client who tried DIY. It did not work. It's that five-minute job still going 5 weeks later. It's a supplier. Everything is out of stock. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
11: Rescue me, recycle me.
12: Rescue me, recycle me. बड़ा interesting segment है वैसे ये. तो इस सेगमेंट में आज स्टेन्ड टी शर्ट, स्टेन्ड क्लोथ्स के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी टी शर्ट्स हमारे घर पे, ऐसे कपड़े होते हैं जिसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टेन लगा होता है, उसको हम बाहर नहीं पहन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, यू नो, इंडियन हाउस होल्ड में बड़े होने से एक तो फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है, आपको हर चीज़ को वसूलना आ जाता है कि भाई ये जो चीज़ है इसको कैसे वसूला जा सके। मैंने अपने घर पे देखा हुआ है, जो ऐसी पुरानी टी शर्ट्स जैसे कपड़े होते थे उसको फेंका नहीं जाता था, कहीं पर दिया नहीं जाता था। तो वो पहले जब पहन लिया, उसके बाद अगर उसके ऊपर स्टेन लग गया, ख़राब हो गए, तो उसको चीज़ों साफ़ करने में काम आता है, डस्टिंग के लिए काम आता है वो सबसे पहले। तो डस्टिंग में वो कपड़ा खूब यूज़ होता है। जब वहाँ से उसकी बस हो जाती है तो पोचा मारने में नीचे यूज़ होता था, वहाँ से भी जब उसकी बस हो गई फिर जाके वो खैर फेंका जाता था, उससे पहले बहुत काम आता था वो कपड़ा। तो आपके घर में भी कभी ऐसा रहा है तो प्लीज़ शेयर, कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए 5599 पर। यू नो, किचन में भी कपड़ा ये काम आता है डस्टिंग के लिए। कार में आपको, काफ़ी लोगों ने गाड़ियों में कपड़ा रखा होता है शीशा साफ़ करने के लिए, बाहर साफ़ करने के लिए, शूज़ साफ़ करने के लिए। सो बेसिकली क्लीनिंग पर्पज़ के लिए ऐसा कपड़ा तो फुल काम आता है। आप ऑल्सो ऐसा कपड़े को, अगर ज़्यादा बड़ा स्टेन नहीं है तो उसको आप कैरी बैग भी बना सकते हैं। यू कैन कट ऑफ द स्लीव्स, कट द नेक लाइन वाइडर ओपनिंग के लिए, एंड टाई और स्टिच द बॉटम। तो आपका बहुत अच्छा वो बन गया, एक टॉट बैग बेसिकली आपका बन गया। और सो ये जो कपड़ा है इसको आप प्लांट्स को टाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। घर पे रस्सी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पे पुराना कपड़ा पड़ा हुआ है उसको एज अ रस्सी आप यूज़ कर सकते हैं। टोमेटो प्लांट्स अगर आपने घर पे लगाए, उनको टाई करने की ज़रूरत पड़ी रहती है, या फिर क्लाइंबिंग प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए, या फिर सिक्योरिंग द स्टेम्स विदाउट डैमेजिंग देम, क्योंकि ये जो कपड़ा है ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता रस्सी की तरह, सॉफ्ट होता है। तो वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं. सॉफ्ट कॉटन जो होती है बेसिकली प्लांट फ्रेंडली होती है कंपेयर टू द प्लास्टिक टाइज, सो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं. एंड इफ द स्टेन इज ऑन वन साइड, पिलो कवर आप उसका बना सकते हैं, फ्लिप इट इनसाइड आउट. अगर उसका डिजाइन बहुत अच्छा है तो कैन बी यूज एज अ पिलो कवर एज वेल. पेट्स है अगर आपके घर पे तो यू नो उसको इस वजह से ब्रेड करो कि आप उसको डॉग्स के लिए एक टग टॉय बना दो, बिकॉज आपके डॉग्स जो है वो आपके कपड़े को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आपके जो कपड़े होते हैं उसमें आपकी फ्रेग्रेंस होती है, सो इसलिए वो उसको बहुत पसंद करते हैं. मेरे घर पे जो पेट है वो तो बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है खैर उसको, तो आप उस वे से उसको यूज़ कर सकते हैं. आप उसके हेडबैंड्स बना सकते हैं, आप उसको गिफ्ट रैप ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं एको स्टाइल में, जो आजकल आप मार्केट में भी देखते हैं. सो बेसिकली एक कपड़े को आप कितने डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं.
0: दिल

वेल माई टाइम फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं, मेरा वक्त तो चला है यहीं पे आपको टाटा बाय बाय कहने का, लेकिन जल्दी मुलाकात होगी माई टाइम फिनिश करने के बाद। अभी लंच बॉक्स में केतन का आपका साथ हो जाएगा एंड देन आई विल बी बैक कॉफी ब्रेक में, कॉफी के साथ यहाँ पे पहुंच जाऊंगी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जल्दी मिलते हैं।